सुप्रभात। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 10 अगस्त सन 2026। प्रातः के 5:58:45 हो रहे हैं। हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने को हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
2: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
1: इस मौके पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक

0: आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष यह अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई यह ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। उत्तराखंड सरकार ने कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 20 साल की उत्तराखंड कृषि कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना में राज्य के सभी 13 जिले शामिल होंगे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. शिवेंद्र कुमार कश्यप को इस परियोजना का समन्वयक नियुक्त किया गया है। होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के प्रति संयम बरत रहा है और फिलहाल कोई नया सैन्य हमला करने की योजना नहीं बना रहा है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और दावा किया है कि उसके पास अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी नौसैनिक नाकेबंदी ने ईरानी सरकार की आर्थिक चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। उनकी ये टिप्पणी ईरान, ओमान और अमेरिका के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए चल रही बातचीत के रुकने के बीच आई है। मुंबई के सोम्या विद्या विहार यूनिवर्सिटी में खेले गए FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 की टीम इवेंट फाइनल में भारत और हांगकांग चीन के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा, लेकिन गेम के बेहतर अंतर के आधार पर भारत को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। भारतीय नौसेना और अमरीकी नौसेना का विस्फोटक आयुध निरोधक ईओडी अभ्यास कल से 14 अगस्त तक दक्षिणी नौसेना कमान कोची में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। वंदना कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, हम सभी के जीवन में हो चुकी है एक और नई सुबह की शुरुआत। आप सभी के जीवन की मंगल कामना करते हुए आइए करते हैं कार्यक्रम वंदना की शुरुआत। श्रोताओं, श्रावण मास का पवित्र महीना चल रहा है। भगवान शिव की अपार अनुकंपा से हमारे जीवन में न केवल ये शुभ महीना आया है, बल्कि आज श्रावण मास के सोमवार के अवसर पर हमें अपने आराध्य

भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आइए हम सब मिलकर करते हैं महादेव की जय जयकार।

अभी आप सुन रहे थे ओम व्यास और साथियों की आवाज़ में शिव स्तुति। श्रोताओं, श्रावण मास का महीना चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि आजकल जहां तहां मेले लगे हैं और श्रावणी कांवड़ियों के रेले चल रहे हैं। श्रोताओं, ये मेला तो श्रावण मास के समाप्त होते ही संपन्न हो जाएगा, लेकिन गुणी और विद्वान जन बताते हैं कि ये समूचा संसार ही एक मेले के समान है।

अभी आप सुन रहे थे अनूप जलोटा के स्वर में भजन। श्रोताओं, अपने सांसारिक जीवन में हम जितने भी बदलाव देखते हैं वे सब ईश्वर की रचना ही होती है। गुरुवाणी में अकाल पुरख की स्तुति में कहा है,

अभी आप सुन रहे थे जमील अहमद की आवाज़ में नात। श्रोताओं, आज सोमवार है, यानी भगवान शिव के वंदन पूजन व्रत कथा और आरती का दिन। तो आइए वंदना कार्यक्रम के अंत में सुन लेते हैं भगवान शिव की आरती।

अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज में भगवान शिव की आरती के साथ ही भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना अभी यहीं पर संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान से आज का प्रसंग। कलाकार हैं श्रीकांत पारगांवकर, संगीत सतीश भाटिया का।

देवताओं का हित इसी में निहित था कि भरत के अनुनय विनय को मानकर श्री राम वन से वापस न चले जाएं। अतः इंद्र सहित अन्य देवगण ने एक बार फिर सरस्वती से प्रार्थना की कि वे अपनी माया से भरत की मति फेर दें, ताकि श्री राम को लौटा ले जाने में भरत सफल न हो सकें। किंतु सरस्वती जानती थी कि भरत की मति सुमेरु पर्वत के समान अटल है, और ये भी कि ब्रह्मा विष्णु तथा महेश की प्रबल माया के लिए भी ये संभव नहीं कि वो भरत की मति फेर सकें। फेरना तो दूर, वो उनकी ओर देख भी नहीं सकेंगी। स्वार्थवश सब देवताओं ने प्रबल माया जाल रचकर चारों ओर भ्रम, अप्रीति और भय फैला दिया। देवराज इंद्र को ये आशंका बनी रही कि कार्य का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ में है। उधर मुनिवर वशिष्ठ, राजा जनक तथा भरत श्री राम के समक्ष उपस्थित हुए। कुलगुरु ने भी इससे पहले जनक और फिर भरत का ये प्रस्ताव निवेदित किया कि स्वयं भरत श्री राम के साथ वन में रहें और लक्ष्मण अयोध्या लौट जाएं। मुनिवर ने निर्णय श्री राम पर छोड़ दिया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान से आज का प्रसंग। कलाकार थे श्रीकांत पारगांवकर, संगीत सतीश भाटिया का था। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है चिंतन।
1: निंदा करना मानवीय स्वभाव का एक बड़ा अवगुण है। दूसरों में दोष निकालकर खुद को श्रेष्ठ बताना कुछ लोगों का स्वभाव होता है। ऐसे लोग हर जगह आसानी से मिल जाते हैं, पर निंदा में प्रारंभ में काफी आनंद मिलता है, किंतु अंततः मन में अशांति व्याप्त हो जाती है और व्यक्ति स्वयं ही अपने जीवन को दुखों से भर लेता है। प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव और दृष्टिकोण अलग अलग होता है। कुछ लोग समय बिताने के लिए निंदा करते हैं, तो कुछ लोग स्वयं को दूसरों से बेहतर साबित करने के लिए निंदा को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं। निंदकों को संतुष्ट करना संभव नहीं है, अतः समझदार इंसान को उथले लोगों द्वारा की गई टिप्पणी से आहत न होकर अपना कार्य करते रहना चाहिए। अच्छा होगा कि प्रतिवाद में समय नष्ट न करके हम अपने मनोबल को और भी अधिक दृढ़ करके जीवन में प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। मित्रों, संसार में प्रत्येक जीव की रचना ईश्वर ने किसी उद्देश्य से ही की है, अतः किसी को भी ईश्वर की किसी रचना का मखौल उड़ाने का अधिकार नहीं है। किसी की निंदा करना परमात्मा की निंदा करने जैसा ही है। इससे कुछ समय के लिए व्यक्ति अपने अहंकार को सहला तो सकता है, किंतु किसी की काबिलियत, ईमानदारी और सच्चाई को खत्म नहीं कर सकता। वास्तव में व्यक्ति के सद्गुण सूर्य की तरह प्रखर है, अतः निंदा के काले बादल उसकी प्रखरता को क्षीण नहीं कर सकते हैं। निंदा करना और निंदा सुनना और फिर उनका चिंतन करना हानिकारक होता है। जो स्वयं दोषी है उसे दूसरों के दोष देखने का अधिकार नहीं है, और जो निर्दोष है वो कभी किसी का दोष नहीं देखते हैं, और हमें जीवन में स्वयं के विवेक से निर्णय लेना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की बात पर ध्यान देकर विचलित नहीं होना चाहिए, अन्यथा हमारी गति हवा के झोंके से उड़ने वाले सूखे पत्ते के समान हो सकती है। निंदा का या बुरे शब्दों का नकारात्मक प्रभाव होता है। इससे आपसी विश्वास में कमी बढ़ती है और फिर धीरे धीरे आपसी संबंध खराब हो जाते हैं। अतः हमें किसी भी व्यक्ति की निंदा करने से बचना चाहिए। संत कबीर दास जी ने इस विषय में ठीक ही कहा है, तिनका कबहू न नींदिए पांव तले जो होए, कबहू उड़ी आंखों पड़े पीर घनेरी होए। अर्थात दूसरों के दोष देखकर भी निंदा से बचो, तिनके तक की भी निंदा न करें, क्योंकि पता नहीं वो कब आंखों में गिरकर कष्ट देने लगे। अतः हमें सद्वार्ता करनी चाहिए, साधु प्रवृत्ति के लोगों के साथ रहना चाहिए, निंदा से बचना चाहिए। यह हमारे शारीरिक और आत्मिक उत्थान दोनों के लिए लाभप्रद होगा।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:45 हुए हैं। कार्यक्रम काव्यधारा में आइए सुनते हैं फूलमाला से काव्य पाठ।
2: एक गीत प्रस्तुत करती हूँ जिसका शीर्षक है पर्यावरण।

विकार हैं, पुष्प फल और छाया देते, वृक्ष कितने उपकारी हैं। पुष्प फल

शांति जप तप वाद्य लोक लुभाते हैं, करते रहो नित सुरक्षा इनकी।

अनुज का अनगिनत उपकार है, अनगिनत उपकार है। मोती रत्न और जल सजोए, मोती रत्न और जल

बुझाता धरा की प्यास है, करते रहो नित संरक्षण जल का, करते रहो नित संरक्षण जल का, जल जीवन का आधार है, इनसे है जीवन मनुज का, अनगिनत उपकार हैं, अनगिनत उपकार हैं, वंसरित भूधर सलिल धरती का ये श्रृंगार है, इनसे है जीवन मनुज का, अनगिनत उपकार हैं, अनगिनत उपकार हैं। गंगा माता भोलेनाथ से एक प्रश्न करती है, मेरी यह अगली कविता है, उसका शीर्षक है गंगा की पीड़ा। धो सके जो बैर मन का, धो सके जो बैर मन का, वो जल कहाँ से लाऊं, धो सके जो बैर मन का, वो जल कहाँ से लाऊं, गंगा नाथ धरा तेरी पावन कैसे बनाऊं, पावन कैसे बनाऊं। लोक हित में पी डाला, लोक हित में पी डाला तूने हलाहल गरल का प्याला, लोक हित में पी डाला तूने हलाहल गरल का प्याला, मानव मन महिमा जो माने, मानव मन महिमा जो माने, वो कथा किसे सुनाऊं मैं गंगा, गंगा नाथ सृष्टि तेरी कैसे सफल बनाऊं, कैसे सफल बनाऊं। मानव मन दानव हो गया, मानव मन दानव हो गया, समझे ना अब भेद कर्म का, मानव मन दानव हो गया, समझे ना अब भेद कर्म का, दया धर्म अब मिटा जग से, दया धर्म अब मिटा जग से, भोग लिप्सा में डटा कब से, शाश्वत कर्म की महिमा जाने, वो गीत किसे सुनाऊं, वो गीत किसे सुनाऊं, मैं गंगा, गंगा नाथ सृष्टि तेरी कैसे सफल बनाऊं, कैसे सफल बनाऊं। पाप पूर्ण व्यंग्य हो गया, पाप पूर्ण व्यंग्य हो गया, धर्म ज्ञान अब बकवासी, मैं गंगा, गंगा नाथ आध्यात्मिकता तेरी कैसे जग को समझाऊं, कैसे जग को समझाऊं। धो सके जो बैर मन का, वो जल कहाँ से लाऊं, वो जल कहाँ से लाऊं। मेरा अगला गीत है सावन। सजने मोहे ओ सजने मोहे ला दे रेशमी झूल, सजने मोहे ला दे रेशमी झूल, तोरे संग झूला झूलूंगी, सजने संग मैं झूला झूलूंगी, सजने मोहे ला दे रेशमी झूल, तोरे संग मैं झूला झूलूंगी। जब से सजन यो सावन आयो रे, जब से सजन यो सावन आयो रे, रिम झिम आगे लगायो, रिम झिम आगे लगायो रे, डरावे बिजोरिया मोरो, डरावे बिजोरिया मोर, तोरे संग में झूला झूलूंगी, तोरे संग झूला झूलूंगी, सजने संग में झूला झूलूंगी, सजने मोहे ला दे रेशमी झूल, तोरे संग में झूला झूलूंगी। बागन में अम्बुआ की डाली रे, बागन में अम्बुआ की डाली, गावे कोयल

0: सजन संग में झूला झूंगी, सजन मोहे ला दे रेशमी झूल, तोरे संग में झूला झूलूंगी। 16 सिंगार करूँ झूला रे झूलू, 16 सिंगार करूँ झूला रे झूलू, मन में उमंग ऐसी आसमां छूलू रे, मन में उमंग ऐसी आसमां छूलू रे। नाचो जैसे वन में मोरो, नाचो जैसे वन में मोर, तोरे संग में झूला झूलूंगी। झूला झूलूंगी सजन संग में, झूला झूलूंगी सजन मोहे ला दे रेशमी झूल, तोरे संग में झूला झूलूंगी। जो सजन मोहे कहा न की जो रे, जो सजन मोहे कहा न की जो, तो भेज मोहे फिर पीहर को दी जो रे, भेज मोहे फिर पीहर को दी जो रे। माई बुला रही मोर, हो माई बुला रही मोर, तोरे संग में अरे तोरे संग ना फिर झूला झूलूंगी। सखी ने संग फिर मैं झूला झूलूंगी, तोरे संग ना फिर झूला झूलूंगी, सजन मोहे ला दे रेशमी झूल, तोरे संग में झूला झूलूंगी।
1: कार्यक्रम काव्यधारा में अभी आप सुन रहे थे फूलमाला से काव्य पाठ। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदिल्ल्यां स्वनिवासे 20-26 इत्यस्य राष्ट्रमंडल क्रीडायाः पदक विजेतृभिः सह मेलनं कृतवान्। संवाद समये पदक विजेतारः प्रधानमंत्रिणा सह क्रीडायाः स्वानुभवान् निवेदितवन्तः। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे श्रीमोदी अवदत् यत् तेषाम् एकैकः अपि असाधारण प्रदर्शनेन राष्ट्रं गौरवान्वितवान् तथा तेषां सफलता बहून्।

0: अभियानमिदं द्वाविंशत्यधिकद्विसहस्रतमे वर्षे प्रारब्धस्य हरघर तिरंगा इत्युपक्रमस्य पञ्चवर्षम् अस्ति। अनेन अभियानेन नागरिकाः राष्ट्रध्वजं प्रस्थापयितुं तथा देशभक्तेः राष्ट्रैकतायाश्च भावनां प्रकटयिष्यन्तीषु विविधासु गतिविधिषु भागं ग्रहीतुं प्रोत्साह्यन्ते। अस्मिन् वर्षे अभियानं विशेषत्वेन महत्वपूर्णमस्ति, यतः इदं भारतस्य राष्ट्रगीतस्य वन्दे मातरम् इत्यस्य सार्धैकशततम वर्षपूर्त्या सह आयोज्यते। अनेन राष्ट्रध्वजस्य राष्ट्रगीतस्य च विशिष्टः समागमः भवति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी नागरिकान् अभियाने सक्रियतया भागं ग्रहीतुम् अथ विकसितभारतस्य निर्माणे स्वप्रतिबद्धतां पुनर्नवीकर्तुं च आहूतवान्। दिल्ली मेट्रो रेल निगमेन स्वातन्त्र्यभावनायाः उत्सवस्य भागरूपेण पीतवर्णमार्गे हरघर तिरंगा इति विषयवस्तुना सुसज्जिता विशेषा मेट्रो रेल यानसेवा समारब्धा। सामाजिक संचारपटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे डीएमआरसी इत्यनेन कथितं यत् भारतस्य अशीतितमे स्वातन्त्र्यदिवसोपलक्ष्ये आयोज्यमानानां सप्ताहव्यापिनां कार्यक्रमाणां भागरूपेण एषा विशेषा मेट्रो रेल सेवा प्रारब्धा। ओडिशाराज्ये पुनः प्रचण्डवृष्टेः अनन्तरं राज्यस्य अनेकेषु भागेषु नदीनां वर्धमानः स्तरः नूतनः जलाप्लावनप्रकोपः जनयति। बैतरणी नदी अस्य प्रावृट्कालस्य तृतीये जलाप्लावनप्रकोपे प्रविष्टवती अस्ति। एकया नूतन न्यूनचाप व्यवस्थया सम्पूर्णे राज्ये अतिवृष्टिः अभवत्। अधिकारिणः जलाप्लावनप्रवणक्षेत्रेषु नदीस्तरस्य निरीक्षणं निकटतया कुर्वन्तः सन्ति, आवश्यकान् समाह्वानान् निवारकोपायान् च कुर्वन्तः सन्ति। भारतीयः भारोत्तोलकः महाराजन अरुमुगा पाण्डियनः उज्बेकिस्तान ताश्कन्दनगरे एशियन जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप इत्यस्यां स्पर्धायां पुरुषाणां 65 किलोग्राम मिते भारवर्गे रजत पदकं प्राप्तवान् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेता खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
2: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की
1: जय। इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा आवास बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। उत्तराखंड सरकार ने कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 20 साल की उत्तराखंड कृषि कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। इस योजना में राज्य के सभी 13 जिले शामिल होंगे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. शिवेंद्र कुमार कश्यप को परियोजना का समन्वयक नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना और अमरीकी नौसेना का विस्फोटक आयुध निरोधक ईओडी अभ्यास कल से 14 अगस्त तक दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की विशेषज्ञ गोताखोरी और ईओडी टीमों के बीच अंतर संचालन बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर जारी तनाव के बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के प्रति संयम बरत रहा है और फिलहाल कोई नया सैन्य हमला करने की योजना नहीं है। ट्रंप ने कहा कि ईरान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उसके पास अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए पर्याप्त धन भी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अमरीकी नौसैनिक नाकेबंदी ने ईरानी सरकार की आर्थिक चुनौतियां बढ़ा दी हैं। रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए हिंद महासागर और भारत तक रेल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। रूस के उप प्रधानमंत्री मराट खुसनुलिन ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग हॉर्मुज जलडमरू मध्य और बोस्फोरस जलडमरू मध्य सहित दो रणनीतिक जलमार्गों से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक हो सकता है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा।
1: मानव जीवन की सुरक्षा तथा आरोग्य प्राप्ति के लिए हमारे ऋषि महर्षियों ने शास्त्रों में अनेक उपाय बताए हैं। उनमें योग और प्राणायाम की साधना को निर्दिष्ट किया गया है। शरीर की शुद्धि, आरोग्य की प्राप्ति और दीर्घ जीवन के लिए इसकी उपयोगिता और महत्व को दर्शाया गया है। इसका वर्णन उपनिषदों, चिकित्सा ग्रंथों तथा समस्त पुराणों में है। योग का प्रयोजन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों ही है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। योगासनों से न केवल शरीर सौष्ठव, स्फूर्ति आदि प्राप्त होती है, बल्कि श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया नियंत्रित होती है, मन की स्थिरता प्राप्त होती है, सम्यक ध्यान लगता है, शरीर में रक्त संचार उचित रीति से होता है, शरीर की मांसपेशियों में प्रसार एवं संकुचन की प्रक्रिया तीव्र होती है। मानव शरीर में विद्यमान 3 दोष, जिन्हें हम कफ, वात और पित्त के रूप में जानते हैं, उनका भी संतुलन बना रहता है, साथ ही रोगों के निवारण में सहायता मिलती है। आचार्य चरक का कहना है कि योगासनों के अभ्यास तथा सम्यक

0: व्यायाम से शरीर में हल्कापन, कार्य करने की शक्ति, शरीर में स्थिरता आदि भी प्राप्त होती है। तन और मन दोनों को साधने में योग का कोई सानी नहीं है। इससे तनाव दूर होता है, मन शांत तथा सक्रिय होता है। कुछ देर नियमित योग करना रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। लोगों में एक आम धारणा है कि योग में समय अधिक लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। आप अपनी सुविधा अनुसार योग आसनों का चुनाव कर सकते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं कि योग सुबह ही किया जाए, आप शाम को भी इसे कर सकते हैं। कोशिश सिर्फ ये करें कि रोजाना एक नियत समय पर ही इसे करें। इससे आप एक अनुशासित तरीके से अपनी आदत बना पाएंगे। योग एक प्रकार का ध्यान है, जिसमें शांत वातावरण की जरूरत होती है। ऐसा स्थान चुनें जहां शोर शराबा ना हो। कुछ ऐसे आसन हैं जिन्हें आप आसानी से घर पर कर सकते हैं। अनुलोम विलोम, प्राणायाम, श्वसन संबंधी क्रियाएं, कपालभाति, ऐसे आसन जो शरीर के हर हिस्से को स्ट्रेच करें। लेकिन इन सब बातों से ज्यादा जरूरी है कि किसी कुशल प्रशिक्षक से इन्हें भलीभांति सीख अवश्य लें। तनाव में रहने पर, मन ठीक न होने पर तरह तरह के रसायन शरीर के भीतर बनते हैं। मन के शोभ को दूर करने के लिए भी योग जरूरी है। मन में आशा निराशा के भाव, अनिद्रा, नींद ठीक से न आने पर भी शरीर में अनेक व्याधियां उत्पन्न होती हैं। शरीर को मन से अलग नहीं माना गया है। शारीरिक ऊर्जा की लय बिगड़ जाने से बीमारियां शरीर को घेरती हैं। मन को ऊर्जा से भरना बहुत जरूरी है। योग एक नई खोज नहीं है, अपितु ये हमारे प्राचीन भारतीय ऋषियों की धरोहर है। प्रकृति के नियमों के साथ जो चलेगा वो आजीवन शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकता है। जिस प्रकार मानव जीवन सांसों पर जिंदा है, सांस खत्म तो सब खत्म। सांसों में नाक से ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। कहने का मतलब, सांसों के द्वारा अपने शरीर के अंदर अच्छी इच्छा, अच्छी भावना, अच्छाइयों का समावेश हो, और सांस निकालने में ये सोचना है कि हमारे शरीर से बुरी इच्छा, बुरी भावना बाहर निकल रही है। उचित आहार विहार, नियम संयम का पालन करने से हम स्वस्थ रहते हुए दीर्घायु को प्राप्त कर सकते हैं।
1: स्वास्थ्य चर्चा में अभी आपने जाना हमारे स्वास्थ्य में योग के महत्व के बारे में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें।
2: किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों आज हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं बरसात में कृषि यंत्रों का रखरखाव। किसान भाइयों बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात का मौसम खेती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन भैया इस समय कृषि यंत्रों की उचित देखभाल भी उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि भैया बरसात के कारण नमी, कीचड़ और जंग लगने की संभावना बढ़ जाती है। जो हमारे कृषि यंत्र हैं उनकी कार्यक्षमता इससे प्रभावित हो सकती है। यदि कृषि यंत्रों का समय पर रखरखाव किया जाए तो भैया उनकी आयु हम बढ़ा सकते हैं। उनकी समय समय पर मरम्मत की जाए तो भैया हम काफी लंबे समय तक अपने जो कृषि यंत्र हैं उनसे काम ले सकते हैं, क्योंकि मरम्मत भी कम खर्च में हो जाती है और खेती किसानी का जो हमारा काम है वो सुचारू रूप से चलता रहता है। किसान भाइयों सबसे पहले प्रत्येक उपयोग के बाद जो हमारे ट्रैक्टर होता है, कल्टीवेटर हो, सीड ड्रिल हो, रोटावेटर हो, स्प्रेयर हो या अन्य कृषि यंत्रों को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। उन पर लगी मिट्टी घास को हटाकर सूखे कपड़े से पोंछना चाहिए। गीले यंत्रों को बिना सुखाए रखने से उनमें जंग लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो भाई जब भी हम अपने कृषि यंत्रों को साफ करें या धोएं या भैया उनकी सफाई करें तो भाई उन्हें सुखाकर ही हमें स्टोर में या जहां भी हम रखने का कोई स्थान है वहां पर रखना चाहिए। साथ ही साथ किसान भाइयों जो हमारे कृषि यंत्र हैं उनके सभी चलने वाले भागों को जैसे कि वायरिंग, चैन, गियर पर समय समय पर ग्रीस और चिकनाई लगानी चाहिए, ताकि भैया इनमें घर्षण कम हो और यंत्र आसानी से कार्य कर सके। किसान भाइयों इंजन वाले यंत्रों में इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल तथा कूलेंट की नियमित जांच करनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर उनको बदलना चाहिए।

0: साथ में कृषि यंत्रों को खुले स्थान पर नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें शेड, गैराज या तिरपाल से ढककर सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए ताकि वर्षा का पानी सीधे उन पर ना पड़े। भाई हमारे कुछ किसान भाई क्या काम करें कि अपने जो कृषि यंत्र हैं, चाहे गन्ना डालने वाला टिपलर हो या भैया ट्रैक्टर हो, उनके बाहर ही खड़े पूरी बरसात में, तो भाई उन्हें जंग लग जाता है। हम जो है अपने कृषि यंत्रों की देखभाल स्वयं करनी है भाई, हम कितने लंबे समय तक अपने कृषि यंत्र चलाने हैं। किसान भाइयों, ट्रैक्टरों बैटरी के टर्मिनलों की सफाई करनी चाहिए, क्योंकि भैया बरसात में उसमें जो है भैया कार्बन आ जाता है, तो उन पर भैया हमें साफ सफाई करनी चाहिए और हो सके तो ग्रीस लगानी चाहिए ताकि जंग ना लगे। विद्युत तारों और लाइटों की भी जांच करनी चाहिए, क्योंकि नमी के कारण शॉर्ट सर्किट की संभावना अधिक रहती है। किसान भाइयों, जो हमारे स्प्रेयर पंप हैं या पाइपों को उपयोग के बाद साफ पानी से धोना चाहिए ताकि उनमें रसायनों का अवशेष न रह जाए। इससे यंत्र सुरक्षित रहते हैं और अगली बार प्रयोग करने पर बेहतर परिणाम हमारे किसान भाइयों को मिलते हैं। स्प्रे हम गन्ने में करकाए हैं और हम धान की फसल में स्प्रे करना है, तो भाई हमारी धान की फसल को हो सकता है कभी कभी क्षति भी हो जाए। तो भाई इस तरह का, इन बातों का, छोटे छोटे का हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें चाहिए कि अपने कृषि यंत्रों की समय समय पर सर्विस करनी चाहिए, किसी भी खराबी को अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी समस्या आगे चलकर बड़ी हो जाती है और भाई बड़ी खराबी का होने का कारण बन जाती है, जिससे हमारे किसान भाइयों की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ जाता है। तो भाई यदि हमारा एक नट या बोल्ट या भैया कोई खुरपी या कोई फाली टीलर की, कल्टीवेटर की, रोटावेटर की कोई खराब है, तो भैया हमें एक ही फाली खराब है तो एक को ही बदल देना चाहिए। हमें यो इंतजार नहीं करना चाहिए कि भाई हम जब जाएंगे बाजार तो भैया चार फाली या पांच फाली लेकर आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। भैया यदि आपकी एक फाली खराब तो आप एक फाली को ही बदल दें। समय रहते आप अपनी जेब पर अतिरिक्त भार पड़ने की बजाय भैया खर्च कम करें और भैया अपनी बचत करें, क्योंकि भाई हो सकता है वो एक फाली जब खराब है तुम्हारी, हो सकता है उसमें फिर हमारे जो कृषि यंत्र है, चाहे रोटावेटर हो, उसमें कोई और अन्य तकनीकी खराबी आ जाए, तो भैया हमें समय से उसकी देखरेख कर लेनी चाहिए। और भैया बरसात के मौसम में कृषि यंत्रों का उचित रखरखाव किसानों के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। इससे भैया हमारे जो कृषि यंत्र हैं वो लंबे समय तक कार्य करते रहते हैं और उनकी कार्य क्षमता बनी रहती है। तेल वाले यंत्र हैं जैसे ट्रैक्टर है या भैया अन्य कोई पेट्रोल वाली मशीन है स्प्रेयर, तो भाई उनको जो है हमें देखभाल करते रहना चाहिए, उनका ग्रीस ऑयल समय समय पर बदलते रहना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका भैया आप ध्यान रखेंगे। और भाई एक चीज का और विशेष हमें सावधानी बरतनी है कि जब हम कृषि यंत्रों का प्रयोग करें, यानी कि अपने खेत में चलाने के लिए ले जाएं, तो भैया उसके नट बोल्ट हमें चेक कर लेने चाहिए वो अच्छे से काम कर रहा है। तो किसान भाइयों, आज तो हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर खेती एवं अन्य विषयों से जुड़ी जानकारी के साथ अवश्य उपस्थित होंगे। किसान भाइयों नमस्कार।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आपने जाना बरसात में कृषि यंत्रों का रखरखाव करने के बारे में। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में आपको पहले दे देते हैं आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों में हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। दिल्ली केंद्र से संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग के प्रसारण का समय रहेगा रात्रि 10:00। पब्लिक स्पीक का प्रसारण होगा रात्रि 9:30 पर। संसद समीक्षा आप सुनेंगे रात्रि 8:00। लखनऊ केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के अंतर्गत जिले की हलचल का समय रहेगा सुबह 9:15। आज आप सुनेंगे अलीगढ़ और भदोही जिले की हलचल। नजीबाबाद केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के अंतर्गत सांध्यकालीन प्रसारण सभा में सुगम संगीत के अंतर्गत मोहन कुमार गुप्ता से भजन आप सुनेंगे शाम 7:32 पर। विविधा के अंतर्गत जनपद बिजनौर का इतिहास लेखन विषय पर भेंटवार्ता में राहुल नील से शोभित शर्मा की बातचीत का प्रसारण समय रहेगा शाम 6:45। कृषि जगत में फल तुड़ाई उपरांत फलदार बागों का प्रबंधन विषय पर प्रोफेसर एस एल पाल से हिमांशु रंजन की

भेंटवार्ता आप सुनेंगे शाम 6:05 पर। युवाओं के पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा शाम 5:15। मेरा सपना उन्नत भारत में सांप्रदायिक सौहार्द के लिए संशोधित दिशा निर्देश एवं अल्पसंख्यकों की नियुक्ति के विशेष उपचार हेतु संशोधित दिशा निर्देश की जानकारी दी जाएगी शाम 5:00। प्रातःकालीन प्रसारण सभा में धरती गाती है कार्यक्रम में भुवनेश गिरी से रागनी आप सुनेंगे 9:25 पर। शास्त्रीय संगीत में कलाकार प्रमोद प्रसन्ना से बांसुरी वादन का समय रहेगा 12:05। परिवार जगत कार्यक्रम आप सुनेंगे 1:15 पर। छात्रों पर पेपर लीक का प्रभाव विषय पर डॉक्टर राम किशोर से बातचीत करेंगी ज्योतिपाल। लोकधारा में कलाकार रेशमा से जौनसारी लोकगीत आप सुनेंगे 1:45 पर। ये थी आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:18 हो रहे हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे लखनऊ केंद्र से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से हर घर तिरंगा अभियान का किया शुभारंभ। काकोरी ट्रेन एक्शन के 101 वर्ष पूरे होने पर शहीदों को किया नमन। मुख्यमंत्री ने सिद्धार्थनगर में 311 करोड़ रुपए की 107 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कल गोरखपुर में 69 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार सड़क परियोजना का करेंगे लोकार्पण। और सावन के दूसरे सोमवार पर शिव मंदिरों में तड़के से उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना कर रहे हैं श्रद्धालु और कांवड़िए। अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

0: यह अभियान हर घर तिरंगा पहल का 5वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से यह देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। इस पहल का उद्देश्य देशवासियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने वाली गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। यह अभियान देशभक्ति के एक अनूठे उत्सव में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत को एक साथ लाता है। उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन आयोजित किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। इस क्रम में जनप्रतिनिधियों, युवाओं, महिलाओं, भाजपा नेताओं और कलाकारों सहित राज्य के विभिन्न स्थानों से आए लोगों के साथ मुख्यमंत्री आवास से विधान भवन तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य तथा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी तिरंगा लेकर पैदल चले। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि तिरंगा विकास और विरासत का प्रतीक है।
2: हमारा एक तिरंगा हमारे सादगी का, हमारे विकास का, हमारी विरासत का और भारत के आन बान और शान का प्रतीक है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने भारत के प्रतीकों के प्रति सर्वोच्च सम्मान बनाए रखने के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों को संज्ञेय अपराध की सूची में रखते हुए दंडित करने का निर्णय भी लिया है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काकोरी ट्रेन एक्शन के 101वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में काकोरी शहीद स्मारक पर आयोजित शताब्दी समारोह में भी शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्र नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आह्वान किया कि हम सभी अपने गांव, क्षेत्र और जनपद में अनेक गुमनाम नायकों से जुड़ी बिखरी सामग्री को एकत्र करें। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर महानगर में निकलने वाली तिरंगा यात्रा की अगुवाई करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सिद्धार्थनगर जिले में 311 करोड़ रुपए की 107 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल सहित जिले के कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी सौंपे। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों के कारण सिद्धार्थनगर जनपद लगातार प्रगति की राह पर अग्रसर है।
3: सिद्धार्थनगर जनपद जो आकांक्षी था, पिछले 8-9 वर्षों के अंदर जो प्रयास हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में, देश के अंदर 112 जनपद आकांक्षी जनपद हैं और अग्रणी छलांग लगाने वाला कोई जनपद है तो सिद्धार्थनगर जनपद है। अब ये आकांक्षात्मक नहीं, विकास के पायदान पर तेजी के साथ अग्रणी भूमिका के लिए

0: में जाने वाला जनपद है।
1: मुख्यमंत्री कल गोरखपुर में 69 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार सड़क परियोजना का लोकार्पण करेंगे। सावन के दूसरे सोमवार पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में आज तड़के से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। एक रिपोर्ट।
2: सावन के दूसरे सोमवार पर पवित्र नदियों से जल भरकर प्रमुख शिवालयों में जलाभिषेक करने पहुंचे कांवड़ियों के लिए प्रशासन की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने कई जगहों पर रूट डायवर्जन किया है और नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में भगवान विश्वेश्वर की मंगला आरती की गई। भगवान राम की नगरी अयोध्या में नागेश्वरनाथ मंदिर, बाराबंकी के लोधेश्वरनाथ मंदिर, कानपुर के नागेश्वर बाबा मंदिर और सीतापुर के श्यामनाथ मंदिर में बोल बम के जयकारों के बीच शिव भक्त श्रद्धा और भक्ति के माहौल में जलाभिषेक कर रहे हैं। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
1: कांवड़ यात्रा और शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रदेश भर में सुरक्षा और सुविधा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया है कि काशी विश्वनाथ धाम में सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है।
3: तमाम हमारे कांवड़िया श्रद्धालु केवल उत्तर प्रदेश से नहीं, विभिन्न अन्य प्रदेशों से भी लोग यहां पर आ रहे हैं। जो हमारा संगम रूट है प्रयागराज से लेकर के यहां का रूट है, उस पर लगातार लोगों का आवागमन बना हुआ है। सभी श्रद्धालु यहां पर सुरक्षित तरीके से यहां पर आएं, इसके लिए एक डेडिकेटेड लेन बनाई गई है, विश्राम गृह बनाए गए हैं, पुलिस चौकियाँ स्थापित की गई हैं, CCTV कैमरे लगाए गए हैं, कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है।
1: कांवड़ यात्रा के चलते संभल में आज सभी विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। बस्ती, चित्रकूट, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, वाराणसी, प्रयागराज, संभल, हापुड़ और बाराबंकी में कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में आज कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश की कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से हर घर तिरंगा अभियान का किया शुभारंभ। काकोरी ट्रेन एक्शन के 101 वर्ष पूरे होने पर शहीदों को किया नमन। मुख्यमंत्री ने सिद्धार्थनगर में 311 करोड़ रुपए की 107 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कल गोरखपुर में 69 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार सड़क परियोजना का करेंगे लोकार्पण। और सावन के दूसरे सोमवार पर शिव मंदिरों में तड़के से उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना कर रहे हैं श्रद्धालु और कांवड़िए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का है बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
5: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
6: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

साथ साथ। ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सूरज के साथ साथ सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, आज का अंक लेकर हाजिर हूं मैं, आपका अपना रेडियो मित्र चरणजीत सिंह। आज के दिन आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत आज के प्रमुख अखबारों की कुछ खास सुर्खियों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं अमर उजाला अखबार की कुछ खास सुर्खियों की। झारखंड सिविल सेवा परीक्षा रद्द, सरकार ने छात्रों की 3 मांगे मानी, 2 पर बात अटकी। सीजीएल परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच पर अड़े छात्र आज विधानसभा घेरेंगे। भारत तक रेल चलाने पर विचार कर रहा रूस, रूसी उप प्रधानमंत्री बोले, भारत को जोड़ने वाला हर रास्ता सही। 7 दिन का ध्यान भी मस्तिष्क में लाता है सार्थक बदलाव, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के अध्ययन में बड़ा खुलासा। 12 अगस्त की रात टूटते तारों से सजेगा ब्रह्मांड, उल्का पिंडों की होगी बारिश, होंगे मोहक नजारे। अब बात करते हैं हिंदुस्तान अखबार से खास सुर्खियों की। अक्टूबर माह के आखिर में जनपद बिजनौर की चीनी मिलों को चलाने की तैयारी, मिलों में युद्ध स्तर से हो रहा मरम्मत कार्य, 65% तक हुआ मिलों में मरम्मत कार्य। डीमैट म्यूचुअल फंड में नॉमिनी जोड़ना ही होगा, बाजार नियामक सेबी के नए नियम 1 सितंबर से लागू होंगे। पाक में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी पर भड़के लोग, जमात ए इस्लामी ने 16 अगस्त को चारों प्रांतीय राजधानियों में सरकार विरोधी प्रदर्शन का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर की बर्फीली चोटियों पर बुलंद रहेगा जवानों का हौसला, केंद्रीय गृह मंत्री ने जवानों के लिए करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से हिम सुरक्षा किट और सर्दी से बचाने वाले उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी। अब बात करते हैं दैनिक जागरण अखबार की कुछ खास सुर्खियों की। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद फर्जी डिग्री वाले 12 वकीलों पर केस, विवेचना शुरू, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सचिव ने कराया मुकदमा। सेना का हेलीकॉप्टर चंडीगढ़ से दिल्ली लाया किडनी, एम्स ने महिला को दिया नया जीवन, 70 वर्षीय ब्रेन डेड महिला कई बीमारियों से थी पीड़ित, चंडीगढ़ से उनकी दोनों किडनी और लिवर लेकर दिल्ली एम्स आया सेना का हेलीकॉप्टर। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी अस्मिता चालिहा ने रविवार को कोरिया मास्टर्स ग्रुप 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में चीन की चौथी वरीयता प्राप्त हान कियान शी को हराकर अपना पहला बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर खिताब हासिल किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से बोले प्रधानमंत्री, कहा, जो खेलेगा वह खिलेगा, पदक विजेताओं से की मुलाकात, प्रदर्शन की सराहना की। और 7400 करोड़ रुपए जुटाने के लिए इस सप्ताह खुलेंगे 5 आईपीओ, पांचों कंपनियों ने 10 से 14 अगस्त तक मांगे आवेदन, कारोबार विस्तार, कर्ज निपटान पर खर्च की जाएगी यह धनराशि। श्रोताओं, ये थी आज के अखबारों की कुछ खास सुर्खियां। और सुर्खियों के बाद आइए करते हैं भारतीय संस्कृति की विशेषता की बात। दोस्तों, इस समय सावन का महीना चल रहा है, ये महीना भगवान शिव के

प्रति नतमस्तक होते हुए प्रकृति के प्रति प्रेम को व्यक्त करते हुए गुजारने का संदेश देता है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति की यह विशेषता है कि यहां हर दिन और महीना कुछ ना कुछ खास बात और खास विशेषता लिए होता है। भारतीय संस्कृति में दिनों और महीनों का सीधा संबंध खगोल विज्ञान, ऋतुओं के परिवर्तन और आध्यात्मिक ऊर्जा से होता है। यहां दिन और महीने जीवन और प्रकृति के बीच तालमेल बनाए हुए होते हैं। यहां दिनों के नाम भी सूर्य, चंद्र, मंगल ग्रहों पर आधारित होते हैं। हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। लोग उस दिन खास व्रत और पूजा करते हैं। पंचांग के अनुसार हर दिन की अपनी ऊर्जा मानी जाती है। लोग अच्छे काम करने के लिए शुभ दिन चुनते हैं। महीनों की विशेषताओं में चंद्र और सूर्य की गणना, ऋतुओं से जुड़ाव त्योहारों का आधार होती है। और दोस्तों, भारत में हर दिन त्योहार है, क्योंकि यहां अपने हौसले से हवाओं का रुख मोड़कर खुशियां मनाता है यहां का वीर जवान।

इस प्यारे से गीत के साथ आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में शेर की भी बड़ी मान्यता है। यह माना दुर्गा की सवारी है। और आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस भी है। इसकी शुरुआत फिल्मकार डेरेक

0: और बेवरली जॉर्बेट ने बिग कैट इनिशिएटिव के तहत की थी। आपको बता दें कि पहला अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस 10 अगस्त सन 2013 को मनाया गया था। इस दिन का उद्देश्य शेरों की घटती आबादी और उनके सामने आने वाले खतरों के प्रति दुनिया भर में जागरूकता फैलाना है। इसके साथ ही शेरों के प्राकृतिक आवासों यानी जंगलों को बचाने और उनके संरक्षण के लिए समर्थन और धन जुटाना है। आपको बता दें कि शेर भारत में जंगल का राजा कहलाता है, लेकिन आपको यह भी बता दें कि लगभग पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में फैले उनके ऐतिहासिक क्षेत्र का लगभग 94% हिस्सा खो जाने के कारण शेरों की आबादी में काफी गिरावट आई है। इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस पर हम इन राजसी प्राणियों के संरक्षण और सुरक्षा के महत्व पर विचार करें और उन कारणों को समझने का प्रयास करें जिस कारण इनकी आबादी घट रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि शेर अपने पारिस्थितिकी तंत्र के पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शीर्ष शिकारी होने के नाते वे शिकार की आबादी को नियंत्रित करते हैं, जो बदले में उनके आवासों में पौधों और जानवरों की प्रजातियों को संतुलन को प्रभावित करता है। दोस्तों, एक आकलन के अनुसार आपको बता दें कि दुनिया भर में करीब 22 से 23 हजार शेर बचे हैं। ये मुख्य रूप से उप सहारा अफ्रीका और भारत तक ही सीमित हैं। एशियाई शेरों में भारत में की गई गणना के अनुसार भारत में इनकी संख्या 891 हो गई है। ये केवल गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और उसके आसपास के क्षेत्रों अमरेली, भावनगर, पोरबंदर के बाढ़ अभ्यारण्य तक ही सीमित हैं। वहीं अफ्रीका महाद्वीप में 20 से 21 हजार अफ्रीकी शेर बचे हैं। आपको बता दें कि तंजानिया में दुनिया के सबसे ज्यादा 40% शेर पाए जाते हैं। दोस्तों, इस बेहतरीन जानकारी के साथ ही कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुन लेते हैं जरूरी संदेश।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: इस संदेश के साथ आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर फिल्मी गीतों के कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में। और श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। दोस्तों, जिस तरह शेरों के साथ साथ आज पेड़ों और जल को बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उसी तरह हमें हर एक प्राकृतिक संसाधन के बारे में भी सोचना चाहिए। दोस्तों, ये बात हम आपसे इसलिए साझा कर रहे हैं क्योंकि आज हम मना रहे हैं विश्व जैव ईंधन दिवस। आपको बता दें कि ये दिन डीजल इंजन के आविष्कारक सर रुडोल्फ डीजल की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने 10 अगस्त साल 1893 में मूंगफली के तेल से इंजन चलाकर विकल्प की संभावना जताई थी। इसका उद्देश्य प्रदूषण कम करने और एक स्वच्छ व हरित भविष्य की ओर कदम बढ़ाने में मदद करना है और पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों में कोयला, पेट्रोल और डीजल के विकल्प के रूप में जैव ईंधन के इस्तेमाल के प्रति लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों, आजकल ये देखा जाता है कि भागम भाग यानी भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम इस ईंधन को बचाने की जरा भी परवाह नहीं करते। अगर ईंधन को हम बचाएं तो उसके दो फायदे होंगे। एक तो हम कम लागत में ज़्यादा ईंधन का इस्तेमाल कर सकेंगे, दूसरा कहीं ना कहीं हम पर्यावरण की मदद भी कर रहे होते हैं। पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण की सफाई और इसके संरक्षण के प्रति हम अपना योगदान दे रहे होते हैं। दोस्तों, भारत

0: में जैव ईंधन रणनीतिक महत्व रखता है, क्योंकि ये मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, कौशल विकास जैसी सरकार की चल रही पहलों को बढ़ावा देता है। किसानों की आय दोगुना करने, आयात में कमी करने, रोजगार के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ एकीकृत होने का शानदार अवसर प्रदान करता है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को मंजूरी दे चुका है। इस नीति का उद्देश्य वर्ष 2030 तक 20% एथेनॉल सम्मिश्रण और 5% बायोडीजल सम्मिश्रण तक पहुंचाना है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के हिस्से के रूप में जैव ऊर्जा को बढ़ावा देती है। वैश्विक जैव ऊर्जा सोसाइटी सतत जैव ऊर्जा विकास के लिए देशों के बीच सहयोग को सुगम बनाती है। यूरोपीय संघ सदस्य देशों के लिए जैव ईंधन मिश्रण लक्ष्य को निर्धारित करता है। तो दोस्तों, ये विश्व जैव ईंधन दिवस के मौके पर कुछ खास जानकारी थी, ताकि हम अपनी जागरूकता के स्तर को बढ़ा सकें और कहीं ना कहीं जैव ईंधन के संरक्षण के प्रति गंभीर हो सकें और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का बेहतर तरीके से निर्वहन कर सकें। इसी जानकारी के साथ एक बार फिर से कार्यक्रम में और आगे बढ़ते हैं और अब सुन लेते हैं फिर से एक संदेश।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
2: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: इस संदेश के साथ ही आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और दोस्तों इस कार्यक्रम में मैं बना हुआ हूं आपके साथ आपका अपना रेडियो मित्र चरणजीत सिंह। तमाम जानकारियों और गीत के साथ संदेशों के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब कार्यक्रम में क्रम है तिथि विशेष का। दोस्तों, यूँ तो हमारे जीवन में जो भी दिन आता है वो खास ही होता है, कुछ ना कुछ महत्व लिए होता है हर एक दिन, लेकिन तिथि विशेष में हम उन दिनों को याद करते हैं जो बीत चुके होते हैं, और उन बीत चुके पलों में, उन दिनों में कुछ खास घटनाएं हमारे जहन में या तो ताज़ा होती हैं, अगर धुंधली हो गई होती हैं तो हम उन यादों को इस कार्यक्रम के माध्यम से कर देते हैं ताज़ा। तो चलिए आपको बता देते हैं कि आज यानी 10 अगस्त की तिथि में अलग अलग वर्षों में स्थानीय और विश्व स्तर पर क्या कुछ खास हुआ। दोस्तों, 10 अगस्त 1990 में नासा का मैगलन अंतरिक्ष यान 15 महीने की यात्रा पूरी कर शुक्र ग्रह की कक्षा में पहुंचा। इसके बाद उसने रडार तकनीक से ग्रह की सतह का विस्तृत मानचित्र तैयार किया, जिससे शुक्र के भूगर्भीय रहस्यों को समझने में बड़ी सफलता मिली। और दोस्तों, 10 अगस्त 1972 में मेजर मरियप्पन सरवनन का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उन्होंने चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी यानी ओटीए से प्रशिक्षण प्राप्त किया और 1995 में बिहार रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान बटालिक सेक्टर में दुश्मन की चौकियों पर कब्जा करने के अभियान में उन्होंने अदम्य साहस और नेतृत्व का परिचय दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद जवानों का नेतृत्व जारी रखा और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। दोस्तों, 29 मई सन 1999 को मात्र

भूमि की रक्षा करते हुए आप बलिदान हो गए। उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम तिथि विशेष में एक और तिथि के संबंध में आपको बता देते हैं दोस्तों। 10 अगस्त सन 2003 में रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी मोलिनचेंको ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के वीडियो लिंक के जरिए अमेरिका में मौजूद अपनी मंगेतर एकातेरिना दिमित्रियेवा से विवाह किया। इसके साथ ही वे अंतरिक्ष में शादी करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए। तो दोस्तों ये थी आज की तिथि विशेष में। आज की तिथि में विश्व और स्थानीय स्तर पर हुई कुछ खास घटनाओं की जानकारी। दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम के अंतिम चरण में आपको सुनवा देते हैं एक ये प्यारा सा गीत।

तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि इस कार्यक्रम में को हम और भी बेहतर बना सकते थे, तो आप अपने सुझाव हमें आपका पत्र मिला कार्यक्रम में पत्र और व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। कल आपसे पुनः भेंट होगी कुछ और खास जानकारियों और प्यारे प्यारे से फिल्मी गीतों के साथ। तब तक आप आकाशवाणी नजीबाबाद के कार्यक्रमों को सुनते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और याद रखिए कि जिंदगी के इस सफर पर हम सब मुसाफिर हैं। कोई काफी अकेला है और कोई अकेला ही काफी है। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने को हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। भारतीय और अमरीकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए अपने सामूहिक संकल्प को नवीकृत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें

0: मान्यता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
1: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
2: संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसे मंत्रालय ने अपनी तरह की पहली पहल बताया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: तिरंगा, हर घर तिरंगा।
0: महाराष्ट्र में देशभक्ति के उत्साह के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। राज्य के कई जिलों में स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा रैलियां और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीड में जिला प्रशासन, जिला खेल अधिकारी कार्यालय और विभिन्न खेल संगठनों ने मिलकर जिला खेल परिसर से एक तिरंगा रैली आयोजित की। बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पटना में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका नेतृत्व करेंगे।
3: कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से आयोजित यह यात्रा सुबह 10 बजे जेपी गोलंबर से रवाना होकर कारगिल चौक पहुंचेगी। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर प्रखंड को जीविका के माध्यम से 4,000 तिरंगे उपलब्ध कराए गए हैं। गौरतलब है कि तिरंगा यात्रा का बिहार में विशेष महत्व है, क्योंकि 11 अगस्त 1942 में बिहार के 7 वीर विद्यार्थी तत्कालीन पटना सचिवालय पर तिरंगा लहराने के क्रम में अंग्रेजों की गोलियों से एक एक कर शहीद हो गए थे। तिरंगे की शान के लिए जान की बाजी लगाने वाले इन छात्रों की याद में पटना विधानमंडल के सामने शहीद स्मारक बनाया गया है। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: मणिपुर में भी हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया गया है। ये अभियान 17 अगस्त 2026 को समाप्त होगा। अभियान के दौरान नागरिक अपने घरों पर तिरंगा ध्वज फहराएंगे। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद ने इम्फाल पश्चिम जिले के सिंह गाजामी स्थित अपने आवास से अभियान में भाग लेते हुए लोगों से पहले खुद को भारतीय और फिर मणिपुरी मानने का आग्रह किया। दिल्ली मेट्रो रेल ने स्वतंत्रता की भावना का उत्सव मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम से सजी एक विशेष मेट्रो ट्रेन शुरू की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डीएमआरसी ने बताया कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों के तहत इस ट्रेन को तैयार किया गया है। लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 शामिल हैं। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश करेंगी। भारत ने गैर जीवाश्मी ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। एक रिपोर्ट।
4: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि देश की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है, जिसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है। ये 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। मंत्रालय ने कहा कि 2025-26 के दौरान देश में जीवाश्म ईंधन रहित बिजली उत्पादन क्षमता में 55.29 गीगावाट की वृद्धि हुई, जिसमें सौर ऊर्जा का 44.6 गीगावाट और पवन ऊर्जा के 6 गीगावाट का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये 2014-15 में लगभग 191 अरब यूनिट से बढ़कर 2025-26 में 477 अरब यूनिट से अधिक हो गई है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: झारखंड में पुलिस ने विधानसभा परिसर के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है और रांची में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
5: झारखंड में कथित भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्र आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और झारखंड सरकार के बीच लगातार तीन दौर की वार्ता में परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच, प्रभावित परीक्षाओं को रद्द करने, दोषियों पर कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में सुधार पर चर्चा हुई। सरकार ने 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने, टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं की विस्तृत जांच और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर सरकार ने कहा कि मामला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की निगरानी में है, इसलिए इसे सीधे रद्द करना संभव नहीं है। उधर छात्रों ने सरकार के प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा घेराव के अपने कार्यक्रम पर कायम है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना अमरीकी नौसेना का संयुक्त विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू होकर 14 अगस्त तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की ईओडी टीमों और विशेषज्ञ गोताखोरों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना है। रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए हिंद महासागर और भारत तक रेल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। रूस के उप प्रधानमंत्री मराट खुसलुनिन ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य और बोस्फोरस जलडमरू मध्य सहित दो रणनीतिक जलमार्गों से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार श्री खुसलुनिन ने कहा कि भारत तक पहुंच प्रदान करने के लिए तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से होकर गुजरने वाले रेल मार्गों का पता लगाया जा सकता है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने स्नैच में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 285 किलोग्राम भार उठाया। वियतनाम के वांग थाश ने 291 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले दो दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
6: मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय है। मॉनसून तरफ और निम्न दबाव क्षेत्र के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं राजगढ़, विदिशा, सीहोर, हरदा और देवास में मौसम विभाग ने अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे में 8 इंच तक बारिश होने का अनुमान है। भोपाल और उज्जैन संभाग में रात से बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में तेज बारिश का दौर अगले दो दिन तक रह सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मूसलाधार बारिश की संभावना के मद्देनजर अधिकारी कमजोर तटबंधों और निचले इलाकों पर कड़ी नजर रख रहे हैं।
7: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है, जबकि भद्रक और जाजपुर में बैतरणी, सालंदी और कानी नदियों के पानी ने गांवों, खेतों और सड़कों को जलमग्न कर दिया है। केंद्रापड़ा के कई इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। आईएमडी ने अगले 24 घंटे के दौरान कई उत्तरी और पश्चिम जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है और मौसम प्रणाली के कारण आने वाले दिनों में भी राज्य में बारिश जारी रहने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में आज बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। आज सावन माह का दूसरा सोमवार है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने श्रद्धालुओं और कांवड़ियों के लिए व्यापक व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
8: कांवड़ यात्रा ऐप श्रद्धालुओं और प्रशासन के बीच संवाद की सीधी कड़ी बन गया है। तीर्थयात्रियों को उनके मोबाइल फोन पर जरूरी जानकारी मिल रही है। वहीं नियंत्रण कक्ष और फील्ड अधिकारी एक साथ ही जमीनी व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। ये ऐप श्रद्धालुओं को एक क्लिक पर यात्रा से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी उपलब्ध करा रहा है। ऐप में पूरे रास्ते का मानचित्र, मंदिर, शौचालय, चिकित्सा सुविधाएं और भोजन की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है। श्रद्धालु शिकायत या आपात स्थिति में तत्काल सहायता प्राप्त करने के लिए भी इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं।

0: सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर राजेश सिन्हा भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद विशाल। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। जनसत्ता की सुर्खी है, झारखंड में झुकी सरकार, जेपीएससी के सभी सदस्यों का इस्तीफा, 3 परीक्षाएं रद्द करने पर सहमति, प्रदर्शनकारी सीबीआई जांच पर अड़े। बिहार में शिक्षा परीक्षा सुधार के लिए बनेगी समिति, नवभारत टाइम्स लिखता है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़, गुणवत्तापूर्ण और छात्र केंद्रित बनाने के लिए 4 बड़ी घोषणाएं की। संसद के मॉनसून सत्र को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका के अनुसार संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टूट सकता है गतिरोध, लोकसभा में आ जाएंगे 4 विधेयक, मेटा को भारतीय कानूनों का करना होगा पालन, दैनिक जागरण की खबर है। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की टर्बुलेंस फ्लाइट के मुख्य पायलट का ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट संदिग्ध पाया गया, दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार परीक्षण की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार, जांच और परीक्षण प्रक्रिया पूरी होने तक डीजीसीए ने उड़ान चालक दल के 2 सदस्यों को ड्यूटी से हटाया। डीमैट और म्यूचुअल फंड में नॉमिनी जोड़ना ही होगा, हिंदुस्तान के बिजनेस पन्ने पर है, बाजार नियामक सेबी के नए नियम 1 सितंबर से लागू होंगे।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। भारतीय और अमरीकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अर्जेस पीपल टू जॉइन हर घर तिरंगा मूवमेंट एंड होइस्ट द ट्राइकलर एट होम्स। इंडिया क्रॉसेस 300 गीगावाट्स ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी। Indian and US Navy's explosive ordnance disposal exercise to begin today at Southern Naval Command in Kochi. Russia proposes railway route to India to reduce dependence on strategically important maritime routes like Strait of Hormuz. And Maharajan Arumuga Pandian clinches silver medal in men's 65 kg category at Asian Junior Weightlifting Championships in Tashkent. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to participate enthusiastically in the Har Ghar Tiranga movement and renew their collective resolve to contribute towards building a Viksit Bharat. In a social media post, Mr. Modi said, "Our tricolour is our pride and a constant source of inspiration to always give our best for the nation." The Prime Minister said he is glad that this year's efforts are dedicated to Vande Mataram and that too at a time when we are marking its 150th anniversary. In his Man Ki Baat program on Akashwani last month, Mr. Modi urged people to hoist the tricolour at homes.
4: पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है, अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है।
3: More on this in this report.
5: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
6: The Ministry of Culture has said the Har Ghar Tiranga campaign this year would seek to bring the spirit of patriotism to streets and homes across the country through Tiranga Yatras, Tiranga Rallies, Tiranga Concerts and mass singing of

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि वो हर घर तिरंगा तहरीक में शामिल हों और अपने घरों में तिरंगा लहराएं। भारत में गैर रिवायती ईंधन वाली बिजली पैदावार की सलाहियत 300 गीगावाट से ज्यादा हो गई है। भारत और अमेरिका कोची में जनूबी बहरी कमान में आज धमाका खेज हथियारों के बंदोबस्त की मशक शुरू करेंगे। रूस ने आब नाए हुरमुज जैसे दिफाई एतबार से अहम समुद्री रास्तों पर इन्हिसार को कम करने के लिए भारत तक रेल रास्ते की तजवीज रखी है। और महाराजा उरुमुंग पांडियन ने ताशकंद में एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मर्दों के 65 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा मुहिम में जोशो खरोश के साथ शिरकत करने और विकसित भारत की तामीर में अपने तआवुन के इज्तिमाई अहद का एआदा करने की अपील की है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि तिरंगा मुल्क की शान है, नीज ये मुल्क के लिए हमेशा अव्वलीन तरजीह देने की तहरीक का एक जामे वसीला है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह कहते हुए मुसर्रत का इजहार किया कि इस साल की काविशें वंदे मातरम के लिए वक्फ हैं, क्योंकि इसकी 150वीं सालगिरह है। पिछले महीने आकाशवाणी पर मन की बात के अपने प्रोग्राम में जनाब मोदी ने अवाम से अपील की थी कि वो अपने घरों पर तिरंगा परचम लहराएं।
1: पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है, अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है।
0: पेश है एक रिपोर्ट।
2: सिखाफत की वजारत ने कहा है कि इस साल हर घर तिरंगा में मुहिम तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा प्रोग्रामों और के गीत के जरिए मुल्क भर में सड़कों और घरों में हुब्बुल वतनी का जज्बा

0: पैदा करेंगे। वजारत ने कहा है कि वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह शहरियों को मौका भी फराहम करेगी ताकि वो यौम आज़ादी के त्यौहार के हिस्से के तौर पर कौमी नगमे का गाकर जश्न मना सकें। इस साल की तकरीबात की एक अहम खसूसियत सूर्य पर तिरंगा होगी, जिसे वजारत ने अपनी नौइयत का एक पहला कदम बताया है, जिसका मकसद दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों को तिरंगा की एक आलमी तकरीब में यकजा किया जा सके। वजारत ने शहरियों से अपील की है कि वो अपने घरों में कौमी परचम लहराएं और हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपनी सेल्फीज अपलोड करें। हर घर तिरंगा मुहिम यौम आज़ादी की तकरीबात से वाबस्ता मुल्कगीर अवामी शिरकत की एक पहल के तौर पर उभरी है, जिससे शहरियों को कौमी परचम की नुमाइश करने और मुल्क के साथ अपनी वाबस्तगी का इजहार करने का हौसला मिलेगा। आशीष अब्राहम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: महाराष्ट्र में हर घर तिरंगा मुहिम हुबुल वतनी के जज्बे के साथ शुरू हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: बीड, थाने और बुलढाणा समेत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ जिलों में तिरंगा रैलियों का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा, खिलाड़ियों, एनसीसी कैडेट्स और शहरियों ने पूरे जोश जज्बे के साथ शिरकत की। थाने में एक साइकिल रैली के जरिए माहौलियात के तहफ्फुज और सेहतमंद जिंदगी को फरोग दिया गया। खेमगांव में टीवी के बारे में और रैलियों और नुक्कड़ नाटक के जरिए मनुष्यात से पाक भारत के तई बेदारी पैदा की गई। इस मुहिम का मकसद हुबुल वतनी के जज्बे को फरोग देना और यौम आज़ादी की तकरीबात में आवाम की शिरकत की हौसला अफजाई करना है। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: बिहार में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत आज पटना में एक बड़ी तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया जाएगा। हमारे नामा निगार ने इत्तला दी है कि वजीर आला सम्राट चौधरी इस मुहिम की क़यादत करेंगे।
3: हर घर तिरंगा मार्च आज सुबह 10 बजे से जेपी गोलम्बार से शुरू होगी, जो करगिल चौक तक जाएगी। इसका एहतमाम फन, सकाफत और नौजवानों के महकमे की तरफ से किया गया है। तिरंगा यात्रा में बड़ी तादाद में लोग शिरकत करेंगे। इसी दौरान इस मुहिम के तहत जीविका के जरिए रियासत में हर ब्लॉक को 4000 तिरंगा परचम फराहम किए गए हैं। मुहिम के हिस्से के तौर पर वंदे मातरम के गीत, खून के अतिया के कैंप्स, तिरंगा नुमाइशों, तिरंगा के साथ सेल्फी और तिरंगा रंगोली समेत मुख्तलिफ गर्मियों का भी एहतमाम किया जाएगा। पटना से सविता पारिक की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
1: मगरबी बंगाल में हर घर तिरंगा मुहिम के हिस्से के तौर पर आज कोलकाता में तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया जा रहा है। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी जुलूस की क्यादत करेंगे, जो घोस्तों पलसरानी से दोपहर में शुरू होगी और विक्टोरिया मेमोरियल पर खत्म हो जाएगी। मुख्तलिफ महकमों के वजरा, इंतजामिया के सीनियर अहलकार और शहरियों की एक बड़ी तादाद की इसमें शिरकत मुतवक्के है। वजीर आला ने उम्मीद जाहिर की है तकरीबन 50,000 लोग यात्रा में शिरकत करेंगे। कोलकाता ट्रैफिक पुलिस ने जुलूस के पेश नजर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रैफिक पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। मणिपुर ने भी मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ हर घर तिरंगा मुहिम के इनेकाद में शिरकत की। यह प्रोग्राम 17 अगस्त 2026 को इख्तिताम पजीर होगा। इस मुहिम का मकसद भारत के इतिहाद का जश्न मनाना और तिरंगा के तई गहरे एहतराम का मुजाहरा करना है। इस मुहिम के दौरान शहरी अपने घरों पर तिरंगा लहराएंगे। मणिपुर के वजीर आला यमनाम खेमचंद मगरबी इम्फाल के संगजिमी में अपनी रिहायशगाह से इस मुहिम में शिरकत करेंगे। उन्होंने अवाम से पुरजोर अपील की है कि वो सबसे पहले खुद को भारतीय, उसके बाद मणिपुरी समझें। भारत गैर रिवायती ईंधन पर मबनी बिजली की पैदावार 300 गीगावाट की सलाहियत से आगे बढ़ गया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
0: इस उसूलियाबी से 2030 के 500 गीगावाट सलाहियत के निशाने में से 60% से ज्यादा हिस्सा पूरा हो चुका है। नई और बार बार इस्तेमाल होने वाली तवानाई की वजारत ने कहा कि मुल्क की बिजली पैदावार की कुल सलाहियत में गैर रिवायती ईंधन पर मबनी बिजली सलाहियत का हिस्सा 54% से ज्यादा हो चुका है। वजारत ने यह भी कहा कि साफ सुथरी तवानाई की पैदावार में बहुत से शोबों का तआवुन रहा है। गैर रिवायती ईंधन की मजमूई सलाहियत में शमसी तवानाई इस मैदान की तरक्की में पेश पेश रही। वजारत के मुताबिक 2025-26 के दौरान मुल्क में गैर रवायती ईंधन की 55.29 गीगावाट की सलाहियत का इजाफा हुआ है। बार बार इस्तेमाल होने वाली तवानाई की सलाहियत में भी तेज रफ्तार तरक्की का पता चलता है। 2014-15 में यह सलाहियत 191 अरब यूनिट थी, जबकि 2025-26 में ये 477 अरब यूनिट से ज्यादा हो गई। न्यूज डेस्क से आनंद की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बे।
1: लोकसभा में आज 4 बिल पेश किए जाएंगे। इनमें ट्रिब्यूनलिज्म में इस्लाहात का 2026 का बिल, कानों और मादनियात के फरोग और मुतालिका जाब्तों में तरमीम का 2026 का बिल, केरला का नाम तब्दील किए जाने से मुतालिक 2026 का बिल और इमदाद बाहमी के फरोग में कौमी कॉरपोरेशन में 2026 का बिल शामिल है। राज्यसभा में मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन बैंकरों के रिकॉर्ड के शवाहिद से मुतालिक 2026 का

0: बिल पेश करेंगी। इसमें बैंकरों के रिकॉर्ड को कानूनी शवाहिद के तौर पर पेश करने और इसे मौजूदा दौर की डिजिटल बैंकिंग के कामकाज के मुताबिक बनाने के लिए कहा गया है। ऐवान में टैक्सेशन और दीगर कवानीन में तरमीम का 2026 का बिल भी पेश किया जाएगा। इस बिल में रकम की अदायगी और तस्फीये के निजाम से मुतालिक 2007 के कानून, इनकम टैक्स 2025 के कानून और मालियात से मुतालिक 2026 के कानून में तरमीम के लिए कहा गया है। इन दोनों बिलों को लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है। ये खबरनामा आकाशवाणी से पेश किया जा रहा है। जेपीएससी जेएसएससी इम्तिहानात में मुबैना बदउनवानियों पर तलबा और झारखंड सरकार के दरमियान तीसरे दौर की बातचीत के बावजूद तातुल अब भी जारी है। तलबा ने हुकूमत की तजावीज को पूरी तरह तस्लीम नहीं किया है और आज विधानसभा के घेराव के अपने प्रोग्राम पर बजीद हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: झारखंड में एहतजाज का आज 17वां दिन है। तलबा और झारखंड सरकार के दरमियान बातचीत में मुबैना बदउनवानियों की तहकीकात, इम्तहानात की मनसूखी, कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई और इम्तहान के निजाम में इसलाह पर तवज्जो मरकूज की गई। हुकूमत ने 14वीं जेपीएससी प्रीलिमिनरी इम्तहान मनसूख करने से इत्तेफाक किया है और तफसीली तहकीकात का हुक्म दिया है। सीआईडी के एडीजी मनोज कौशिक ने इस सिलसिले में एक शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी की है। उन्होंने कहा है कि अभी तक 19 मुलजमीन को गिरफ्तार किया जा चुका है और डिजिटल शवाहिद भी काफ़ी तादाद में इकट्ठा किए जा चुके हैं। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: तलबा के जारी मुजाहरों के पेश नजर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी के तीन मुलाजमीन ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। जेपीएससी के तीन मेंबरों अजीता भट्टाचार्य, जमील अहमद और अनीमा हंसा ने कल गवर्नर संतोष कुमार गंगवार को अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। भारतीय बहरिया और अमरीकी बहरिया की जानिब से धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाने से मुतालिक मुश्तरका मश्क ईवोडी 2026 आज से 14 अगस्त तक कोची में वाकई जुनूबी बहरी कमान में मुनाकिद की जाएगी। वजारत दिफा के मुताबिक इस बाहमी मश्क का मकसद दोनों बहरी अफवाज के माहिर गोताखोर और धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाने वाली टीमों के दरमियान बाहमी तआवुन और अमली हमा आहंगी को मजीद मुस्तहकम करना है। 5 रोजा इस मशक के दौरान माहिरीन के दरमियान तजुर्बात और मालूमात का तबादला, मुश्तरका तरबियती सरगर्मियां, मुख्तलिफ आलात का अमली मुजाहरा और सूरत हाल पर मबनी अमली मशकें की जाएंगी। वजारती दिफा के मुताबिक भारतीय और अमरीकी बहरिया साल 2005 से ये मुश्तरका मशकें करती आ रही है। आइंदा होने वाली मशक इस सिलसिले की 8वीं कड़ी होगी। भारत के महकमे मौसमियात आईएमडी ने आज मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मगरबी उत्तर प्रदेश में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ और शिमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने आज दोपहर दिल्ली के कुछ इलाकों में मोतदिल बारिश की पेशगोई की है। उड़ीसा में सैलाब की सूरत हाल लगातार संगीन बनी हुई है क्योंकि बहुत से अजला सैलाब के पानी में डूबे हुए हैं, जबकि आने वाले दिनों में मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में सैलाब की सूरत हाल एक बड़ी तशवीश का मसला बनी हुई है। ताज के इलाकों में शदीद बारिश के बाद दरियाओं के पानी में फिर इजाफा हो रहा है। बालासोर में जालाकार दरिया में पानी के इजाफे से बस्ता में सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। केंद्रपाड़ा के बहुत से इलाके भी मुतासिर हुए हैं। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भी शदीद बारिश के सबब मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुए हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का यह सिलसिला अगले 2 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। रूस ने बहर हिंद के लिए एक रेलवे रास्ते का पता लगाने की तजवीज रखी है, जिससे भारत का अहम बहरी रास्तों पर इन्हिसार कम होगा। रूस के नायब वजीर आजम मारात खुसलीन ने बताया कि मुतबादिल रास्तों से आबनाए हुरमुज और आबनाए फास्फोरस समेत 2 किलीदी आबी गुजरगाहों से जुड़े खतरनाक रास्तों से गुजरने के खतरे में मदद मिल सकती है। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक जनाब खुसुनील ने बताया कि तुर्कवानिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से गुजरने वाले रेल रास्तों का पता लगाया जा सकता है ताकि भारत को आसानी से रसाई फराहम की जा सके। ये तजवीज मगरबी एशिया में जारी जंग के पेश नजर सामने आई है, जिसमें आबनाए हुरमुज के रास्ते जहाजों के गुजरने में रुकावटें खड़ी कर दी हैं। मुजवजा रेल रास्तों से वसी जोग्राफियाई, सियासी और माशी मुजमरात पैदा हो सकते हैं क्योंकि ये वस्ती और जनूबी एशिया के जरिए बहरे हिंद के लिए रूस को एक मुतबादल बहरी रास्ता फराहम हो सकता है। भारत ने बोलीविया को जिंदगी बचाने वाली और लाजमी दवाएं रवाना की हैं। भारत ने ये 8 मैट्रिक टन दवाओं की खेप हिफ्जाने सेहत के तई सलाहियत और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रवाना की हैं। वजारत खारजा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारत इजहार यकजहती और मुश्तरक तरक्की के जरिए दूसरे मुल्कों को तआवुन जारी रखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उज्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मर्दों के 65 किलोग्राम जुमरे में भारत के वेट लिफ्टर महाराजन अरमुगा पांडियन ने चांदी का तमगा जीता है। भारतीय वेट लिफ्टर ने स्नैच में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह उन्होंने मजमुई तौर पर 285 किलोग्राम वजन उठाकर बेहतरीन जाती रिकॉर्ड बनाया। वियतनाम के हुआंग टेक ने कुल 291 किलोग्राम वजन उठाकर सोने का तमगा जीता। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर।
1: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने भारत की जंग आजादी के तनाजुर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को सफाए अव्वल पर शाया किया है कि भारत छोड़ो तहरीक में शामिल लोगों की कुर्बानियों और उनका अज्म आने वाली नस्लों को मुतासिर करता रहेगा और हर भारतीय शहरी में आजादी के तई नई तवानाई पैदा करेगा। रोजनामा प्रताप ने अगस्त क्रांति के तनाजुर में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन के इस बयान को सफाई अव्वल पर शाया किया है कि भारत एक है और हमेशा एक ही रहेगा। इसी अखबार की एक और खबर के मुताबिक वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय मुसल्ला अफवाज ने बेमिसाल शुजात का मुजाहरा किया और भारत अपने शहरियों की सलामती और उनकी हिफाजत के लिए अहदबंद है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत मुस्तफिदीन को 1 करोड़ से ज्यादा मकानात उनके सुपुर्द किए गए, इस खबर को आज के अखबारों ने नुमाया किया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि वो हर घर तिरंगा तहरीक में शामिल हों और अपने घरों में तिरंगा लहराएं। भारत में गैर रिवायती ईंधन वाली बिजली पैदावार की सलाहियत 300 गीगावाट से ज्यादा हो गई है। भारत और अमेरिका कोची में जुनूबी बहरी कमान में आज धमाका खेज हथियारों के बंदोबस्त की मशक शुरू करेंगे। रूस ने आबनाए हुरमुज जैसे दिफाई एतबार से अहम समंदरी रास्तों पर इन्हिसार को कम करने के लिए भारत तक रेल रास्ते की तजवीज रखी है। और महाराजा उरुमुग पांडियन ने ताशकंद में एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स में मर्दों के 65 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। गोल्डन हिट्स सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, हो चुकी है कार्यक्रम की शुरुआत और देखिएगा जब किसी का आगाज होता है, किसी चीज की शुरुआत होती है, कोई हमारे जीवन से जुड़ता है तो इस आगाज को अंजाम तक ले जाने के बीच हमें हमारे दिल के अनुसार अपने सामने वाले से दिलों की बातों को करना होता है साझा। और जब हम दिलों के भावों को साझा करते हैं तो दिल के तार जुड़ जाते हैं और एक संगीतमयी तरंग का होता है जीवन में एहसास। कहते हैं कि तेरी मुस्कान से दिल धड़क जाए, तेरी यादों से रूह महका जाए। तेरी मुस्कान से दिल धड़क जाए, तेरी यादों से रूह महका जाए, तुझ बिन हर पल लगता है अधूरा सा। तुझ बिन लगता है हर पल अधूरा सा, तू साथ हो तो जैसे जहां सज जाए।

अभी आपने सुना आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म तीसरी मंजिल का प्यारा सा गीत, जिसे लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। अगर अपनों से दूर रहकर उनकी कदर जानी,

तो रचे कौन सी नई कहानी। मजा तो तब है जब साथ भी हो अपनों का, शिकायत भी हो, शिकायतों का हिसाब भी हो, और फिर भी मोहब्बत बेहिसाब हो। अब सुन लेते हैं एक जरूरी संदेश।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। दोस्तों, दिलों की बातें गीत संगीत में बड़ी सहजता के साथ बड़े अंदाज में तरीके में बयां कर दी जाती है। किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि एक तेरा ही ख्याल है हमारे पास, वरना अकेले में कौन मुस्कुराता है।

दोस्तों, बूंदों की सरगम, हवाओं का गीत, बारिश में खो जाए दिल की हर प्रीत, हर बूंद कहे एक नई कहानी, बारिश में बिखरे दिलों की रवानी।

गहरा जख्म फिल्म का भी गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोंसले की युगल आवाजों में। इस गीत को लिखा विट्ठल भाई पटेल ने और संगीत आरडी बर्मन ने दिया। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब सुन लेते हैं जरूरी संदेश।

0: बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
0: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
0: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
1: पर दीप,
0: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
0: अच्छा,
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, हर एक चीज की सीमा होती है, हद होती है, लेकिन प्रेम की कोई सीमा नहीं। ये अथाह सागर की तरह है कि इसमें जितना डूबा जाए उतना ही जीवन में आनंद आता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि बहुत खूबसूरत है ये आंखें तुम्हारी, इन्हें बना लो चाहत हमारी। बहुत खूबसूरत है ये आंखें तुम्हारी, इन्हें बना लो चाहत हमारी। हम नहीं मांगते दुनिया की खुशियां, जो तुम बन जाओ मोहब्बत हमारी।

मुकेश की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म दूल्हा दुल्हन का प्यारा सा गीत, जिसे लिखा इंदीवर ने, संगीतबद्ध किया कल्याण जी आनंद जी ने। और दोस्तों, बारिश का मौसम है और देखिएगा, बारिश जब आसमान से ज़मीन का स्पर्श करती है यानी धरती पर उतरती है, तो एक

खुशबू का एहसास हमारे जीवन में हो जाता है, लेकिन खुशबू हर जगह बदल जाती है। हम खेत में होते हैं तो वहाँ बारिश की कुछ और ही खुशबू होती है, जब अपने घर आंगन में उस बारिश की खुशबू की महक को महसूस करते हैं तो उसका लुत्फ कुछ और ही होता है, लेकिन जब प्यार के मौसम में यानी प्यार की बातों में बारिश हो तो उसका एहसास कुछ ऐसा होता है।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने सुना फिल्म फिर कब मिलोगी का ये प्यारा सा गीत, मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा और आरडी बर्मन का संगीतबद्ध किया। और दोस्तों, कार्यक्रम में अब अंतिम गीत, और उससे पहले एक और ये प्यारी सी बात कि इश्क तुझसे मेरे यार रहने दे, इश्क तुझसे मेरे यार रहने दे, दिल की तड़प बेशुमार रहने दे, आज बस चाहत की बात कर, कल के लिए ये तकरार रहने दे।

फिल्म कहीं दिन कहीं रात का ये प्यारा सा गीत, जिसे आवाज़ दी महेंद्र कपूर ने और गीत लिखाया सच बिहारी ने, संगीत ओपी नैयर का। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स अब यहीं पर संपन्न होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे लखनऊ केंद्र से सुनेंगे जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए अलीगढ़ और भदोही जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अलीगढ़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रजनीश सिंह का।
2: कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय KGBB अतरौली अलीगढ़ की छात्राओं के लिए 5 अगस्त का दिन अविस्मरणीय रहा। शैक्षिक भ्रमण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंची छात्राओं ने लोकतंत्र के इस मंदिर का भ्रमण कर न केवल इसकी गरिमा को निकट में महसूस किया बल्कि यह भी जाना कि प्रदेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था किस प्रकार संचालित होती है। इस दौरान उन्होंने समझा कि जनहित से जुड़े विषयों पर विधानसभा में किस प्रकार चर्चा होती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। भ्रमण के दौरान छात्राओं ने विधानसभा भवन के विभिन्न हिस्सों का अवलोकन किया तथा इसकी ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक महत्ता के बारे में विस्तार से जानकारी की। उन्हें सदन की कार्रवाई, जनप्रतिनिधियों की भूमिका और विधायी प्रक्रियाओं से जुड़े विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया। इस अवसर पर छात्राओं ने उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से भी भेंट की। उन्होंने छात्राओं से संवाद करते हुए शिक्षा के महत्व, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्र निर्माण के निर्माण में युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने छात्राओं को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहने का प्रेरक संदेश भी दिया। भ्रमण के दौरान अतरौली विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने छात्राओं का उत्साह वर्धन करते हुए उनके साथ यादगार पल साझा किए। उन्होंने छात्राओं को पूरे मनोयोग से अध्ययन करने और जीवन में नए आयाम स्थापित करने के लिए प्रेरित किया तथा उनके साथ स्मृति स्वरूप फोटो भी खिंचवाए। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के माध्यम से ग्रामीण पृष्ठभूमि की बेटियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षा और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि बेटियां देश का उज्जवल भविष्य हैं और इस प्रकार के शैक्षणिक एवं व्यवहारिक भ्रमण में बालिकाओं में सुशासन, संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रति व्यवहारिक समझ विकसित होगी। केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय अलीगढ़ द्वारा गौरव इंटर कॉलेज अलीगढ़ में नशा मुक्त भारत व विकसित भारत जी राम जी कानून कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बनी सिंह बघेल, पूर्व जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य अलीगढ़ ने कार्यक्रम में ग्रामीण रोजगार गारंटी, नए ढांचे, जी राम जी कानून 2025

0: के आर्थिक एवं सामाजिक पहलुओं की जानकारी दी। बताया कि अब ग्रामीणों को 100 दिन के स्थान पर 125 दिन का रोजगार मिलेगा। डॉक्टर एस एल सिसोदिया अध्यक्ष वेलफेयर कोचिंग सेंटर अलीगढ़ ने बताया कि युवाओं को नशे के चंगुल से बचाने के लिए नशा मुक्ति भारत अभियान चलाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर आयोजित होने वाले हर घर तिरंगा अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए जिले में व्यापक तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने बैठक कर तिरंगा झंडों के निर्माण एवं अन्य कार्यक्रमों के संबंध में विस्तृत समीक्षा की। बैठक का संचालन करते हुए मुख्य विकास अधिकारी योगेंद्र कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों का 286,000 एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत समूहों को 288,000 राष्ट्रीय ध्वज तैयार करने का लक्ष्य सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि जिले में 144 सिलाई केंद्रों पर अब तक 44,000 से अधिक झंडे बन गए हैं। निर्धारित समय विधि में कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने नगर निगम सहित जिले के सभी नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों एवं पंचायत उनकी आवश्यकता के अनुसार तिरंगों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में बताया कि नगर निगम को सर्वाधिक 218,000 तिरंगे उपलब्ध कराए जाएंगे। नगरी क्षेत्र में स्ट्रीट डॉग्स के प्रभावी प्रबंधन एवं नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के सतत प्रयासों से नगर निगम ने लगभग 19 लाख की लागत से 2 आधुनिक डॉग कैचर वाहनों का क्रय किया है। इन वाहनों को महापौर एवं नगर निगम नगर आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
1: पूरे शहर को जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, खासतौर से स्ट्रे डॉग्स होते हैं, उनसे राहत दिलाने की दिशा में 2 नए डॉग कैचर्स हम लोगों ने प्रोक्योर करके उनको ऑपरेशनलाइज किया है। और इसका यही उद्देश्य है, जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि जो हमारे पब्लिक एरियाज हैं वहां से हम खासतौर से डॉग्स को हटाकर वहां पे जो डॉग्स रिहैबिलिटेशन सेंटर अब बनाए जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट पे, हर शहर में, साथ ही साथ वहां पर उनका प्रॉपर मेडिकेशन हो सके, उनका रखरखाव हो सके, तो लोगों को भी बहुत सारे जो इंसिडेंट्स हो जाते हैं, डॉग बाइट्स के इंसिडेंट हो जाते हैं, बच्चों के साथ इंसिडेंट्स हो जाते हैं, उससे मुझे लगता है काफी राहत इसमें मिलेगी और जो एनिमल्स हैं उनकी भी केयरिंग और उनका रखरखाव हम लोग अच्छे से कर पाएंगे।
2: अलीगढ़ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं भदोही जिले की हलचल। आलेख और स्वर है संजय सिंह का।
3: भदोही परिषदीय प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक कंपोजिट विद्यालयों में अध्ययनरत 140,000 नौनिहालों को भाषा और अंक गणित की गणना में दक्ष बनाया जाएगा। बच्चों में भाषा व अंक की गणना की बेहतर समझ विकसित हो इसको लेकर पहले ही शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर आसान ढंग से समझाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके पश्चात वो बच्चों को दक्ष बनाएंगे। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी के तहत शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए जिले में 35 मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए हैं। शीघ्र ही जिले के 885 विद्यालयों में तैनात शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का काम शुरू हो जाएगा। परिषदीय विद्यालय में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हासिल हो इसको लेकर तमाम शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। मध्याह्न भोजन योजना में रसोई में छोटी छोटी व्यवस्था सामग्री की खरीद को शासन ने 6,20,000 रुपए का बजट जारी किया है। बीएसएस सुरेंद्र पांडे ने बताया कि जिले के सभी विद्यालयों में 700 रुपए की दर से धनराशि भेजी गई है। इससे रसोई में एप्रेन, तेल, मसाला, अन्य खास सामग्री रखने के लिए डब्बा, कलछुल, चम्मच जैसी चीजें क्रय की जा सकती हैं। भदोही जिले का 5वीं बार नाम बदल दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले का नाम भदोही से शब्द हटाते हुए संत रविदास नगर कर दिया। 30 जून 1994 को पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने काशी नरेश विभूति नारायण की मौजूदगी में जीआईसी मैदान में भदोही को 65वां जिला बनाया था। लंबे समय से जिला बनाने की मांग लोगों की पूरी हो गई थी, लेकिन 4 दिसंबर 1997 को पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने जौनपुर जिले से भदोही में जोड़ी गई बरसठी तहसील को भदोही जिले से हटाकर जौनपुर में शामिल करते भदोही का नाम संत रविदास नगर कर दिया था। भदोही का नाम हटने से फिर लंबा आंदोलन चला। 1998 में प्रदेश में भाजपा सरकार बनी और पूर्व मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्ता ने 12 नवंबर 1999 को संत रविदास नगर के साथ भदोही जोड़ दिया गया था। आंदोलन थम गया, लेकिन सपा की अखिलेश सरकार ने 6 दिसंबर 2014 को फिर से इसे भदोही कर दिया गया, लेकिन कागजों में संत रविदास नगर के नाम से चलता रहा। 29 जुलाई 2026 को संत रविदास नगर हो गया। इससे जिले की सियासत गर्मा गई। सत्ता पक्ष के लोग इसे बेहतर विपरीत कोरी राजनीति बता रहे हैं। जिले से गुजरने वाले विंध्य एक्सप्रेसवे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर का कार्य अंतिम चरण में है। उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा की ओर से तहसीलवार गांव की भूमि के अभिलेख की जांच इस सप्ताह पूरी हो जाएगी। 6 लेन का एक्सप्रेसवे प्रयागराज से होते भदोही ज्ञानपुर औराई तहसील के 52 गांवों के 35 किमी क्षेत्र से होकर मिर्जापुर और सोनभद्र को जोड़ेगा। सर्वे मिट्टी की जांच हो चुकी है। 333 किमी लंबा एक्सप्रेसवे चार राज्यों की सीमाओं को जोड़ रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि तीनों तहसील में 6 लेन के हिसाब से जमीनों का नक्शा खतौनी, कितनी सरकारी जमीन है, कितनी भूमिधर है, कितने किसान इसकी जद में आ रहे हैं, इन सबकी रिपोर्ट तैयार होने पर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। इस परियोजना के तैयार होने से पूरी यूपी में व्यापार, पर्यटन और लॉजिस्टिक को नई रफ्तार मिलेगी। बौद्धिक सब्जी मसाले की खेती और किसान की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार पैसा देगी। किसान कद्दू वर्गीय सब्जियों को लेकर प्याज की खेती करेंगे और शासन की ओर से उन्हें भारी भरकम अनुदान मिलेगा। खेती के लिए लक्ष्य तय कर दिया गया तो एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में लक्ष्य के लिए उद्यान विभाग ने किसानों के लिए आवेदन लेना शुरू कर दिया है। संकर साग भाजी में 10 मसाला क्षेत्र का विस्तार कार्यक्रम में 63 हेक्टेयर प्याज की खेती कराने का लक्ष्य मिला है। जिला उद्यान अधिकारी ममता सिंह यादव ने बताया कि संकर साग भाजी क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के तहत 10 हेक्टेयर में खेती का लक्ष्य तय है। इसमें प्रति हेक्टेयर आने वाले कुल लागत 60,000 में 40% 24,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। काशी नरेश विश्वविद्यालय परिषद ने महाविद्यालय से विश्वविद्यालय तक अंतर यात्रा पर आयोजित संगोष्ठी मुख्य अतिथि सांसद विनोद बिंद ने कहा कि किसी विश्वविद्यालय की पहचान वहाँ के शोध और नवाचार से होती है। उन्होंने युवाओं से भारतीय संस्कृति परंपरा के साथ सकारात्मक सोच अपनाकर राष्ट्र निर्माण में सहयोग देने का आह्वान किया। तब विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने बताया कि 15 अप्रैल 2026 को स्थापित काशी नरेश विश्वविद्यालय के पहले वर्ष BCA, BSc, एग्रीकल्चर, BGMC, माइक्रोबायोलॉजी सहित 9 पाठ्यक्रम शुरू करने जा रही है। उन्होंने छात्राओं के लिए छात्रावास और कौशल विकास कार्यक्रम के लिए विस्तार में जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपील की। भदोही लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद विनोद कुमार बिंद ने लोकसभा में नियम 377 के तहत भदोही में एक आधुनिक कार्पेट म्यूजियम स्थापित करने की मांग की। उनका मानना है कि इस म्यूजियम से कालीन उद्योग की वैश्विक पहचान मौजूद होगी और साथ ही क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। सांसद विनोद कुमार बिंद ने सदन में कहा कि भदोही कालीन बुनाई सिर्फ एक उद्योग नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत है। हजारों कारीगर उद्यमी उस पारंपरिक कला से जुड़े हैं। हालांकि भदोही में ऐसा कोई संस्थान नहीं जो कालीन उद्योग की इतिहास परंपरा के विकास को व्यवस्थित प्रदर्शित।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
4: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। धरती गाती है कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं लोक कलाकार भुवनेश गिरी की आवाज में रागनी। लीजिए प्रस्तुत है इस कार्यक्रम की ये पहली रागनी।

0: इस रागनी के बाद आइए श्रोताओं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब सुन लेते हैं जरूरी संदेश।
1: आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रत्येक मंगलवार को
2: शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में सुनिए
1: गुणवत्ता युक्त बासमती धान उत्पादन हेतु

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है, और इस कार्यक्रम में आपको सुनवाई जा रही हैं लोक कलाकार भुवनेश गिरी की आवाज़ में रागिनी।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस कार्यक्रम की ये अंतिम रागिनी लोक कलाकार भुवनेश गिरी की आवाज़ में।

0: इसी रागनी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है और इस कार्यक्रम में आपको सुनवाई गई लोक कलाकार भुवनेश गिरी की आवाज में रागनी। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। गीत तुम्हारे कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपका अपना रेडियो मित्र चरणजीत सिंह
1: और मैं सुनीता रावत।
0: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपका है, आप ही के लिए है, क्योंकि इस कार्यक्रम में आप सीधे जुड़ जाते हैं अपने व्हाट्सएप मैसेजेस और पत्रों के माध्यम से। तो जो श्रोतागण हमारे इस कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं उन्हें तो इस कार्यक्रम का पता और मोबाइल नंबर मालूम ही है सुनीता जी, लेकिन फिर भी जो श्रोता हमारे साथ इस कार्यक्रम में नए जुड़े हैं हम उन्हें बता दें अपने इस कार्यक्रम का मोबाइल नंबर। तो हमारा मोबाइल नंबर है 9457078288 यानी 9457078288। और सुनीता जी, कुछ कार्यक्रम में हमारे श्रोता पत्र भेज कर भी अपनी फरमाइशें भेजते हैं हम तक, तो वो पता जी, आप जी, बता
1: बिल्कुल। जो हमारा पत्र भेजने के लिए जो हमारा पता है वो है गीत तुम्हारे द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन 24673।
0: तो सुनीता जी, इस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले जो पत्र हम तक पहुंचे उन्हें तो हमने इस कार्यक्रम में शामिल कर लिया है और इस अपेक्षा के साथ हम इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे अपने श्रोताओं के साथ कि अगर आप भी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं पत्रों के माध्यम से तो आप पत्र लिख भेजिएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम को शुरुआत देते हैं और शुरू करते हैं।
1: बिल्कुल
0: सुनीता जी, हम अपने मैसेजेस को पढ़ना तो देखेगा ये मैसेज हम तक पहुंचा है। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा का
1: जी बिल्कुल। और ये है हमारे पास भेजा है नाला सुपारा मुंबई से शेख नजमा बेगम, मोहम्मद आसिफ शेख, बेगम रूमा शेख, माहिरा शेख, नुमान शेख, सुलेमान शेख और शेख मोहम्मद कलीम का।
0: और ये मैसेज हम तक पहुंचा है व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजुर श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति पौरुष और इनके परिवार के अन्य सदस्यों का। रामगढ़ कैंट से हमें मैसेज भेज रहे हैं महेंद्र मोदी, कुलदीप कमल
1: जी बिल्कुल। और ये मैसेज हमें भेजा है महानगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर राही, श्रीमती सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर ने। और बदलापुर मुंबई से आप हैं प्रणीता गवाड़कर, सिद्धांत गवाड़कर, अर्जुन गवाड़कर। और आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से आप हैं वैशाली, शैलेश गवाड़कर, सुमित गवाड़कर, कुमारी ध्वनि गवाड़कर उर्फ परी।
0: और ये मैसेज हमें मिला है परवेज अहमद शुक्लपुरा बनारस से। और ये अगला मैसेज जो कि हम तक पहुंचा है
1: जी,
0: इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, केवल आदाब ही किया है। और ये हम अगला मैसेज शामिल कर रहे हैं मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और इनके परिवार के अन्य सदस्य। डी गणेश अविका आर्ट श्रीरामपुर से डी अशोक कुंभार, अविका जीविका, सानू कुंभार, अर्चना कुंभार, कोयते वस्ती पुनावले से अजय सोनवणे, करिश्मा सोनवणे, अविका सोनवणे, शाइसा सोनवणे ने भी मैसेज हमें लिख भेजा है
1: जी। आप हैं नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली, आपने हमें पत्र मैसेज भेजा है गंज डिंडवारा से। और आप हैं इरफान कुरेशी, शमशुल कमर राही।
0: और ये अगला मैसेज हम तक पहुंचा है मोहम्मद वक्कार फरीदी।

0: मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर, और ये मैसेज हमें लिखकर भेजा है मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जनपद बिजनौर से
1: जी। और ये हैं, आप हैं पुराना बस स्टैंड नगर पंचायत बढ़ापुर बिजनौर से एम ताहिर और इद्रीश हिलाल जैन।
0: और ये अगला मैसेज जो कि हम तक पहुंचा है दाऊदसराय सहारनपुर से अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी, जरीफ साबरी का, और सुनना चाहा है इन्होंने अपनी पसंद का ये गीत जो कि है फिल्म सांझ और सवेरा से। मोहम्मद रफ़ी की इस गीत में आवाज़ है और गीत रचना शैलेंद्र की, संगीत शंकर जयकिशन का।

0: ये प्यारा सा गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम सांझ और सवेरा। सुनीता जी, कुछ और मैसेज हमारे पास इस गीत के बीच पहुंच चुके हैं, तो ये कौन सा मैसेज हमारे पास?
1: जी, ये है मोहल्ला रेडियो श्रोता संग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़।
0: और ये अगला मैसेज जो कि हम तक पहुंचा है, अड़ार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश, दीपेश वर्मा का।
1: और ये मैसेज हमें भेजा है ग्राम लसुडिया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव दिव्या, सुमन कोमलपरी और कृतिका रमेश चंद्र दांगी।
0: झज्जर हरियाणा से हमें मैसेज भेज रहे हैं बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया, इनके परिवार के अन्य सदस्य

0: और ये मैसेज
1: मैसेज हमें भेजा है गंज ढिंडवारा से, आप हैं मोहम्मद कलीम सकमी, इंजीनियर भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, नाजमा बेगम नाज, भाभी सरिता गौतम और शबनम अनवार।
0: मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से हमें मैसेज भेज रहे हैं इरशाद हुसैन अंसारी, सैयद शारिक अली, मेराज अंसारी, बाबू अंसारी और इनके परिवार के अन्य सदस्य
1: जी। और आप हैं जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान और राजकुमार बोडाना। और आप हैं सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, रितु और मुकेश जगताप।
0: और ये मैसेज हम तक पहुंचा है, देखिएगा हमें रिपीट मैसेज मिल रहे हैं हमारे श्रोता से। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक बार मैसेज भेजने के बाद दोबारा मैसेज ना करें और हमारे अन्य श्रोताओं को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का आप पूरा मौका दें। शेरवानी स्कूल गंज डिंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी का मैसेज हम तक पहुँचा है।
1: और आप हैं उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी और अनु गोस्वामी।
0: ये मैसेज हम तक पहुंचा है, अब ये भी रिपीट मैसेज है हमारे पास
1: जी।
0: नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आला हाशमी, गुलनाज नाज, सलमानाज, असद अरहाम और मोहम्मद आलम हाशमी का मैसेज हम तक पहुंचा है।
1: और आप हैं
0: उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, गीतिका खोरवाल, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश का भी मैसेज हम तक पहुंचा है
1: जी बिल्कुल।
0: और ये मैसेज हम तक जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी, गुलशन साहिबा ने भी हमें मैसेज लिख भेजा है
1: जी। और आप हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। पुराना तालाब डुमराव से आप हैं वलीउल्लाह अंसारी, अस्मा नाज अंसारी और शबनम वानो। जील रोड बक्सर से आप हैं राज एस डी अंसारी और फातिमा नाज। चमन पार्क दिल्ली से आप हैं डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा। डोंडी लोहारा छत्तीसगढ़ से आप हैं प्रभा रानी चमोरिया।
0: और ये अगला मैसेज जो कि हमें प्राप्त हुआ है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुमित रमेश साहू डुबराव बिहार से, डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी गोला बाजार बक्सर से, श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य। इसके साथ ही सारिमपुर बक्सर से हमें मैसेज लिख भेज रहे हैं राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और इकबाल मस्तान
1: जी। और आप हैं गांव पांडर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे और धनश्री बुरांडे।
0: ये मैसेज धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार ने हमें लिख भेजा है भोपालगढ़ राजस्थान से
1: जी। और ये मैसेज हमें भेजा है जेल रोड नजीबाबाद से राधिका जाटव और प्रभा रानी जटोलिया ने। और शहर दिल्ली से आप हैं मनमोहन चुग, मीठी चुग और टीचुक। डुमराव से आप हैं वली उल्ला अंसारी, राज अंसारी और फातिमा नाज अंसारी।
0: ये मैसेज हम तक पहुंचा है शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कन्नौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रजक, लालू, सोना, मोना, हनी, यश और इनके परिवार के अन्य सदस्य। और इसके साथ ही ये मैसेज हम तक पहुंचा है, लिखने वाले हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां और ये भेजा गया है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से
1: जी बिल्कुल। और आप हैं रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। और आप हैं एम असलफ सैफी, जैबुनिशा बेगम, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी, जाहिद सैफी और आबाद खान। आपने हमें मैसेज भेजा है दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से।
0: गांव व डागर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर ने हमें मैसेज लिख भेजा है और सुनना चाह रहे हैं अपनी पसंद का कार्यक्रम का ये गीत।

अभी आपने सुना सोनू निगम, जसपिंदर नरूला और साथियों की आवाज़ में फिल्म अपने का प्यारा सा गीत, जिसे लिखा समीर ने, संगीत हिमेश रेशमिया ने दिया। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब वक्त है एक ब्रेक का।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं श्रोताओं के पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। और श्रोताओं, इस संदेश को सुन लेने के बाद कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और अब हम ले लेते हैं उन पत्रों को जो बड़ी शिद्दत से, बड़े प्यार से, बड़े इत्मीनान से अपनी फरमाइशों को हमें भेज दिया है उन्होंने पत्रों के माध्यम से।
2: जी बिल्कुल चरणजीत जी, और पत्रों के जैसे आपने कहा है तो हम शामिल कर लेते हैं पत्र।
1: जी बिल्कुल।
2: और ये पत्र हमें भेजा है दीदा रेडियो श्रोता संघ से, बिलराम गेट कासगंज से, एम असलम सैफी, जैबुनिशा बेगम, अक्रम सैफी और आबाद खान ने। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से आप हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिया नेवादा से आप हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय।
1: और यह पत्र हमें लिखा है इंदु नौटियाल, योगेश चंद्र नौटियाल, कनिका नौटियाल, कार्तिक नौटियाल, जस्सू नैथानी, पुनीता गौड़, मीनाक्षी डबराल, सुषमा, पूनम भारद्वाज, रजनी नौटियाल, अन्वेषा नौटियाल, वेदांश नौटियाल ने कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से।
2: जी बिल्कुल। अगला जो पत्र हमें भेजा है ये है जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया ने। और मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से आप हैं विनोदपुरी, वीपीपुरी, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, अनीतापुरी, ममता, मेघा, पूजा, गगन, गुंजन, लालसा, रामा, कुणाल, निधि, हरीश, सतीश, राकेश, विनोद और अरुणपुरी ने।
1: ये पत्र हम तक पहुंचा है नजीबाबाद जनपद बिजनौर से। लिखने वाले हैं अंश टोंक, देव टोंक, राकसाकेत टोंक और राजेंद्र। इसके साथ ही ये पत्र हमें प्राप्त हुआ है जयवीर रावत, प्रशांत नेगी, दिनकर बड़थवाल, प्रवीण नौडियाल, मनोज रावत, हीरा सिंह रावत, आशीष बिस्ट, अजय सिंह।

0: मोनू सिंह, और ये पत्र हमें भेजा गया है कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से।
1: जी बिल्कुल, और ये अगला पत्र हमें भेजा है प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम एमपी से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा ने। और आप हैं भुरसुदा छत्तीसगढ़ से, भगवानी गजेंद्र सेन, चिराग संतोषी सेन, चंद्रप्रकाश, नेहा सेन, और आप हैं प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से ही बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा और प्रियांश वर्मा और इनके बहुत सारे साथी। महाराजा रेडियो श्रोता संघ से आप हैं राजेश कुमार धनजय, राहुल कुमार धनजय, विशाल कुमार धनजय, शीला धनजय, गायत्री धनजय। खुर्दी रोड मानपुर से आप हैं विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद। और आप हैं अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गव्या और भाई सुच्चा पाठक। और ये पत्र हमें भेजा है आदर्श नकल मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा ने। और रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, शमरीन, परवीन, मोहम्मद, रिहान और माहिरा नूर हैं। आपने हमें पत्र भेजा है जसपुर उत्तराखंड से। और आप हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा, सालिया, शोएब खान और इनके बहुत सारे दोस्त।
0: जी हाँ, और सुनीता ये पत्र हमें मिला है रेलगाड़ी श्रोता टोली नजीबाबाद जनपद बिजनौर से, महबूब सैफी, मोहम्मद यूसुफ, विनय कौशिक, रवि अरोड़ा, चंद्रशेखर ठाकुर, मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद फरमान और मोहम्मद उमर का। और इन्होंने सुनना चाहा है अपनी पसंद का कार्यक्रम का ये गीत।

0: हमारे श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम महबूब की मेहंदी, गीत रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। और सुनीता, इस बीच हमारे पास फिर से झड़ी लग चुकी है कुछ मैसेजेस की। हरे रंग के सितारे टिमटिमाने लगे हमारी स्क्रीन पर और इनमें कुछ मैसेज हमें रिपीट भी लग रहे हैं, तो हम अपने श्रोताओं से ये कहना चाहेंगे कि आप कृपया रिपीट मैसेज ना करें, हमारे अन्य श्रोताओं को इस कार्यक्रम से जुड़ने का मौका दें। और हम अपने नए श्रोताओं को इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बता देते हैं अपने इस कार्यक्रम का व्हाट्सएप नंबर, जो कि है 9457078288, यानी 9457078288। और इस बीच किनका मैसेज हम तक है सुनीता?
1: जी बिल्कुल, और ये मैसेज हमें भेजा है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी ने हमें ये मैसेज भेजा है।
0: और ये मैसेज खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा का। इसके साथ ही ये मैसेज शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का का।
1: जी बिल्कुल, और ये मैसेज हमें भेजा है मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहारकर और नर्मदा पोहारकर और कुमारी सुजाता पोहारकर ने।
0: बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया सिद्दीकी, अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी ने मैसेज हमें लिख भेजा है जिला अमरोहा नई बस्ती पैतई खालसा से। और थाना टीन मोहल्ले से मैसेज भेज रहे हैं TW वाले इरफान खान। और ये अगला मैसेज?
1: जी बिल्कुल, ये मैसेज हमें भेजा है लाल माता सुदामा नगर डटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, कान्हा, श्रीमती मनोहर बाई बागरी और प्रभुलाल बागरी ने।
0: और ये मैसेज जो कि हम तक पहुंचा है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोहिनी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह का, ग्राम दूल्हापुर, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से।
1: जी बिल्कुल, और आप हैं गांव जाखोत राजस्थान से शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक।
0: बिहार रेडियो लिसनर्स क्लब, सुधा शर्मा, काजल शर्मा, मीरा शर्मा, सोनाली शर्मा, नामिका शर्मा, शिव मंदिर दालमंडी से राजू बनारसी और राजेश कुमार यादव का मैसेज हम तक पहुंचा है।
1: जी बिल्कुल, और ये हैं आप हैं चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक खुशदिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू खुशदिल और हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति खुशदिल, संजीव बंटी जिंदल और इनका पूरा ही परिवार है जो इन्होंने फरमाइश भेजी हुई है।
0: ये मैसेज बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, राहुल शर्मा, मनीष शर्मा का नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से हमें मैसेज भेजा गया है।
1: जी बिल्कुल, और अगला मैसेज हमें भेजा है सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता, अभिषेक और श्रीवास्तव ने हमें इन्होंने मैसेज भेजा है कवाई बारा राजस्थान से।
0: ये अगला मैसेज जो कि हम तक पहुंचा है सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्य मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी, जयपाल यादव और भेजा गया है अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से।
1: जी, और ये अगला मैसेज जो हमें भेजा है आप हैं पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत ने।
0: बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान, सोफिया खान ने हमें मैसेज लिख भेजा है। और ये मैसेज है रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन, परवीन, माहिरा नूर, जसपुर उत्तराखंड से ये मैसेज हमें भेजा गया है।
1: जी बिल्कुल, और आप हैं पश्चिमी सिंह भूम चाईबासा झारखंड से और भेजने वाले आप श्रोताओं के नाम है शिवा गोप, प्रेम गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप।
0: ये मैसेज हमें प्राप्त हुआ है ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साहब, देखिएगा ये भी रिपीट मैसेज हमें किया गया है। और हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा ने दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हमें मैसेज लिख भेजा है।
1: जी बिल्कुल, और आप हैं तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजाल लल्ला, फरहान लल्ला और समीरा आजमीन गुड़िया,
0: सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर रमनदीप, और इसके साथ ही कालका से एक ये मैसेज है, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज और इनके परिवार के अन्य सदस्यों का, सुनना चाहा है अपनी पसंद का ये गीत।

0: हमारे श्रोताओं की फरमाइश का ये गीत आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह की आवाज़ में। फिल्म का नाम था टशन। गीत रचना पीयूष मिश्रा की थी और संगीत विशाल शेखर ने दिया था।
1: जी बिल्कुल। और अब हम जो है कुछ पत्रों का सिलसिला जो है वो जारी करते हैं। और ये पत्र हमें भेजा है अगले गीत के लिए गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रंजनी, आकाशदीप और पोत्रा, इनके आपने भेजा है ये पत्र हमें गांव कैरो पंजाब से। और आप हैं कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली। आप हैं लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, रिंगनी से दिनेश वर्मा, भिलाई से मुकेश वर्मा, दंतरेगी से भागवत वर्मा, मोहल्ला हलवायन शेरकोट बिजनौर से आप हैं, माफ कीजिएगा, अगला पत्र जो हमें भेजा है आप है मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर से, विमल वर्मा, नीतू वर्मा और प्राची। और आप हैं रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक। डबवाली हरियाणा से आप हैं जेके बकोलिया, श्रीमती सुनीता बकोलिया, संजय, अनिल और मीनू बकोलिया। और आप हैं ग्राम बुढ़ बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका और उत्कर्ष नेताम। और आप हैं भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी भाऊ और गणेश दादा, कार्तिक भाऊ, परी संजना और ललिता नारायण खर्ची।
0: और ये मैसेज हम तक पहुंचा है गंज।

0: उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इवराना नाज, नवाज शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी, राधा नामदेव का ये मैसेज हम तक पहुंचा है दादरी गेट भिवानी से। कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा और इनके परिवार के अन्य सदस्यों का ये मैसेज हम तक पहुंचा है नगीना जनपद बिजनौर से। अनिल विनोचा, शम्मी विनोचा, अक्षय विनोचा, गीत अरोड़ा, सहेज अरोड़ा, कनिका अरोड़ा और इनके परिवार के अन्य सदस्यों का। सत्य देवराणा इस्लाम नगर से पबसरा बदायूं से हमें मैसेज भेज रहे हैं और ये मैसेज मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी ने हमें लिख भेजा है। और ये मैसेज हमें मिला है रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और इनके परिवार के अन्य सदस्यों का, हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से।
1: जी बिल्कुल। और अगला पत्र हमें भेजा है लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिबा कौर और बिहारी कॉलोनी महासमंदर से आप हैं वली उल्ला फकीर, डब्लू उल्ला और परवीन आसमा, बुलंदशहर से आप हैं बदरू वली अंसारी, फर्जू वली अंसारी और फर्जी वली अंसारी, आप हैं मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार, सुनील पोहरकार, साहिल पोहरकार, अंश पोहरकार और कुमारी सुजाता पोहरकार।
0: ये मैसेज हम तक पहुंचा है जसपुर रोड दूल्हापुर जनपद मुरादाबाद से महबूब दुकानदार, साहिबा महबूब, मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी, अलशिफा अंसारी और इनके परिवार के अन्य सदस्यों का।
1: जी बिल्कुल। और ये पत्र हमें भेजा है रहमानिया मोहल्ला महसौल सीतामणी बिहार से तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, रूही नाज, वसीम अकरम, नदीम अकरम, शमीम अकरम और अमन अकरम ने। और ये मैसेज हमें पत्र हमें भेजा है गरीब नवाज कॉलोनी वंदना नगर इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे और ललिता नारायण खर्चे।
0: सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से हमें मैसेज किया है रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान ने और सुनना चाह रहे हैं अपनी पसंद का ये गीत हमारी याद आएगी फिल्म से जिसे आवाजें दी लता मंगेशकर और मुकेश ने। गीत रचना केदार शर्मा की है, संगीत स्नेहल भाटकर का है।

0: इस प्यारे से गीत के साथ हमारे सभी श्रोताओं का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गीत तुम्हारे में बहुत बहुत स्वागत। और श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और सुनीता, देखिएगा वक्त कब और कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला।
1: जी
0: इस
1: बिल्कुल
0: कार्यक्रम से हम भी जुड़े हैं और हमारे साथ हमारे अनेकों श्रोता व्हाट्सएप मैसेज और पत्रों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। अब चलते चलते हम एक गीत अपने श्रोताओं को और सुनवाएंगे, लेकिन जो मैसेज हम तक पहुंच चुके हैं, हम हर चंद कोशिश करेंगे उन मैसेजेस को पढ़ने की। बस एक रिक्वेस्ट फिर करेंगे कि रिपीट मैसेज अब ना करें।
1: जी बिल्कुल। और आप हैं धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू।
0: और ये मैसेज है शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा, आयजानम, मुदस्सिर हुसैन, सब्जी मंडी बुलढाणा से।
1: जी बिल्कुल। आ रहा है मुक्काम पोस्ट काले गांव जाफराबाद से आप हैं श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख और कुमार संचित वयाल। और मोताला से आप हैं कुमार प्रथमेश देशमुख और कुमारी प्रणाली देशमुख। करडा सिरोड से आप हैं कुमार सरबत देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख और कुमारी हर्षिता देशमुख।
0: इसके साथ ही ये मैसेज मिला है लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा का। इसके साथ मैसेज गांव खारिया ढाणी जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र बिजारनिया, राजपाल बिजारनिया, अभिषेक बिजारनिया, योगेश बिजारनिया, पूजा आरजू और नव्या बिजारनिया का भी मैसेज हम तक पहुँचा है।
1: जी। और ये मैसेज हमें भेजा है कवाई बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी श्री हर्षित, अभिषेक और अभिषेक श्रीवास्तव ने।
0: संगीता टाकेज शाहगंज आगरा से मैसेज भेजने वाले हैं महफूज उर्फ पटेल अंसारी, फिरदौस काकू, अब्दुल अंसारी, हुमैरा अंसारी, हिफ्जा अंसारी, जिक्रा अंसारी, हबीबा अंसारी, हलीमा अंसारी, हसन चिंटू और इनके परिवार के अन्य सदस्य। ये मैसेज हम तक पहुंचा है।
1: जी बिल्कुल। कुमार हीड़ा सहारनपुर से आप हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया आफिया और इब्राहिम सद्दाम ने भेजा है।
0: इसके अलावा ये मैसेज पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब ने हमें भेजा है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से। बबलेश पंवार, डैनी पंवार, मनीष पंवार, रामदेवरा से भेजने वाले हैं दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल और खलीफों की बावड़ी से खुदाबख्श खलीफा ने मैसेज हमें लिख भेजा है।
1: जी बिल्कुल। और ये आप हैं विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन और आदिश कुमार काले।
0: और
1: आप हैं नागपुर महाराष्ट्र से कमल सहानी, मिसेस पिंकी सहानी, डॉक्टर अफजल मलिक और संदीप मक्कत।
0: इसके साथ ही ये मैसेज हमें मिला है बेबी शालिया खत्री, बेबी अलीमा खत्री, बेबी जिक्रा खत्री, बापू कॉलोनी, अब्दुल्ला मस्जिद, खंडवा मध्य प्रदेश से, परदेसीपुरा खंडवा से शेख सईद राही और अनस ने भी मैसेज हमें लिख भेजा है।
1: जी
0: सबा
1: बिल्कुल।
0: अंसारी, शकील अंसारी, ना अंसारी, बुशरा अंसारी, गुलिस्ता रानी, नंदिनी, अंजलि ने कृष्ण की नगरी मथुरा से हमें मैसेज लिख भेजा है। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आदेश आशीष विश्वकर्मा ने बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हमें मैसेज लिख भेजा है। और
1: तेलंगाना निजामाबाद से आप हैं शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना और दानिश आसिफ शेख ने।
0: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़ से और विनोद विनोद खड़ से का मैसेज, गौरैया जालंधर से अशोक जाटव, छत्तीसगढ़ से प्रभात जयपुरिया और बिहार स्टेट डुमराव से राधिका रानी ने मैसेज लिख भेजा है। मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से बेनी सिंह।

0: अगर पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, ओमवती भारती, खनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश, पृथ्व सिंह का मैसेज हम तक पहुंचा है।
1: जी बिल्कुल। और आप हैं रेडियो के दीवाने ग्रुप दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी और रिहान अंसारी। लोनी से आप हैं नसीमुल इस्लाम, गुनरी प्रकाश से प्रकाशवीर राजपूत और अनुप्रिया चंद्रवंशी। खंडवा से आप हैं राकेश, पिंकी और दुर्गा। और
0: जालंधर से हमें एक मैसेज कर रहे हैं मीना कौर और संदीप कौर। तो श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: अपने व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आपका पत्र मिला कार्यक्रम में हमें अवगत करा सकते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: आपसे कल पुनः भेंट होगी कुछ और प्यारे प्यारे से गीतों और आपकी फरमाइशों के साथ। तब तक आप आकाशवाणी नजीबाबाद के कार्यक्रमों को सुनते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और याद रखिए, गलत रास्ते पर तेजी से दौड़ने से बेहतर है सही रास्ते पर धीरे धीरे चलना। नमस्कार।

श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम गीत तुम्हारे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 11 बजे हैं। लीजिए पेश है चित्रपट संगीत।

ये गीत हमने लिया था फिल्म वारिस से। आवाजें थी लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की। गीत की बोली की थे वर्मा मलिक ने और संगीत दिया था उत्तम जगदीश ने। कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में फिल्म जहरीला इंसान से। गीत की बोली के हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल आवाजों में फिल्म मन मंदिर से। गीत के बोल लिखे हैं राजेंद्र किशन ने और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संकेत श्रोता इस समय आकाशवाणी नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं। लीजिए अब पेश है मोहम्मद रफी और आशा भोसले के युगल आवाजों में हम किसी से कम नहीं फिल्म का ये गीत। गीत की बोली के है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

श्रोताओं, आज के चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में आपने जिन फिल्मों के गीत सुने उनके नाम हैं वारिस, जहरीला इंसान, मन मंदिर, हम किसी से कम नहीं और हम सब चोर हैं। आवाजें थी लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, कुमार सानू और अलका याग्निक। गीतकार थे वर्मा मलिक, मजरू सुल्तानपुरी, राजेंद्र किशन, नवाब आरजू। संगीत दिया था उत्तम जगदीश, आर डी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और बब्बी लहड़ी ने। श्रोताओं, इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। इस समय प्रातः के 11:30 हो रहे हैं। लीजिए पेश है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं NCERT।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर, रतनमाला सुरेलकर जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: पेड़ जितना फलदार होता है उतना ही विनम्र होकर झुक जाता है, और सफलता भाग्य से नहीं बल्कि सही सोच, निरंतर मेहनत और धैर्य से ही मिलती है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। आप हमारे चिर परिचित श्रोता हैं, लिखते हैं, विमलेश जी और अजीत जी आपको प्यार भरा नमस्कार। हमें दिनांक 21/7/2026 और 22/7/2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया। आगे आपने लिखा है,
2: जिसमें आपने ये भी जानिए के तहत भारत के अनूठे मेलों की जानकारी दी। इसमें आपने असम और नागालैंड के मेलों की जो दुर्लभ जानकारी दी वो हमें बेहद पसंद आई
0: जी।
2: दिनांक 22 जुलाई 2026 के ही प्रसारण में आपने सुंदरिया की कहानी सुनाई, वो भी हमें बेहद पसंद आई। ऐसा लगा मानो पूरा दृश्य आंखों के सामने दिख रहा हो, बहुत अच्छी कहानी थी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक शिकायत भी है हमारा संदेश प्रोग्राम में शामिल नहीं किए जाने की, कोई नाराजगी है तो माफ करें।
0: तो राजेश जी आपको कहना चाहते हैं कोई नाराजगी नहीं है, देखिए हमने आपका संदेश आज के प्रसारण में सबसे पहले शामिल कर लिया
2: जी। हाँ। कुलगांव जम्मू कश्मीर से मोहम्मद असलम मीर
0: और राजा जी नगर बेंगलोर से हमारे चिर परिचित श्रोता एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी ने लिखा है,
2: अजीत जी विमलेश जी, मिट्टी की पुस्तकों से भोजपत्र से लेकर तालपत्र और ई पुस्तकों तक, पुस्तकों पर आधारित ये विषय सुनना वाकई शानदार था। वास्तव में आपकी चर्चाएं इतनी उत्कृष्ट थीं कि हमें ऐसा लगा मानो हम उन्हें ई पुस्तकों से ही पढ़ रहे हों
0: जी।
2: आपके वर्णन करने का तरीका और उन्हें सरल भाषा में समझाना बहुत ही बढ़िया था।
0: बहुत बहुत धन्यवाद एन आर प्रसाद जी और अखिला जी, आपको हम अपना आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे जी का, और साथ में वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी का।
2: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा,
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो श्रोताओ, हमारा पहला प्रश्न था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया?
2: ये नारा दिया

0: था प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने।
1: हमारा दूसरा प्रश्न था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI का आविष्कार किसने किया था?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। AI के आविष्कार का श्रेय जाता है अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी को।
1: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, मेघालय के मावली नोंग गाँव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है, क्यों?
0: इसका उत्तर है, मावलीनोंग गांव के पास जो पुल है वो जीवित पेड़ों की जड़ों से बनाया गया है, इसलिए इसे लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है।
1: तो श्रोताओं, प्रश्नोत्तरी में आप सबकी प्रतिभागिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है?
1: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए विकल्पों और निर्देशों का पालन कीजिए और मनचाही पाठ्य पुस्तक को डाउनलोड कीजिए।
1: जी हाँ, और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ऑडियो बुक्स यानी ध्वनि पुस्तकों के रूप में सुनना चाहते हैं तो टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम भी आप इस चैनल पर सुन सकते हैं।
0: तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम,
1: वीर कुंवर सिंह।
0: ये कार्यक्रम महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी देशभक्त राजा वीर कुंवर सिंह के जीवन और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी वीरता की गाथा प्रस्तुत करता है। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने बिहार के शाहाबाद में गंगा नदी के तट पर अंग्रेजों से लोहा लिया।
2: हमका सिपाहियों के साथ मिलकर लड़क चाहिए, महाजनन के बही खातों को जला डालो।
3: '1857 भारतीय इतिहास का वो समय है जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण और दमन के खिलाफ हिंदुस्तान के राजाओं, जमींदारों, किसानों, काश्तकारों और जनता ने विद्रोह कर दिया था। बैरकपुर में 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे लड़ते लड़ते फांसी पर चढ़ गए थे। ये देखकर अंग्रेजों के खिलाफ पूरा देश धधक रहा था और विद्रोह की लहर फैल गई थी। भारत माता के कई सपूत आगे आए, जैसे जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ने के लिए जान की बाजी लगा दी। मेरठ में 10 मई को विद्रोह का बिगुल बजा और 3 जुलाई को पटना में हुई पीर अली की फांसी की सजा ने आग में घी डालने का काम किया। जगदीशपुर, दानापुर और आरा पर पीर अली की फांसी का गहरा असर पड़ा। जनता बगावत करने लगी। कहा जाता है कुंवर सिंह और जगदीशपुर के लोगों ने पीर अली की याद में एक मजार बनवाई जिससे अंग्रेज और खफा हो गए। पटना के कमिश्नर ने कुंवर सिंह को मना किया, पर कुंवर सिंह कहां रुकने वाले थे।
4: अगर तुम लोगों ने फौज को इकट्ठा किया तो हम तुम्हारा काम तमाम कर देगा, अंडरस्टैंड?
3: उनकी रगों में तो देशभक्ति का जज्बा उफान ले रहा था।
5: मस्ती की थी छिड़ी रागनी, आजादी का गाना था, भारत के कोने कोने में होता यही तराना था। उधर खड़ी थी लक्ष्मीबाई और पेशवा नाना था, इधर बिहारी वीर बांकुड़ा खड़ा हुआ मस्ताना था। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। '1777 में कुंवर सिंह का जन्म साहबजादा सिंह के घर हुआ। लाड़ प्यार से पालन पोषण हुआ। पिता के निधन के बाद कुंवर सिंह ने सन 1826 में जगदीशपुर की जमींदारी की बागडोर संभाली। कुंवर सिंह के बारे में कहा जाता है कि वे एक बड़े नेक दिल इंसान थे। जो किसान समय पर

0: संतान नहीं दे पाते थे या मुसीबत में पड़ जाते थे, वे उनकी दिल खोलकर मदद करते थे। इसी कारण कई बार वे लगान की पूरी राशि जमा नहीं करा पाते थे। उनके ऊपर धीरे धीरे कंपनी की बकाया राशि का कर्ज बढ़ता गया। अंग्रेज उनसे खफा थे, पर आम जनता बहुत खुश थी।
1: सुना तुमने?
2: क्या?
1: पूरे देश में लोगों ने कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया है।
2: हैं?
1: अब हमारे कुंवर सिंह क्या करेंगे?
2: मेरा तो मन कहता है कि कुंवर सिंह लड़ेंगे, वो समझौता करने वालों में से नहीं है।
1: ठीक कहते हो भाई। अभी देखा नहीं, जब पीर अली की मजार पर गए थे तब उनका मन कितना भारी हो गया था। अमर सिंह तो एकदम गुस्से में थे।
2: हाँ, मुझे भी लगता है कुंवर सिंह जरूर लड़ेंगे, कोई साथ दे या ना दे।
3: कुंवर सिंह चार भाई थे, वो सबसे बड़े थे। दूसरे भाई का नाम दयाल सिंह और तीसरे का नाम राजपति सिंह। अमर सिंह उनके सबसे छोटे भाई थे, वे हमेशा उनके साथ रहते थे। जब दानापुर की 40वीं देशी पलटन के सिपाहियों ने विद्रोह किया तो जगदीशपुर के लोग एकजुट हो गए। दानापुर के विद्रोही सिपाही नेता हरकिशन सिंह की चारों ओर चर्चा होने लगी।
1: बड़ बहादुर वाह हरकिशन वाह। अरे कैसे दानापुर में अंग्रेजन के छक्का छुड़ा दे। अरे का हो अब हमार कुंवर सिंह का करें?
4: अरे सुने में आयल बा कुंवर सिंह के सब खबर हो गई बा, कभो कुछ हो सके ना। हाँ
5: चाहिए कि जिसके बारे में
1: हुजूर, अभी अभी खबर मिली है कि दानापुर की देशी पलटन ने विद्रोह कर दिया है। अंग्रेजों से सिपाही लड़ते हुए आरा की ओर बढ़ रहे हैं, हमें क्या आदेश है?
6: क्या कहते हो अमर सिंह? ये बड़ी मुश्किल की घड़ी है, सिपाहियों का मनोबल बढ़ाना जरूरी है। हमारे जाबाज अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपकी क्या राय है?
7: भैया सभी अंग्रेजों से मुक्ति चाहते हैं और समय आ गया है अंग्रेजों से दो दो हाथ हो जाएं। काफी समय से कैप्टन डनवर हमारे किसानों पर अत्याचार कर रहा है, अंग्रेज सैनिक हमारी खड़ी फसलों को रौंद देते हैं।
6: ठीक कहते हो अमर सिंह। रहीम खान
1: जी हुजूर,
6: सिपाहियों को संदेश भेजो कि हमसे आरा कोठी में मिलें।
1: जी हुजूर।
6: तो ठीक है, आरा चलने की तैयारी करो।
0: छब्बीस जुलाई 1857, आरा में कुंवर सिंह की कोठी। चारों ओर सैनिकों की चहलकदमी। दानापुर से आए सैनिकों के सामने कुंवर सिंह खड़े हैं।
6: सैनिक भाइयों और बहादुर साथियों, अब समय आ गया है कि हम कंपनी की गुलामी की जंजीरें काटकर फेंक दें। आप सबने विद्रोह करके हिम्मत और साहस का परिचय दिया है। हरकिशन सिंह और रंजीत राम दोनों बहादुर सिपाही हैं। इनका युद्ध करने का कौशल और क्षमता सबसे उत्तम है। ये दोनों सैनिकों का नेतृत्व करेंगे। आगे बढ़िए, सबसे पहले हमें अंग्रेजों को आरा से बाहर निकालना है, फिर पूरे देश से। मैंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और बेगम हजरत महल को खबर भिजवाई है। शीघ्र ही हम सारे देश में एकजुट होकर लड़ेंगे।
5: कुंवर सिंह जिंदाबाद, अमर सिंह जिंदाबाद, हरकिशन सिंह जिंदाबाद, कुंवर सिंह जिंदाबाद, रंजीत राम जिंदाबाद।
0: सैनिकों के नारों से आरा कोठी का प्रांगण गुंजायमान हो उठा। सैनिकों की चहल पहल बढ़ गई। तभी सैनिकों की तरफ से हरकिशन सिंह आगे बढ़े और कुंवर सिंह की बगल में आ खड़े हुए। अदब से उन्हें सलामी देते हुए वो सैनिकों की तरफ मुखातिब हुए।
8: साथियों, आप सबने दानापुर में अंग्रेजी फौजों और अफसरों के द्वारा किया गया शोषण और दमन देखा है। उनके यहाँ रहते हुए हम स्वाधीन नहीं है। हमारे किसान भाई

0: कहा जाता है कि कुंवर सिंह और हरकिशन सिंह के भाषण का सिपाहियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। 27 जुलाई को कुंवर सिंह के नेतृत्व में देशी सिपाहियों ने अंग्रेजी फौजों की आरा में घेराबंदी की। लड़ाई जमकर हुई। कई अंग्रेज सैनिक लड़ाई में मारे गए। कुंवर सिंह ने कैप्टन डनवर की फौज को पराजित किया। इतिहास में इसे कुंवर सिंह द्वारा आरा फतेह के नाम से जाना जाता है।
1: अंग्रेजी फौजों ने दोबारा तैयारी की और कुछ ही दिनों बाद मेजर आयर के कमांड में बीबीगंज के स्थान पर एक और युद्ध हुआ। कुंवर सिंह को अपने सिपाहियों के साथ जगदीशपुर लौटना पड़ा। 12 अगस्त को एक घमासान युद्ध हुआ। कुंवर सिंह की सेना पराजित हुई। चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। कुंवर सिंह और उनके सिपाहियों को जगदीशपुर छोड़ना पड़ा। फिर फौज संगठित की। देश को आजाद कराने के लिए नौजवान स्वयं फौज में आगे आए। लोगों का जोश देखकर मिर्जापुर, रीवा, बांदा और कानपुर आदि स्थानों पर अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए कुंवर सिंह की सेना लखनऊ पहुंची। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कुंवर सिंह और उनके सहयोगियों का जोरदार स्वागत किया।
2: अल्लाह की मेहरबानी से आज हमारे बीच शाहबाद के बाबू कुंवर सिंह मौजूद हैं। इन्होंने अंग्रेजी फौज को कई जगह बड़ी शिकस्त दी है। अंग्रेज हुक्मरान इनसे घबराते हैं। हमने कुछ फैसले लिए हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करें। खुदा जानता है कि आजमगढ़ से अंग्रेजों को हटाना कितना मुश्किल काम था। हम आजमगढ़ की मिल्कियत बाबू कुंवर सिंह के सुपुर्द करते हैं। हम चाहते हैं कि बाबू कुंवर सिंह आजमगढ़ के बाकी इलाकों से अंग्रेजों को निकालकर बाहर करें।
3: बेगम साहिबा, आपके इस सम्मान से हम आपके एहसानमंद हैं। आपने एक नई जमीन दी है। अल्लाह को मंजूर होगा तो हम आजमगढ़ से भी

ये एक ऐतिहासिक क्षण था। जगदीशपुर पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। कुंवर सिंह को एक नई रियासत का मालिकाना हक देकर बेगम हजरत महल ने उन्हें राज सम्मान प्रदान किया था। कहते हैं कि वहीं से लोग कुंवर सिंह को राजा कुंवर सिंह के नाम से संबोधित करने लगे। कुंवर सिंह ने बेगम हजरत महल के विश्वास को नहीं तोड़ा। 17 मार्च को कुंवर सिंह और देशी सिपाहियों की टुकड़ियां अतरौलिया के मैदान में इकट्ठा हुई। 22 मार्च को आजमगढ़ जिले में तैनात कर्नल मिलमैन ने कुंवर सिंह के सिपाहियों पर भारी हमला किया।

0: अतरौलिया का मैदान सिपाहियों के खून से लथपथ हो गया। छब्बीस मार्च को मिलमैन को पराजित करते हुए कुंवर सिंह ने आजमगढ़ और अन्य इलाकों पर कब्जा कर लिया।
1: आजमगढ़ पर विजय के बाद कुंवर सिंह जगदीशपुर लौटने लगे। रास्ते में ब्रिगेडियर डगलस की सेना के साथ घमासान युद्ध हुआ। ब्रिगेडियर डगलस की हार हुई। अंग्रेजी सेना फौजी सामान छोड़कर भाग गई। दूसरी ओर जनता ने राजा कुंवर सिंह का स्वागत किया।
2: देखो देखो, अरे घोड़े पर सवार होकर हमारे राजा कुंवर सिंह कैसे जा रहे हैं।
1: कुंवर सिंह गाजीपुर पहुंचे पर डगलस ने उनका पीछा जारी रखा। कहा जाता है शिवपुर घाट से गंगा नदी पार करते हुए राजा कुंवर सिंह की दाहिनी बांह में गोली लगी, जिसे बाएं हाथ की तलवार से काट कर उन्होंने गंगा में बहा दिया।

0: गंगे, आज तुझको ही देता हूँ ये।
1: दुश्मन तट पर पहुंच गए जब कुंवर सिंह करते थे पार, गोली आकर लगी बाह में, दायां हाथ हुआ बेकार। हुई अपावन बाहुजान, बस काट दिया लेकर तलवार। ले गंगे ये हाथ आज तुझको ही देता हूं उपहार। वीर भक्त का वही जानवी को मानो नजराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था।
2: कहते हैं कुंवर सिंह को अपना हाथ काटते देख ब्रिगेडियर डगलस अवाक रह गया।
3: ओह माय गॉड, देखाओ शाहबाद खबर करो कि कुंवर सिंह नदी पार कर गया है।
0: यस सर।
2: घायल अवस्था में कुंवर सिंह जगदीशपुर पहुंचे। कंपनी ने 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में तोपों से लैस एक बड़ी फौज जगदीशपुर भेजी। ये 1857 के संग्राम का चरम सीमा का समय था।

जब पहली बार देशी फौज ने कुंवर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों की एक बड़ी संगठित फौज को पराजित किया था। कहते हैं जगदीशपुर के लोगों ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को हरा दिया, लेकिन लंबी लड़ाई में कुंवर सिंह घायल हो गए। उनका स्वास्थ्य गिरता चला गया। इस युद्ध में वे और भी घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनका निधन हो गया। पूरा शाहबाद शोक में डूब गया। इस तरह 1857 के अमर सेनानी वीर कुंवर सिंह की स्मृतियां दर्ज हैं। वहां के लोकगीतों के वे नायक हैं। ऐसे नायक बार बार जन्म नहीं लेते।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम वीर कुंवर सिंह, और आइए अब सुनते हैं ओज और वीर रस से परिपूर्ण सुंदर कविता वीर तुम बढ़े चलो।
1: हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि द्वारका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित ये कविता बच्चों और युवाओं को साहस, संकल्प और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां और प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों न हों।
0: जी,

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वीर तुम बढ़े चलो। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

954 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय दिन के 12 बजने के हैं। लीजिए पेश है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

शास्त्रीय संगीत में दिन में 12:05 पर प्रमोद प्रसन्ना का बांसुरी पर बजाया राग शुद्ध सारंग सुनवाया जाएगा। आपके साथ तबले पर संगत करेंगे साबिर हुसैन खान। फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी का समय रहेगा दिन में 12:30 पर। परिवार जगत कार्यक्रम में दिन में 1:15 पर सुनिएगा चर्चा व्यक्ति के निर्माण करती शिक्षा। इसके अलावा जानकारी दी जाएगी बरसात का मौसम और हमारा स्वास्थ्य। इसके अलावा छात्रों पर पेपर लीक का प्रभाव विषय पर डॉक्टर रामकिशोर से ज्योति पाल की बातचीत पेश की जाएगी। लोक संगीत की कार्यक्रम लोकधारा में दिन में 1:45 पर रेशमा के गए जौनसारी लोकगीत पेश किए जाएंगे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से का समय रहेगा दिन में 2:30 पर।

मेरा सपना उन्नत भारत में शाम 5 बजे अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रमों के अंतर्गत जानकारी दी जाएगी। सांप्रदायिक सौहार्द के लिए संशोधित दिशा निर्देश और अल्पसंख्यकों की नियुक्ति के विशेष उपचार हेतु संशोधित दिशा निर्देश। युवाणी कार्यक्रम में आज शाम 5:15 पर आज के क्रम रहेंगे, बूझो तो जाने कुछ खास है आज, गपशप अड्डा, क्रैश कोर्स पैसा वसूल, कहानी के उस पार, पोस्टर और साथ ही सुनिएगा फिल्म संगीत। फल तोड़ाई उपरांत फलदार बागों का प्रबंधन, इस विषय पर प्राध्यापक उद्यान विज्ञान विभाग RSM महाविद्यालय के प्रोफेसर एस पाल से हिमांशु रंजन की बातचीत सुनिएगा कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:05 पर। इसके अलावा जानकारी दी जाएगी मछली पालन तालाब की सुरक्षा और सोलर ट्रैप द्वारा कीट नियंत्रण। विविधा कार्यक्रम में शाम 6:45 पर राहुल नील से शोभित शर्मा की बातचीत का विषय रहेगा जनपद बिजनौर का इतिहास लेखन। छाया गीत आप सुनेंगे शाम 6:55 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:32 पर मोहन कुमार गुप्ता के गाए कुछ भजन पेश किए जाएंगे। संसद समीक्षा रात्रि 8:00, पब्लिक स्पीक रात्रि 9:30 पर और संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग रात्रि 10:00। ये तीनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। गीत संध्या कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 8:15 पर। एक ही फिल्म से कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे रात्रि 8:30 पर। श्रोताओं, ये तो थी कुछ कार्यक्रम संबंधी जानकारियां।

हम आकाशवाणी की नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय दिन के 12:05 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत में लीजिए पेश है प्रमोद प्रसन्ना का बांसुरी पर बजाया राग शुद्ध सारंग। विलंबित गत एक ताल और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है और आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं साबिर हुसैन खान।

शास्त्रीय संगीत में श्रोता भी सुन रहे थे प्रमोद प्रसन्ना का बांसुरी पर बजाया राग शुद्ध सारंग, विलंबित गत एक ताल और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे साबिर हुसैन खान। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। हम अपने श्रोताओं को पुनः बता दें, संसद समीक्षा रात्रि 8 बजे, पब्लिक स्पीक रात्रि 9:30 पर और संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग रात्रि 10 बजे। ये तीनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। फल तुड़ाई उपरांत फलदार बागों का प्रबंधन, इस विषय पर प्राध्यापक उद्यान विज्ञान विभाग आरएसएम महाविद्यालय धामपुर के प्रोफेसर एस पाल से हिमांशु रंजन की बातचीत सुनिएगा कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:05 पर। इसके अलावा जानकारी दी जाएगी मछली पालन तालाब की सुरक्षा और सोलर ट्रैप द्वारा कीट नियंत्रण। मेरा सपना उन्नत भारत में शाम 5 बजे अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत जानकारी दी जाएगी। सांप्रदायिक सौहार्द के लिए संशोधित दिशा निर्देश और अल्पसंख्यकों की नियुक्ति के विशेष उपचार हेतु संशोधित दिशा निर्देश। विविधा कार्यक्रम में शाम 6:45 पर राहुल नील से शोभी शर्मा की बातचीत का विषय रहेगा जनपद बिजनौर का इतिहास लेखन। युवाणी कार्यक्रम में आज शाम 5:15 पर आज के क्रम रहेंगे बूझो तो जाने कुछ खास है आज, गपशप अड्डा, क्रैश कोर्स पैसा वसूल, कहानी के उस पार और बूस्टर और साथ ही सुनिएगा फिल्म संगीत। श्रोताओं, ये तो थी कुछ कार्यक्रम संबंधी जानकारियां। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

मिडडे मेलोडी कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की युगल आवाजों में फिल्म मिलन से। गीत की बोली के आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में फिल्म महल से। गीत की बोली लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: लीजिए श्रोताओं, पेश है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की युगल आवाज़ों में अनजाना फिल्म का ये गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी श्रोता इस समय आकाशवाणी नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं। लीजिए अब पेश है आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाज किशोर कुमार की, और फिल्म का नाम है कटी पतंग।

श्रोता, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी की नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। इस समय दिन के 1 बजे

0: के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति, योग्यता में एक रूपता तथा प्रशासन और कामकाज में कुशलता बढ़ाने, स्वतंत्रता, पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे, लेकिन सदन में लगातार नारेबाजी के कारण कार्यवाही पहले 12 बजे फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर मार्च किया। सरकार का दावा है कि विद्यार्थियों की 98% मांगे स्वीकार कर ली गई हैं। मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुरानी विधानसभा के पास पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी और नई विधानसभा की ओर बढ़ते रहे। रांची में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को एम्बुलेंस से विधानसभा लाया गया, जहां उन्होंने स्ट्रेचर पर समर्थकों के साथ मार्च में हिस्सा लिया। 6 विद्यार्थी अब भी अनिश्चितकालीन अनशन है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं। इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। 42,000 से अधिक स्टार्टअप भी पोर्टल पर पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने डिजिटल खरीद के माध्यम से जवाबदेही मजबूत की है। भारत में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 300 गीगावाट से अधिक हो गई है। 31 जुलाई तक हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष के समारोहों का प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस पर कहा कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आलेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी में वन्य जीव संरक्षण की सरकार की प्रतिबद्धता विशिष्ट प्रजातियों को पीढ़ियों तक संरक्षित रखने का प्रेरक उदाहरण है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस आलेख में कहा है कि वर्ष 2015 में 523 शेरों की संख्या बढ़कर वर्ष 2025 में 891 हो गई है। इटली के बोलोनिया में कश्मीरी मूल के हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की। उन्होंने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ नारे लगाए और नागरिक संगठन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 112 अंक बढ़कर 78,611 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Both houses of parliament have been adjourned till 2 p.m. When the lower house reassembled after the first adjournment at 12 noon, Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal introduced the Tribunals Reforms Bill 2000.

0: इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी की नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम परिवार जगत।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम परिवार जगत और मैं हूं आपकी रेडियो सखी दीप्ति माहेश्वरी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हमारी जीवन की दिशा ही नहीं बल्कि हमारे व्यक्तित्व को भी आकार देता है। विषय है व्यक्तित्व का निर्माण करती हुई शिक्षा, अर्थात शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करे। श्रोताओं, आपने अक्सर सुना होगा शिक्षा मनुष्य के जीवन का आधार है, लेकिन क्या शिक्षा का अर्थ केवल किताबें पढ़ना, परीक्षाएं देना और अच्छे अंक प्राप्त करना है? बिल्कुल नहीं। वास्तविक शिक्षा वो है जो हमें एक बेहतर इंसान बनाए, हमारे विचारों को व्यापक बनाए और हमारे व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाए। एक बच्चा जब विद्यालय में प्रवेश करता है तो वो केवल अक्षर और संख्याएं सीखने नहीं जाता, बल्कि वो इसके साथ बहुत कुछ सीखता है। वो सीखता है कि दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है, अनुशासन क्या है, समय का महत्व क्या है और अपने कर्तव्य को कैसे निभाना है। यही छोटी छोटी सीख आगे चलकर उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। दोस्तों, शिक्षा हमारे विचारों को दिशा देती है। एक शिक्षित व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में भावनाओं से नहीं बल्कि समझ और विवेक से देखने का प्रयास करता है तथा किसी भी परिस्थिति का सामना बड़ी आसानी से कर लेता है। शिक्षा हमें सही और गलत में अंतर करना सिखाती है। ये हमारे अंदर तर्क करने, सत्य को खोजने की क्षमता विकसित करती है। सच्ची शिक्षा वही है जो हमारे व्यक्तित्व को निखारे और जीवन को सही दिशा दे। शिक्षा हमारे जीवन को, हमारे व्यक्तित्व को किस प्रकार निखारती है, इस विषय पर अभी और भी चर्चा करेंगे, परंतु पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।

0: चंदन का एहसास।
1: ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम परिवार जगत में। दोस्तों, शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व का आईना है। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि ज्ञान की रोशनी से हर अंधेरा छट जाता है। ज्ञान की रोशनी से हर अंधेरा छट जाता है। जो पाता है शिक्षा का साथ, उसका व्यक्तित्व निखर जाता है। जो पाता है शिक्षा का साथ, उसका व्यक्तित्व निखर जाता है। लेकिन श्रोताओं, व्यक्तित्व केवल ज्ञान से नहीं बनता, इसके लिए संस्कार और मानवीय मूल्य भी आवश्यक हैं। यदि शिक्षा हमें दूसरों का सम्मान करना, जरूरतमंद की सहायता करना, ईमानदार रहना और अपने समाज के प्रति जिम्मेदार बनाना नहीं सिखाती, तो वो शिक्षा अधूरी है। महात्मा गांधी ने शिक्षा को केवल बौद्धिक विकास तक सीमित नहीं माना था। उनके विचार में शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा का संतुलित विकास था। वास्तव में यही संतुलन एक मजबूत व्यक्तित्व की पहचान है। आज के समय में शिक्षा का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। तकनीक ने सीखने के नए रास्ते खोल दिए हैं। मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों के जरिए हम दुनिया के किसी भी कोने से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक महत्वपूर्ण सवाल है कि हम ज्ञान का उपयोग किस उद्देश्य से करते हैं। यही हमारी शिक्षा और व्यक्तित्व की वास्तविक परीक्षा है। शिक्षा हमें आत्मविश्वास भी देती है। एक अच्छी शिक्षा व्यक्ति को केवल नौकरी पाने योग्य नहीं बनाती, बल्कि उसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने योग्य भी बनाती है। याद रखिए श्रोताओं, व्यक्तित्व का निर्माण केवल विद्यालय या महाविद्यालयों में नहीं होता। परिवार, समाज, मित्र, शिक्षक और हमारे अनुभव सभी हमारे व्यक्तित्व के शिक्षक हैं। इसलिए हमें हर परिस्थिति से कुछ अच्छा सीखने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। तो आइए आज हम संकल्प लें कि शिक्षा को केवल डिग्री या नौकरी पाने का साधन नहीं समझेंगे। हम एक ऐसी शिक्षा को महत्व देंगे जो हमारे भीतर ज्ञान के साथ विनम्रता, आत्मविश्वास के साथ जिम्मेदारी और सफलता के साथ संवेदनशीलता पैदा करे। क्योंकि अंततः किसी व्यक्ति की पहचान केवल इस बात से नहीं होती कि उसने कितनी पढ़ाई की है, बल्कि इस बात से होती है कि उसकी शिक्षा ने उसे कैसा इंसान बनाया है। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि चरित्र, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों का निर्माण करना है। लेकिन आज के समय में सफलता पाने की होड़ इतनी तेज हो गई है कि कई बार लोग भूल जाते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए अपनाया गया मार्ग सही है या नहीं। बस किसी भी तरह आगे निकल जाने की प्रवृत्ति समाज में बढ़ती दिखाई दे रही है। यही कारण है कि पेपर लीक जैसी घटनाएं लगातार हमारे सामने आ रही हैं। इन घटनाओं का सबसे गहरा प्रभाव उन विद्यार्थियों के सपनों, मेहनत और विश्वास पर पड़ता है जिन्होंने दिन रात पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ तैयारी की होती है। प्रभावित केवल छात्र ही नहीं होते, बल्कि समाज का शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। निसंदेह ये एक गंभीर, संवेदनशील और चिंताजनक विषय है, जिस पर खुलकर विचार होना अत्यंत आवश्यक है। इसी महत्वपूर्ण विषय है छात्रों पर पेपर लीक का प्रभाव एक भेंटवार्ता सुनवाने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत डॉक्टर राम किशोर सिंह से बातचीत कर रही हैं ज्योति पाल।
2: नमस्कार श्रोताओं, वर्षों की मेहनत, अनगिनत रातों की पढ़ाई, परिवार की उम्मीदें और एक सुनहरे भविष्य का सपना। कहते हैं मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन जरा सोचिए, जब कोई विद्यार्थी महीनों नहीं बल्कि वर्षों दिन रात एक करके परीक्षा की तैयारी करे और परीक्षा से ठीक पहले उसे पता चले कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है, तो उसके मन पर क्या बीतती होगी। ये सिर्फ एक पेपर लीक नहीं होता, बल्कि लाखों सपनों, उम्मीदों और विश्वास पर लगा हुआ एक गहरा आघात होता है। आज इस शिक्षा के विशेष कार्यक्रम में हम इस गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। आखिर कब मिलेगा मेहनत को सम्मान? छात्रों पर पेपर लीक के प्रभाव जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर रामकिशोर सिंह जी को, जो कि NIIT कॉलेज में BA डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि छात्र वर्षों तक मेहनत करते हैं, पेपर लीक होता है तो उनकी मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव डालता है?
0: देखिए मैम, ये केवल परीक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, बल्कि

0: मेरा मानना है कि शिक्षा केवल अंक प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, नैतिक मूल्यों और योग्य नागरिक तैयार करने की प्रक्रिया है। आज आवश्यकता केवल दोषियों को दंडित करने की नहीं है, बल्कि ऐसी पारदर्शी, सुरक्षित और तकनीक सक्षम परीक्षा प्रणाली, इसी विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करें।
1: जी, जो ईमानदार छात्र होते हैं, वर्षों से मेहनत कर रहे होते हैं और पेपर लीक हो जाता है, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ता है?
0: देखिए मैम, सबसे अधिक नुकसान उन विद्यार्थियों को होता है जिसने पूरी ईमानदारी और परिश्रम से तैयारी की होती है।
1: बिल्कुल,
0: उनका समय, मानसिक संतुलन और भविष्य की योजनाएं प्रभावित होती हैं। यदि परीक्षा द्वारा होती है तो उसे फिर से उसी मानसिक दबाव से गुजरना पड़ता है। इसलिए पेपर लीक का सबसे बड़ा नुकसान मेहनती और ईमानदार विद्यार्थियों को होता है।
1: जी,
0: इसी के साथ मेरे अनुभव से विद्यार्थियों की पहली प्रक्रिया तीन प्रकार की होती है। पहली होती है आशाएं, दूसरी होती है निराशा और तीसरी होती है अनिश्चितता। यही कारण है कि ऐसी परिस्थितियों में विद्यार्थियों का मनोबल बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है।
1: जी, अच्छा, ये पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है तो ये बच्चे तनाव में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं।
0: जी, जी,
1: तो
0: जी।
1: उससे किस तरह से ये बच्चे बच सकते हैं?
0: आज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। ऐसे में यदि परीक्षा स्थगित हो जाए, रद्द हो जाए या उनकी निष्पक्षता पर प्रश्न उठ जाए तो विद्यार्थियों के मानसिक तनाव, चिंता और असुरक्षा की भावना स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। इस समय परिवार, शिक्षक और समाज सभी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अभिभावकों को सबसे पहले बच्चों की भावनाओं को समझना चाहिए, उसे ये महसूस नहीं होने देना चाहिए कि उनकी मेहनत व्यर्थ चली गई। ऐसे समय में बच्चों को तुलना दूसरों से करने के बजाय उनका आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। सकारात्मक संवाद और भावात्मक सहयोग सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। शिक्षक केवल विषय पढ़ाने वाले व्यक्ति नहीं होते, बल्कि वे विद्यार्थियों के मार्गदर्शक भी होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में शिक्षकों को दायित्व है कि विद्यार्थियों को निराशा न होने दें, उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। साथ ही विद्यार्थियों में ईमानदारी, धैर्य और सकारात्मक सोच विकसित करना भी शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत अच्छी तरह से बताया कि अगर एक बच्चा पढ़ाई के प्रेशर में, तैयारी करने के बाद और पेपर लीक होने के बाद तनाव में चला जाए तो किस तरह से वे अपने आप को संभाल सकता है, और उसके साथ साथ उसके पेरेंट्स और शिक्षक भी उसका सहयोग करके उसे इस डिप्रेशन से या तनाव से निकाल सकते हैं। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया और मैं आशा करती हूँ जो बच्चे, जो श्रोता हमारे सुन रहे होंगे, उनको इस चीज का जरूर लाभ मिलेगा। तो डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस परीक्षा प्रणाली जो ये चल रही है तो इसमें बदलाव कितना जरूरी है?
0: देखिए मैम, समय के साथ प्रत्येक व्यवस्था में सुधार आवश्यक होता है। आज आवश्यकता है कि परीक्षा प्रणाली अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीकी आधारित बने। प्रश्न पत्र निर्माण से लेकर वितरण और मूल्यांकन तक प्रत्येक चरण में आधुनिक सुरक्षा उपाय अपनाए जाएं। साथ ही परीक्षाएं केवल स्मरण शक्ति पर नहीं बल्कि समझा, विश्लेषण और समस्या समाधान क्षमता का भी मूल्यांकन करें। जैसे कि आपने देखा है कि आज हम तकनीकी महत्वपूर्ण समाधान प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि सुरक्षित सर्वे, मल्टी फैक्टर ऑर्थोटिक क्रैक्शन, AI आधारित निगरानी, CCTV मॉनिटरिंग, डिजिटल ट्रेनिंग। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि तकनीकी तभी प्रभावी होगी जब उसका सही क्रियान्वयन और नियमित निगरानी हो।
1: बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यदि परीक्षा रद्द हो जाए तो बच्चे दोबारा तैयारी कैसे कर सकते हैं?
0: देखिए, सबसे पहले घबराना नहीं चाहिए। जो तैयारी आपने की है वह आपका ज्ञान है और वह कहीं नहीं जाता। इस समय अपनी तैयारी की समीक्षा करें, कमजोर विषयों पर अधिक ध्यान दें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। एक परीक्षा जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं होती।
1: बिल्कुल, बच्चे बिल्कुल ना सोचें कि ये एक परीक्षा लीक होकर उनकी जिंदगी खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। जिंदगी बहुत बड़ी होती है और उसको फिर दोबारा से एग्जाम की तैयारी करने के लिए पूरे उत्साह

0: के साथ फिर से जुड़ जाना चाहिए।
1: जी।
0: तो डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूंगी कि पेपर लीक केवल शिक्षा का मुद्दा है या फिर पूरे समाज का?
1: देखिए मैम, वैसे तो यह है कि पेपर लीक जो एक समस्या बनी हुई है हमारे भारतवर्ष में,
0: जी।
1: ये एक विद्यार्थियों पर नहीं है, ये पूरे समाज पर है मैम।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि इसमें किसी एक विशेष समाज के या किसी धर्म के या किसी जाति विशेष के स्टूडेंट नहीं है, इसमें सभी धर्मों के, सभी जातियों के, सभी वर्गों के छात्र छात्रा प्रतिभाग करते हैं। वो शुरू से लेकर, मैं अपना एग्जाम्पल दूं, मेरा बेटा इस समय नीट की तैयारी कर रहा था, उसने पहली बार अभी मतलब एग्जाम दिया था, तो उसने की जो आती है बाद में एग्जाम रिजल्ट की, उसके 620 नंबर बन रहे थे, 155 क्वेश्चन बिल्कुल राइट थे मैम।
0: बिल्कुल।
1: उसने वो इतना पढ़ता था मैम, इतना पढ़ता था कि 14 से लेकर 16-18 घंटे तक पढ़ता था,
0: बिल्कुल।
1: खाना तक नहीं खाता था, मतलब वो उसी में पढ़ाई में लगा रहता था। बहुत तैयारी की, उसके अच्छे नंबर आए, उसको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता था या एम्स भी
0: जी।
1: मिल सकता था, लेकिन जब सुना कि पेपर लीक हो गया तो इतना मैम वो डिप्रेशन में चला गया कि वो
0: जी।
1: मतलब ये सोच रहा होगा अपने मन में कि यार मैं क्या करूं, पेपर लीक हो गया, मेरा नंबर आ
0: हाँ
1: गया था, मेरा नंबर आए ना
0: हाँ
1: आए, यानी इसी को लेकर बच्चे आत्महत्या कर जाते हैं। लेकिन
0: बिल्कुल।
1: हमने उसको बहुत संभाला, उसको बहुत एग्जाम्पल दिए कि बेटा ये मत सोचो कि ये लास्ट हो गया है,
0: लास्ट हो गया।
1: आपका भविष्य है, तो आगे को परिश्रम करिए और ज्यादा परिश्रम करिए, ये चुनौती आती रहती है, इन चुनौतियों से घबराना ही नहीं चाहिए। अब उसने फिर दोबारा परीक्षा दी, परीक्षा देने में उसके मात्र 430 नंबर आए। वो बड़ा होपलेस हुआ कि पापा मैं क्या करूं, लेकिन फिर भी हमने उसको वो उत्साह बढ़वाया, उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, बेटा नीट के एग्जाम दे। तो उसने एक बासु मथुरा का एग्जाम अपना अलग कराती है, बहुत फेमस कॉलेज है पूरे
0: अच्छा।
1: इंडिया में, नंबर वन कॉलेज माना जाता है वेटनरी का, और
0: हाँ।
1: दूसरा एक जनरल जो इंडिया लेवल का होता है वो अलग से, तो उसका उसमें दोनों में ही नंबर आ गया मैम।
0: अरे वाह।
1: उसने सबसे पहले एडमिशन लिया मेरठ में, तो लेकिन वो संतुष्ट नहीं था, बोले इससे तो मैं बासु मथुरा में आया। बासु मथुरा में उसकी 10 रैंक थी, और उसमें स्टेट लेवल पर जो थी पूरे उस ऑल ओवर इंडिया वाली पे उसके यानी तीसरी रैंक थी, तो तीसरी रैंक में भी नंबर आ गया और 10वीं रैंक में भी नंबर आ गया। अभी वो वैसे संतुष्ट नहीं है,
0: हाँ।
1: उसको नीट की भी काउंसिलिंग कराएंगे, और नीट की काउंसिलिंग कराने के बाद हो सकता है उसका नीट में भी नंबर आ जाए। तो
0: बिल्कुल।
1: ऐसी स्थिति में हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से संभाला। तो प्रत्येक अभिभावक का कर्तव्य बनता है कि उसको ताना ना दें, उसको ये ना करें कि मतलब दोबारा नंबर नहीं आया, पहले पेपर लीक हो गया तो उसमें नंबर आया अब नहीं आया, तो उसको ऐसा नहीं करें, उसको समझाएं बुझाएं, उसको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दें जिससे कि उसका मनोबल बढ़े और वो फिर दोबारा तैयारी करे, और जब तैयारी करेगा तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं नंबर आएगा। वो ये ना समझे लास्ट हो गया, लास्ट कभी ना समझे। ये चुनौतियां तो भविष्य में आती रहती है मैम, कभी गवर्नमेंट की कमी रहती है, कभी हम लोगों की कमी रहती है, कभी स्टूडेंटों की कमी रहती है, तो इन सभी कमियों को छोड़ते हुए हम सभी को, अभिभावकों को भी, शिक्षकों को भी और विद्यार्थियों को भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अच्छे ढंग से तैयारी करनी चाहिए। तो मैम गवर्नमेंट का भी एक इसमें कर्तव्य है कि जो हमारी शासन प्रणाली है उस
0: हाँ।
1: पर नियंत्रण लगाए और ऐसे दोषियों को मतलब आजीवन उम्र कैद डाले या उन पर कोई ऐसा दंड डाले कि जिससे कि
0: हाँ।
1: दूसरे व्यक्तियों की हिम्मत ना हो और जो कभी आगे भविष्य में पेपर लीक ना कर सकें।
0: बिल्कुल।
1: और जब पेपर लीक नहीं होंगे तो मैं समझता हूँ कि बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा और वो बड़े मनोबल के साथ पढ़ेंगे और अपनी जो उनके उद्देश्य होंगे, जो उनकी इच्छाएं होंगी, उनको वो बड़े रुचि से करेंगे, अपने सपने साकार करेंगे। चाहे वो पेपर नीट का हो, चाहे वो किसी कंपटीशन का हो, चाहे एस पी सी एस का हो, किसी लेवल का हो, इस पे प्रत्येक स्तर के पेपरों में बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। पेपर लीक
0: जी
1: होता है, बच्चे तैयारी नहीं कर रहे, कह रहे हैं यार करके क्या करें, पेपर लीक हो जाएगा, तो
0: बिल्कुल।
1: इससे मनोबल घट रहा है और हमारे भारतवर्ष के बच्चों में उत्साह खत्म होता जा रहा है।
0: जी डॉक्टर साहब, आपने अपना एग्जाम्पल देखकर बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझाया कि वास्तव में इस समय पेरेंट्स को बहुत स्ट्रांग होना जरूरी
1: जी,
0: है।
1: बच्चों को डांटना या फटकारना नहीं चाहिए,
0: बिल्कुल।
1: प्यार से
0: देखिए,
1: उसको
0: बच्चे जो होते हैं हमारे देश का भविष्य है। ये
1: भविष्य
0: सिर्फ उनका पर्सनल या उनके परिवार का मुद्दा नहीं है, ये
1: जी,
0: वाकई समाज का मुद्दा
1: समाज का
0: है।
1: मुद्दा
0: इसमें सभी को अवेयर रहने की जरूरत
1: जी
0: है,
1: जी
0: और माँ बाप का और टीचर का तो ज्यादा ही प्रभाव
1: ज्यादा
0: बच्चे
1: रोल
0: पर
1: है,
0: पड़ता
1: ज्यादा
0: है।
1: रोल रहता
0: अच्छे से स्ट्रांग रहें और
1: मार्गदर्शक
0: बच्चे
1: होता है,
0: को मार्गदर्शक
1: शिक्षक और
0: मोटिवेट करना।
1: अभिभावक मार्गदर्शक होते हैं,
0: बिल्कुल।
1: वो जैसे रास्ते में ढालना चाहेंगे बच्चा उसमें ही पढ़ता है। लेकिन
0: हाँ
1: पेपर लीक होने पर बच्चा, मैं मानता हूं मैं भी हूं उस जगह, तो मैं भी होपलेस
0: बिल्कुल।
1: होऊंगा,
0: बहुत
1: लेकिन यह है कि जब पेपर लीक होते रहेंगे तो उससे बड़ा समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
0: जी
1: तो मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रणाली पर रोक लगाएं जिससे हाँ। कि बच्चों का भविष्य
0: बिल्कुल
1: उज्जवल हो।
0: आपके हिसाब से कानून भी सख्त होने चाहिए इसके लिए ताकि बच्चों का भविष्य उससे प्रभावित ना हो। जी अच्छा, मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए मैं मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई विद्यार्थियों आपने देखो बहुत मेहनत की है। जैसे मैंने अपना ये बेटे का एग्जाम्पल दिया, 14 से 16-18 घंटे तक पढ़ा वो, खाना तक नहीं खाने को तैयार, सोने को नहीं तैयार। तो ऐसे विद्यार्थियों को हम ऐसी प्रेरणा दें, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दें जिससे कि हतोत्साहित ना हो और अपनी मेहनत को बरकरार रखें।
0: बिल्कुल
1: जी, कब तक पेपर लीक होंगे, कितनी बार होंगे, कभी ना कभी तो गवर्नमेंट रोक लगाएगी और ये जो पेपर लीक प्रणाली चल रही है कभी ना कभी तो समाप्त होगी। मान लो पता चला कि हमने तैयारी नहीं की, उस समय पेपर लीक नहीं हुआ तो हम पछताते रहेंगे। इससे तो हम मेहनत करें, परिश्रम करें और आगे आने वाले बच्चों को भी ये संदेश मिले कि अब पेपर लीक नहीं होगा, जो हम तैयारी करेंगे उसका रिजल्ट हमारे सामने सही आएगा।
0: बिल्कुल, बच्चों को बहुत स्ट्रांग होना, उन्हें मोटिवेट करना बहुत जरूरी है।
1: और हम प्रेरित नहीं करेंगे तो बच्चे होपलेस होंगे मैम और वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
0: बिल्कुल, उन्हें हम यहीं से सिखा सकते हैं कि जिंदगी में आने वाले समय में बहुत संघर्ष है और ये सिर्फ आपकी शुरुआत है।
1: शुरुआत
0: बिल्कुल, तो इस तरह से हम बच्चों को समझा सकते हैं। और लेकिन ये भी जरूरी है कि सरकार इस पर ध्यान दे, कानून जो है वो सख्त हो ताकि बच्चे का फ्यूचर उससे प्रभावित ना हो और उज्जवल हो। तो आने वाले समय में आप शिक्षा व्यवस्था को किस रूप में देखते हैं?
1: देखिए मैम, आने वाले समय में ये है कि शिक्षा व्यवस्था जो चल रही है इस समय, जैसे हमारी NEP 2020 थी, या इसमें भी हमें सुधार की जरूरत है।
0: जी,
1: कुछ स्टेप इसमें ऐसे हैं कि बच्चों पर, जैसे हाई स्कूल में कहा गया है कि कोई बच्चा फेल ना हो, तो उस स्थिति से भी बड़ी समस्या आती है कि बच्चा फिर पढ़ना नहीं चाहता कि मैं फेल तो होऊंगा नहीं तो मैं क्यों पढ़ूं। तो ऐसी स्थिति जो यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं, कुछ स्टेप हैं, उन स्टेपों पर थोड़ी सख्ती लाई जाए और बच्चों को पढ़ाई का मतलब ये ना कहे कि पास हो जाएंगे, ये कहें भाई आप मेहनत करेंगे तभी पास होंगे।
0: बिल्कुल,
1: जब तक मेहनत नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है।
0: बिल्कुल,
1: आप परिश्रम करिए, मेहनत करिए और पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए। पढ़ाई एक ऐसी चीज है कि हमारे समाज का, हमारे परिवार का, हमारे देश का विकास करती है। बिना, जैसे कि कहा गया है कि मतलब शिक्षा एक ऐसी चीज है कि माता के समान पालन पोषण करती है, पिता के समान मार्गदर्शन करती है और पत्नी के समान सम्मान करती है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि माता जैसे बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे को जन्म देने के बाद पूरा पालन पोषण माता करती है, इसी प्रकार शिक्षा है। और हम शिक्षित हैं, शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, तभी हमारा पालन पोषण होगा। ये शिक्षा पिता के समान मार्गदर्शन देती है। जैसे कि मान लीजिए हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, पिताजी हमें मार्गदर्शन करते हैं कि भी आपको मतलब मेडिकल में जाना है या आपको इंजीनियरिंग में जाना है या आपको मान लीजिए एडवोकेट बनना है या आपको टीचर बनना है, तो इसी प्रकार शिक्षा भी हमें हाई स्कूल के बाद, इंटर के बाद हमें मार्गदर्शित करती है कि आपको कौन सी लाइन में जानी है, डॉक्टरी में जाना है या आपको इंजीनियर बनना है या आपको IAS PCS बनना है। तो पिताजी के समान ये मार्गदर्शन कर दिया। ये शिक्षा ही एक ऐसी चीज है कि बिना शिक्षा के हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते, हम विकास नहीं कर सकते, तो शिक्षा बहुत जरूरी है।
0: जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा संदेश, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी जानकारी हमारे बच्चों के लिए दी जो कि तैयारी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं तैयारी करते करते उनके मन में आता है कि कहीं इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, इतनी तैयारी कर रहा हूँ तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि पेपर लीक हो जाए। तो बिल्कुल स्ट्रेस ना लें, बिल्कुल टेंशन ना लें, मन लगाकर पढ़ाई करें। अच्छा, मेहनत का फल जरूर मिलता है, वो कहीं नहीं जाता, मेहनत का फल जरूर होता है। तो बिल्कुल जो हो गया उसे छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, आज की चर्चा से यही संदेश निकल कर आता है कि पेपर लीक केवल एक कानूनी अपराध नहीं बल्कि लाखों विद्यार्थियों के सपनों और विश्वास पर किया गया प्रहार है। शिक्षा का उद्देश्य है केवल परीक्षा पास कराना नहीं बल्कि ईमानदारी, समान अवसर और विश्वास की नींव को मजबूत करना है। आइए हम सभी मिलकर ऐसी व्यवस्था के निर्माण का संकल्प लें जहां सफलता का आधार केवल और केवल मेहनत हो, ना कि किसी गलत तरीके का सहारा। इसी उम्मीद और सकारात्मक सोच के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। और जो हमारे स्टूडियो में मेहमान आए हैं डॉक्टर राम किशोर सिंह जी, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी और श्रोता हमारे इससे जरूर लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।
2: अभी हम सुन रहे थे एक भेंट।

करता। आशा करते हैं आपको ये भेंट वार्ता पसंद आई होगी। दोस्तों, सपनों की उड़ान को मंजिल तक पहुंचाने के लिए सात समुद्र पार जाने की जरूरत नहीं होती। कई बार सबसे बड़ा समंदर हमारे भीतर होता है। जब हम अपने डर, संकोच और सीमाओं को तोड़ते हैं, तभी सफलता के नए रास्ते खुलते हैं। इसी उम्मीद, हौसले और आत्मविश्वास से भरा गीत सुनते हैं फिल्म हिचकी से।

श्रोताओं, अभी हम सुन रहे थे एक गीत। आशा करते हैं आपको गीत पसंद आया होगा। श्रोताओं, अब जबकि सावन और बरसात का मौसम चल रहा है, तो ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है। बारिश के दौरान जगह जगह पानी जमा होने से मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, बरसात में खान पान पर ध्यान देना भी आवश्यक है। खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों और कटे हुए फलों के सेवन से बचें, ताजा गर्म और सही पका हुआ भोजन करें और साफ सुथरा पानी पिएं। बारिश के मौसम में अगर भीग गए हैं तो कपड़े तुरंत बदलें, हाथों को बार बार धोएं। श्रोताओं, बारिश का आनंद जरूर लें, लेकिन सावधानी के साथ। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और बारिश की हर बूंद का आनंद उठाइए। इसी जानकारी के साथ समय हो गया है आपसे विदा लेने का, परंतु जाने से पहले जानना चाहेंगे आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा। अपनी शिकायतें और सुझाव देने के लिए हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम परिवार जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन नंबर 246763। इसी के साथ मुझे यानी अपनी दोस्त दीप्ति माहेश्वरी को दीजिए अनुमति कार्यक्रम परिवार जगत संपन्न करने की। नमस्कार।

श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम परिवार जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। लोक संगीत की कार्यक्रम लोकधारा में श्रोता लीजिए पेश है रेशमा के गाए जौनसारी लोकगीत।

0: आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रत्येक मंगलवार को
1: शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में सुनिए
0: गुणवत्ता युक्त बासमती धान उत्पादन हेतु
1: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा
0: साप्ताहिक आयोजित कार्यक्रम

0: लोक संगीत की कार्यक्रम लोकधारा में श्रोता भी सुन रहे थे रेशमा के गाए चौंसारी लोकगीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 2 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Disruption continues in both houses of parliament amid opposition uproar on several issues. 4 billion

0: Jharkhand Assembly over alleged irregularities in recruitment examinations. Har Ghar Tiranga movement gains momentum as Tiranga rallies organized across the nation. Over 10 lakh people evacuated as Typhoon Dolphin batters parts of eastern China. World Lion Day being celebrated today, Prime Minister Narendra Modi says India scripted successful conservation journey from 523 lions to 891 in last 10 years. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील, गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया, तीन अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज कहा कि सरकार विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने ये बात कही।
2: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
1: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की थी।
3: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
1: इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज शोर शराबे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पेश किया गया। दिन के 12 बजे तक स्थगित रहने के बाद सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया। ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता तथा नियुक्ति में एक रूपता सुनिश्चित करने और प्रशासन तथा कामकाज में कुशलता, स्वतंत्रता और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रावधान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खदान और खनिज विकास तथा नियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक 1957 के संबंधित अधिनियम में संशोधन करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम संशोधन विधेयक 2026 सदन के समक्ष रखा। ये विधेयक केरल राज्य के नाम में परिवर्तन का प्रावधान करता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसके माध्यम से 1962 के संबंधित अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संबंधित हितधारकों से परामर्श पूरा होने के बाद राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा अंतिम रूप देने के चरण में है। फिलहाल दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। केंद्रीय मंत्री और रांची से सांसद संजय सेठ ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच का आदेश देने में राज्य सरकार की अनिच्छा पर सवाल उठाया है। संसद भवन परिसर में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री सेठ ने कहा कि यदि विद्यार्थी ये परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं तो राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वे इससे मानने से क्यों इनकार कर रही है।
4: छात्र अडिग हैं कि हम तो जाएंगे और विधानसभा घेरेंगे। यही मांग है कि सीबीआई जांच करा दो और जेएसएससी के एग्जाम कैंसिल करा दो, जो दोषी है उनको पकड़ो और ईडी जांच करा दो। सरकार को क्या आपत्ति है।
1: भाजपा सांसद तरुण चुघ ने विपक्ष के कुछ नेताओं पर झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को जानबूझकर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये नेता इस मुद्दे पर पूरी तरह मौन है, जबकि राज्य में उनके गठबंधन सहयोगियों की सरकार है।
5: मेरा निवेदन है कि छात्रों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए और मेरा सभी से निवेदन है, आंदोलन हम सबका राइट है, सत्याग्रह हम सबकी ताकत है, लेकिन हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना।
1: उधर झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में जारी विद्यार्थी आंदोलन का आज 17वां दिन है। विद्यार्थी विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के नेतृत्व में छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने तथा कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन छात्र अपनी प्रमुख मांगों पर अड़े हुए हैं। मार्च के दौरान छात्रों ने पुरानी विधानसभा के पास बैरिकेडिंग पार की और 7वें तथा आखिरी बैरिकेडिंग तक पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो को एम्बुलेंस से विधानसभा लाया गया, जहां उन्होंने स्ट्रेचर पर समर्थकों के साथ मार्च में हिस्सा लिया। 6 छात्र अब भी अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू समेत कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। तीनों जेपीएससी सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन और तेज हुआ है। नविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
7: श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। मंत्रालय ने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में राष्ट्रगीत का उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करेगी। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत कश्मीर के सभी जिलों में तिरंगा यात्राएं और देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
8: अभियान की शुरुआत के साथ ही पुलवामा के त्राल इलाके, अनंतनाग, बारामुल्ला और कई दूसरी जगहों पर तिरंगा यात्राएं निकाली गई, जिनमें युवाओं, छात्राओं, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। श्रीनगर में भी इस अभियान के तहत एक बड़ी तिरंगा रैली की तैयारी चल रही है। कश्मीर भर में जिला प्रशासन आने वाले दिनों में कई तिरंगा यात्राएं और जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। स्थानीय लोग भी इस अभियान के तहत तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उत्साहपूर्वक इसमें भाग ले रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज राजधानी पटना में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
9: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गांधी मैदान स्थित जेपी सर्कल से शुरू यह यात्रा कारगिल चौक के पास समाप्त हुई। यात्रा में स्कूली बच्चों, एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स और आम लोगों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। इस दौरान पूरा शहर तिरंगे के रंगों में सराबोर।

0: और होने के साथ ही वंदे मातरम और हर घर तिरंगा के नारों से गुंजायमान रहा। इधर तिरंगा यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से इस अभियान के तहत जिला, नगर निकाय और पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली यात्राओं में शामिल होने का आग्रह किया। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना। उधर नागालैंड के कोहिमा में आज भारतीय जनता पार्टी की नागालैंड इकाई ने हर घर तिरंगा दोपहिया रैली का आयोजन किया। अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1 लाख 55 हजार करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं, इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ, असम और मेघालय में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में कल तक बिजली चमकने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा आज शाम दिल्ली के कई स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। तेज बारिश के कारण हुए भूस्खलन से राज्य के कई हिस्सों में 100 से अधिक सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और राजधानी शिमला सहित राज्य के अनेक क्षेत्रों में रुक रुक कर हल्की वर्षा हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, सिरमौर, मंडी और कुल्लू में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर लोगों को एहतियात बरतने और नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इस बीच भारी वर्षा से हुए भूस्खलन के कारण राज्य में 100 से अधिक सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, जबकि 255 बिजली ट्रांसफार्मर और लगभग 20 पेयजल परियोजनाएं भी प्रभावित हैं। कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस पर कहा कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आलेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी से वन्य जीव संरक्षण की सरकार की प्रतिबद्धता विशेष प्रजातियों को पीढ़ियों तक संरक्षित रखने का प्रेरक उदाहरण है। श्री भूपेंद्र यादव ने अपने आलेख में कहा है कि वर्ष 2015 में 523 शेरों की संख्या बढ़कर वर्ष 2025 में 891 हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
2: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: इटली के बोलोनिया में कश्मीरी मूल के हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की। दुनिया के विभिन्न देशों में कश्मीरी प्रवासी समूहों के ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक बढ़कर 78,585 जबकि निफ्टी 28 अंक की बढ़त के साथ 24,599 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील। गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया। 3 अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती

0: कक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और आज विश्व सिंह दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन की 2:30 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम नई फिल्मों से। कार्यक्रम का पहला गीत बन्नी और सागर की आवाजों में फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही से। गीत की बोली लिखे हैं सागर ने और संगीत दिया है हनी बनी ने।

अरिजीत सिंह की आवाज़ों में लीजिए अब पेश है जरा हटके जरा बच के फिल्म का ये गीत। गीत की बोली के हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया है सचिन जिगर ने।

0: चौथा ये गीत हमने लिया था फिल्म शेरशाह से। आवाज़ें थे जुबिन नौटियाल और असीस कौर की, गीत के बोल लिखे थे, गीत और संगीत दोनों ही तनिष्क बागची का था। कार्यक्रम के अगले गीत से पहले आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम, डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम, आनंद की अटूट रसधार।
0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से श्रोता इस समय आकाशवाणी नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं। लीजिए अब पेश है आतिफ असलम की आवाज़ में रुस्तम फिल्म का ये गीत। गीत की बोली के हैं मनोज मुंतशिर ने और संगीत दिया है आर्को ने।

लीजिए श्रोता, पेश है अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म का ये गीत। गीत की वो लिखे हैं कुमार और अहमद अनीस ने, संगीत दिया है शारिब शाबरी और जावेद अहमद ने।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ नई फिल्मों से कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। इस समय

शुभ संध्या श्रोताओं, हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 5 बज रहे हैं।

शाम के 5 बज रहे हैं। हमारी संध्याकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं और सभा के आरंभ में आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत की ओर, जहां आज जानकारी है अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत।

श्रोताओं, अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत सांप्रदायिक सौहार्द के लिए संशोधित दिशा निर्देश और अल्पसंख्यकों की नियुक्ति के विशेष उपचार हेतु संशोधित दिशा निर्देशों के संबंध में। और आइए जानते हैं सबसे पहले सांप्रदायिक सौहार्द के लिए संशोधित दिशा निर्देश के बारे में। श्रोताओं, भारतवर्ष अनेकता में एकता और विभिन्न संस्कृतियों का देश है, लेकिन इन सब के बावजूद हम सब की एक पहचान है कि हम भारतीय हैं। और इसी भावना को मजबूत करने और देश के हर वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु शुरू किया। इस कार्यक्रम की घोषणा जून 2006 में की गई थी, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के जरूरतमंद लोगों तक शिक्षा, रोजगार, आर्थिक विकास, बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा से जुड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ समान रूप से पहुंच सके। और इस योजना का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना। श्रोताओं, सांप्रदायिक सौहार्द का सीधा मतलब हर धर्म, हर समुदाय, हर वर्ग के लोगों में आपस में शांति, सम्मान और भाईचारे के साथ रहें, ऐसा है। किसी प्रकार की अफवाह, दंगा फसाद, धर्म, जाति और पहचान को लेकर किसी भी तरह

लोगों में सुरक्षा विश्वास और भाईचारे की भावना पैदा करना है। साथ ही किसी भी गांव, कस्बे, शहर शहर या दो समुदायों के बीच छोटी सी बात को बड़ा विवाद बनाने से पहले ही समझदारी से उसे रोकना प्रशासन की जिम्मेदारी है, ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके और किसी भी प्रकार के समुदाय के साथ पक्षपात ना हो। और श्रोताओं, हम सभी की, साथ ही समाज के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वे अफवाहों पर विश्वास ना करें, वाद विवाद में ना पड़ें, पक्षपात ना फैलाएं और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर ऐसे मामलों को तुरंत सक्रिय होकर स्थिति को नियंत्रित करने में अपना सहयोग करें। क्योंकि श्रोताओं, धर्म, जाति, भाषा, रंग, रूप अलग हो सकते हैं, लेकिन देश एक है और हम सभी इस देश के निवासी हैं।

और आई श्रोताओं, अब जानकारी है अल्पसंख्यकों की नियुक्ति में विशेष उपचार हेतु संशोधित दिशा निर्देश की। श्रोताओं, जब देश की तरक्की की बात हो तो तरक्की का अवसर भी समाज के हर वर्ग तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इसी सोच के साथ भारत सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किए हैं और जून 2006 में इसे लागू किया गया। अल्पसंख्यकों की नियुक्ति के लिए विशेष ध्यान संशोधित दिशा निर्देश को मंजूरी मिली, जिसका उद्देश्य है सरकारी नौकरियों में योग अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को भी उचित अवसर मिले और भर्ती की प्रक्रिया निष्पक्ष और प्रतिनिधित्व वाली हो, जिसमें योग्यता भी जरूरी, अवसर भी जरूरी और निष्पक्षता भी जरूरी हो। सरकारी नौकरी में किसी योग्य व्यक्ति को सिर्फ इसलिए पीछे ना रहना पड़े कि वह अल्पसंख्यक समुदाय से है। और इन्हीं नियुक्तियों में विशेष ध्यान देने से संबंधित DOPT का महत्वपूर्ण कार्यालय ज्ञापन 8 जनवरी साल 2007 को जारी हुआ, जिससे भर्ती प्रक्रिया में उचित अवसर और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। इन दिशा निर्देशों की एक महत्वपूर्ण बात है कि जहां 10 या उससे अधिक पदों पर भर्ती हो रही हो, वहां चयन प्रक्रिया समिति में एक अल्पसंख्यक सदस्य को शामिल किया जाए। साथ ही सरकारी विभागों जैसे बैंक, रेलवे, ग्रुप सी, ग्रुप डी जैसे पदों के लिए रिक्तियों व सरकारी नौकरियों की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच सके, ताकि गांवों कस्बों में रहने वाले योग्य युवा भी समय पर नौकरी की जानकारी प्राप्त कर सकें और आवेदन कर सकें। जरूरत के अनुसार स्थानीय भाषा में भी जानकारी पहुंचाने की व्यवस्था पर बल दिया गया। श्रोताओं, इसका सीधा मतलब ये नहीं कि अल्पसंख्यक समुदाय के किसी भी व्यक्ति को बिना योग्यता, बिना चयन प्रक्रिया के नौकरी मिल जाए, बल्कि योग्यता परीक्षा और भर्ती के नियम सभी के लिए समान लागू रहते हैं। इसका उद्देश्य है अवसर की जानकारी सब तक पहुंचे, भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष हो और अल्पसंख्यक समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास हो। इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि जब समाज का हर वर्ग शिक्षा और रोजगार के अवसर से आगे बढ़ेगा तो परिवार मजबूत होंगे, आर्थिक स्थिति सुधरेगी और देश की तरक्की भी तेज होगी। योग्यता के आधार पर नौकरी, लेकिन अवसर और जानकारी से कोई वंचित ना रहे, यही इन दिशा निर्देशों की मूल भावना है। यही प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम का सपना भी है। हर वर्ग आगे बढ़े, हर नागरिक को अवसर मिले और मिलजुल कर भारत उन्नत बने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। समय शाम के 5:10 और आइए श्रोताओं, अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के संदर्भ में। संसद समीक्षा आज रात्रि 8:00, रात्रि 9:30 पर सुनिएगा प्रोग्राम पब्लिक स्पीक और रात्रि 10:00 संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रसारित की जाएगी। ये तीनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

मोहन कुमार गुप्ता के गाए भजन सुनिएगा सुगम संगीत में आज संध्या 7:32 पर। आज शाम 6:45 पर विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेंगे आप भेंटवार्ता, जिसका विषय होगा जनपद बिजनौर का इतिहास लेखन। वार्ताकार होंगे राहुल नील, जिनसे बातचीत करेंगे शोभित शर्मा। और अब से कुछ ही पलों में यानी शाम 5:15 पर युवा श्रोता सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज क्रम रहेगा बूझो तो जाने, कुछ खास है आज, गपशप, अड्डा, क्रैश कोर्स, पैसा वसूल, कहानी के उस पार, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, बूस्टर्स, साथ ही साथ गीत संगीत भी। और श्रोतों, कृषि जगत कार्यक्रम में आज शाम 6:05 पर किसान भाई सुनेंगे भेंटवार्ता, फल तुड़ाई उपरांत फलदार बागों का प्रबंधन, जानकारी देंगे प्रोफेसर SL पाल, जिनसे बातचीत करेंगे हिमांशु रंजन। साथ ही सुनिएगा चर्चा, विषय रहेगा मछली पालन, तालाब की सुरक्षा और सोलर ट्रैप द्वारा कीट नियंत्रण विषय पर।

शाम 8:15 पर होगा कार्यक्रम गीत संध्या, साथ ही 8:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत एक ही फिल्म से, और आज रात्रि 10:19 पर होगा फिल्म संगीत, और रात्रि 10:30

पर सुनिएगा भूले बिसरे गीत। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम, और अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर।

जिले की हलचल कल सवेरे 9:15 पर आकाशवाणी लखनऊ से, भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना कल सवेरे 6:05 पर, भव्य प्रस्तुति श्री रामचरित मानस गान से सुनिएगा कल सवेरे 6:30 पर, चिंतन का समय रहेगा कल सवेरे 6:40 पर, डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा से सुनिएगा काव्य पाठ काव्यधारा कार्यक्रम में कल प्रातः 6:45 पर, बच्चों के लिए घातक है पेट के कीड़े ये पूर्व प्रसारित जानकारी रहेगी कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में कल सुबह 7:05 पर। सुबह 7:10 पर कार्यक्रम खेती की बातें में सुनिएगा जानकारी सीताफल की खेती के विषय में, और इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम सूरज के साथ साथ रोज की ही तरह सुबह 7:31 पर सत्यवीरा हांडा के गाए सावन शिवरात्रि पर विशेष शिव गीतों और सावन गीतों का आनंद लीजिएगा कल सुबह 9:25 पर लोक संगीत कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत। तो श्रोताओं, ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से प्रसारित आज और कल के प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 यानी 954 kHz पर। समय शाम के 5:15 हो रहे हैं और लीजिए अब प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युवा।

0: गुड इवनिंग लिसनर्स,
1: स्वागत है दोस्तों आपका आपके मनपसंद कार्यक्रम युवाणी में।
0: मैं हूँ आपकी सगी दोस्त और आज की वन ऑफ द होस्ट नंदिनी, और मेरे साथ हैं वो साथी जिनका हर पल है जागरूक विश्वास।
1: हेलो हाय नमस्ते, हाजिर हूँ दोस्तों मैं आपकी अपनी रेडियो पार्टनर श्रेया विश्वास।
0: हाँ हाँ, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास
1: जी। विश्वास के आगे श्रेया भी है मेरा नाम।
0: श्रेया,
1: ओहो ये देखो नजबात कोडेड शाहरुख जाग गए इनके अंदर।
0: हाँ जाग गया, और शाहरुख सवाल भी करना चाहता है हमारे श्रोताओं से आज,
1: तो प्लीज दोस्तों इनके सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा।
0: बूझ तो जाने में आज का सवाल रहेगा, सुपरहिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे किस वर्ष रिलीज हुई थी?
1: और जैसा कि आप जानते हैं कि इसका सही जवाब आपको भेज देना है हमारे फेसबुक अकाउंट आकाशवाणी नजबात के कमेंट सेक्शन पर।
0: अच्छा श्रेया, तुम्हारी राय में शाहरुख की बेस्ट फिल्म कौन सी है?
1: देखो नंदिनी, शाहरुख में ABCD करके कंपैरिजन करना गलत बात हो जाएगी, पर अगर फेवरेट की बात करो तो मुझे लगता है मेरी फेवरेट है स्वदेश।
0: ओहो टिपिकल नेशनलिस्ट हो, मतलब तुम भी बाहर जाकर वापस आओगी हैं?
1: अरे भाई मैं जाऊंगी ही क्यों, मेरा भारत महान, और अगर कमी है भी तो सुधारो उसे, छोड़ के क्यों जाना। अगर हाथ में चोट लग जाती है, फांस चुभ जाती है, तो क्या तुम हाथ काट दोगी या फांस को निकालोगी और पट्टी लगाओगी?
0: सुन लीजिए दोस्तों, श्रेया का मंडे मोटिवेशन मोड बिल्कुल ऑन है।
1: अच्छा चलो तुम मुझे बताओ कि तुम देश के लिए क्या स्पेशल करती हो?
0: देखो जाने अनजाने करती तो बहुत कुछ होंगी मैं, लेकिन स्पेशल हाँ रिसाइकलिंग पॉलिसी में मैं बिलीव करती हूँ।
1: ये हुई ना बात नंदी, रिसाइकल तो एनवायरनमेंट का जैसे क्या कह सकते हैं एक एंटीडोट है
0: ना, मरा,
1: बिल्कुल, और भारत में इसी में जुड़ा है।
0: यानी कि बायोफ्यूल E20, वही जो आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे, इसी का पार्ट है।
1: आसान भाषा में जेंजी के जैसा हर प्रॉब्लम का तोड़ एडजस्टेबल और फ्लेक्सिबल।
0: बायोफ्यूल गन्ने मक्का चावल के छिलके गोबर सरसों का तेल वेस्ट ऑयल जैसी चीजों से बनता है, मतलब प्योर खेती का फ्यूल, फुल पैसा वसूल।
1: दोस्तों 10 अगस्त यानी कि आज के दिन विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है, या ये कह लें वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। पर क्यों?
0: क्योंकि इसी दिन 1893 में सर रोडोल्फ डीजल ने पहली बार इंजन चलाया, और चलाया मूंगफली के तेल से।
1: अरे मतलब डीजल इंजन शुरू से ही बायो था।
0: देख लो।

0: इंजन बायो था। और देखिए दोस्तों, बायोफ्यूल के ना तीन दोस्त हैं, इथेनॉल जो गन्ना मक्का चावल के चूरे से बनता है, जो कि पेट्रोल में भी मिलाया जाता है।
1: ओ अच्छा, और बायोडीजल दोस्तों सरसों का यूज्ड तेल यूज करके बनाया जाता है।
0: और बायोगैस गोबर कचरा किचन वेस्ट से बनता है, जो कि सीएनजी का एक रिप्लेसेबल हो सकता है।
1: तो दोस्तों ये तो थी हमारी जानकारी आज कुछ खास ऐसे एक्ट में।
0: और आपको पता है कि आज मंडे है, तो बगैर गपशप अड्डा के मंडे तो फिनिश होता नहीं है। तो हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए, 9457078288 पर आप कीजिए कॉल, हम शामिल करेंगे आपको प्रोग्राम में। और एक ट्विस्ट जरूर होगा, जब आप कॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए।
2: दीदी नौकरी लग गई।
3: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
2: हाँ दी, नया मोबाइल।
3: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
3: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
2: पर दीप,
3: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
2: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
3: अच्छा।
4: RBI कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आए आज ही दूरदर्शन का DD फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका DD फ्री डिश।
7: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
8: हो जाओगे एहसास कर लोट कोट,
7: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
9: और डोज में क्या है?
8: डोज में है मजा।
7: जी हाँ, मजा आ गया।
9: क्या हो गया, तू ऑपरेशन कराए बिना ही क्यों हॉस्पिटल से भाग आया?
0: बस पूछ मत, नर्स ना बार बार कह रही थी।
9: क्या कह रही थी नर्स?
0: नर्स बार बार कह रही थी कि डरो मत, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा, ये तो बस एक छोटा सा ऑपरेशन है।
9: अबे तो कुछ गलत थोड़ी कह रही थी, डरने की कौन सी वाली बात थी, सही तो कह रही थी नर्स।
0: समझानी तू, वो मुझसे नहीं रहे, डॉक्टर से कह रही थी।
7: जी हाँ, मजा आ गया।

0: हेलो 9457078288।
1: कौन बोल रहा है?
2: ये है गपशप अड्डा।
1: ये है गपशप अड्डा।
3: जी दोस्तों, हाजिर है सेगमेंट गपशप अड्डा। नंबर हम आपको फिर बता देते हैं, 9457078288। अब श्रेया देखो, हमने नंबर तो पहले बताया था, तो हमारे पास कॉल आ रही है, लेट्स रिसीव इट। ओके
4: ओके।
3: हेलो।
5: हेलो, नमस्कार
3: जी। नमस्कार, कौन साथी बात कर रहे हैं?
5: मैं सतीश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट सरकार बात कर रहे
3: हैं। जी सतीश जी, कैसे हैं आप?
5: मैं बढ़िया हूँ, बारिश हो रही है तो बारिश का आनंद उठा रहे हैं।
3: अच्छा जी,
5: ट्रेन में सफर भी कर रहे हैं और सब प्रोग्राम भी सुन रहे हैं।
3: अच्छा, तो बारिश हो रही है, तो बारिश में आपको बारिश अच्छी लगती है कि खूब अच्छा मौसम हो जाता है, या बुरी लगती है कि लाइट भाग जाती है, किचकिच हो जाती है?
5: ज्यादा बारिश भी आती है, ज्यादा किसी की नहीं अच्छी लगती है, ज्यादा कम से कम बारिश होना चाहिए, ज्यादा बारिश होती तो
3: जितनी जरूरत है उतनी हो, है?
4: जी जी बिल्कुल सही कह रहे नंदनी वैसे वो।
3: चलिए, अच्छा ये बताइए, आप गीत कौन सा सुनेंगे आज?
5: अच्छा,
3: हमने जैसे ब्रेक पे जाने से पहले अनाउंस किया था कि हम कुछ ट्विस्ट करेंगे, तो ट्विस्ट हमारा ये है कि आपने देश रंगीला रंगीला चुना, तो वो गाने का मौका हम देंगे, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आज हमारे सभी सिंगर्स को, सभी बाथरूम सिंगर्स को, तो आप गाइए वो।
5: कौन सा?
3: वही जो आप कह रहे थे या जो भी आप चाहें। हेलो सतीश,
5: पहले आप तो अंतराला करो
3: जी,
5: पहले आप तो

0: शब्द छेड़ो, कौन सा शब्द ठिकाना है भाई?
1: अच्छा आपने अभी आपने बोला था ना देश रंगीला रंगीला सुनेंगे, तो वही सुना दीजिए आप,
0: पूरा गाना
1: कुछ भी जितना आपको आता है गाइएगा।
0: मैडम जी, तो पहले आप गाइए थोड़ा और फिर मैं गाएंगे।
2: वो कह रहे हैं नन्नी थोड़ा तुम गाओ थोड़ा हम गाएं।
1: नहीं हमें गाना नहीं आता, हम यहाँ प्लेटफॉर्म देने बैठे, देखिए जजेस कभी गाते नहीं है, और जज क्यों, हम एंकर्स हैं, बल्कि हमारे जितने भी श्रोता हैं। चलिए आप गाएंगे नहीं?
0: अरे आप पहले ने गा दो तब मैं गाएंगे।
2: अरे गाइए गाइए सतीश जी, हम आपका साथ देंगे, आप गाइए तो सही।
0: मस्करम लगती है, ट्रेन में बैठे हैं इसलिए थोड़ी देर बैठे।
1: चलिए ठीक है कोई बात नहीं, आप गाइए मत। आप किसी साथी का नाम लेना चाहेंगे?
0: पहले आपके डेडिकेट करना चाहता हूँ और जितने तमाम सुनने वाले सबको गाने डेडिकेट करना चाहता हूँ। गाने बोले हैं देश रंगीला रंगीला के गाने बोले, फिल्म बनाना है।
1: जी चलिए धन्यवाद आपका फोन करने के लिए।

कुछ बच्चे खिलौने इकट्ठा करते हैं, कुछ रंग बिरंगी तितलियां पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो धूप इकट्ठा करती थी। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण आंगन में उतरती, वो नंगे पांव दौड़कर वहां पहुंच जाती, अपनी दोनों हथेलियां फैलाकर धूप को पकड़ने की कोशिश करती और फिर मुट्ठियां कसकर बंद कर लेती, मानो सचमुच उसने रोशनी को अपने अंदर कैद कर लिया हो। माँ हंसते हुए पूछती, क्या कर रही हो? और वो अपनी बंद मुट्ठियों को सीने से लगाकर मासूमियत से कहती, धूप रख रही हूँ, शाम को अंधेरा होगा ना, तब खोलूंगी। माँ मुस्कुराती थी। उसका नाम मीरा था। एक छोटे से शहर में बना मिट्टी और ईंटों का घर ही उसकी पूरी दुनिया थी। घर बड़ा नहीं था, फिर भी उसमें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि वहां प्यार रहता था। रसोई में माँ की आवाज, बरामदे में पिता की पुरानी लकड़ी की कुर्सी, आंगन में तुलसी का पौधा और छत पर फैला हुआ आसमान, यही उसकी दुनिया थी। उसे लगता था कि हर घर ऐसा ही होता होगा। हर पिता शाम को घर लौटते होंगे, माँ दरवाजे पर इंतजार करती होंगी और हर परिवार रात का खाना साथ बैठकर खाता होगा। बचपन की सबसे बड़ी खूबसूरती शायद यही होती है कि उसे दुनिया की बुराइयों का कोई अंदाजा नहीं होता। मीरा के पिता सरकारी स्कूल में टीचर थे। उनकी जेब भले ही अक्सर खाली रहती थी, लेकिन उनकी अलमारी किताबों से भरी रहती थी। वो हमेशा कहते, मीरा, इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका दिमाग नहीं, उसका दिल होता है। दिमाग तुम्हें काम दिला देगा, लेकिन दिल तुम्हें इंसान बना देगा। मीरा हर बार मुस्कुराकर सिर हिला देती। उसे वो बातें पूरी समझ नहीं आती थी, लेकिन पिता की आवाज से सुकून देती थी। कुछ बातें उम्र से नहीं, समय से समझ आती हैं। गर्मी के दोपहरों में जब बिजली चली जाती, माँ हाथ का पंखा करती और पिता कहानियां सुनाते। मीरा चुपचाप उनकी गोद में सिर रखकर सो जाती। उसे कहानियों से प्यार हो गया था, क्योंकि उन कहानियों में गरीब लोग भी मुस्कुरा लेते थे, टूटे हुए लोग फिर से खड़े हो जाते थे और अंत में सब कुछ ठीक हो जाता था। उसे तब नहीं पता था कि असली जिंदगी कहानियों जितनी आसान नहीं होती। समय को शायद बच्चों से सबसे ज्यादा जल्दी होती है। देखते ही देखते उसकी चोटी लंबी हो गई, स्कूल बदल गया, किताबें मोटी हो गई और लोगों के सवाल भी, बड़ी होकर क्या बनोगे? हर बार वो नया जवाब देती, कभी डॉक्टर, कभी टीचर, कभी साइंटिस्ट तो कभी राइटर। पिता हर बार मुस्कुरा कर कहते, जो भी बनना पहले अच्छा इंसान बनना। उसे लगता था कि अच्छा इंसान बनना सबसे आसान काम होगा, क्योंकि किसी किताब में उसका एग्जाम जो नहीं होता। लेकिन उसे क्या पता था।

0: की जिंदगी सबसे कठिन परीक्षा उसी की लेती है। 12वीं की परीक्षा के दिन थे, घर में हल्का सा तनाव था। माँ हर सुबह दही चीनी खिलाती और पिता बिना बताए उसके बैग में एक छोटी सी पर्ची रख देते। हर दिन उस पर्ची पर अलग अलग शब्द लिखे होते थे, डरना मत, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, तुम खुद पर भरोसा रखना। मीरा उन पर्चियों को बहुत संभाल कर रखती। उसे लगता था कि पिता के शब्द किसी ताबीज से कम नहीं है। लेकिन जिंदगी ने उसी समय अपनी पहली छूट दी जब उसने सबसे कम उम्मीद की थी। एक दिन पिता स्कूल से लौटे ही नहीं। पहले कुछ लोग आए, फिर धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दी, उसके बाद घर में रोने की आवाजें भर गई। किसी ने बस इतना कहा, रास्ते में दिल का दौरा पड़ा। उसके बाद की बातें मीरा को कभी याद ही नहीं रही। उसे सिर्फ इतना याद है कि उस रात उसने पहली बार आसमान को बहुत देर तक देखा था, वही आसमान जिसे वो बचपन से अपना दोस्त मानती आई थी। उस रात उसे बिल्कुल खाली लगा, जैसे किसी ने उसका सबसे चमकता हुआ तारा हमेशा के लिए चुरा लिया हो। उस दिन के बाद घर वही रहा, लेकिन घर जैसा नहीं रहा। रसोई में माँ थी, मगर उनकी आवाज पहले जैसी नहीं है। बरामदे में वही कुर्सी थी, मगर अब उस पर कोई अखबार नहीं पढ़ता था। किताबें अब भी अलमारी में रखी थी, लेकिन उनमें से कोई कहानी बाहर नहीं आती थी। आंगन में हर सुबह धूप उतरती थी, पर मीरा ने उसे पकड़ना छोड़ दिया था। शायद उसे समझ आ गया था कि कुछ रोशनियां हथेलियों में नहीं ठहरती। एक शाम उसने पिता की पुरानी डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर मेरी बेटी कभी थक जाए तो उसे कहना, रास्ते कभी नहीं थकते, सिर्फ मुसाफिर बैठ जाते हैं, थोड़ा आराम करके फिर चल देते हैं। उसने उस पन्ने को अपने सीने से लगा लिया और बहुत देर तक रोती रही। उसे लगा जैसे उसकी आंखों में अब आंसू बचे ही नहीं होंगे। लेकिन इंसान की आंखें अजीब होती हैं, जब दिल दोबारा टूटता है तो फिर भर आती है।
1: दोस्तों, आप सुन रहे थे जहाँ आसमां खत्म नहीं होता, उस कहानी की पहली कड़ी जिसको सुनाया था, जिसको लिखा था श्रेया विश्वास ने। अब श्रेया, तुम्हारे विश्वास से ये कहानी तो हमारे साथियों ने सुनी है, अब बारी है कॉल की।
2: जी बिल्कुल, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ नेक्स्ट कॉल के लिए।
1: चलिए ठीक है।
2: हेलो।
3: हेलो
2: जी, हम किससे बात कर रहे हैं?
3: जी मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश बोल रहा हूँ।
2: अच्छा अविनाश जी, कैसे हैं आप?
3: जी बहुत बढ़िया है, और आज लगभग मैं 4-5 महीने के बाद जुड़ा हूँ, क्योंकि देखिए ऐसा है कि मैंने आकाशवाणी लखनऊ पे लाइव में बोल दिया था कि मैं अब अभी अंतराल दूंगा 4-5 महीने के, इसलिए नहीं जुड़ रहा था। लेकिन अब जब अपना स्वतंत्रता दिवस आया है, और आज मैंने सुना पहले कॉलर को आप गाने के लिए उत्साहित कर रहे थे,
2: जी, जी, जी।
3: वो गाने गाने के लिए मतलब शौकीन नहीं थे, तो मैंने सोचा चलिए इस मौके को मैं भुना लेता हूँ।
1: चलिए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए आपकी शुरुआत भी आकाशवाणी नजीबाबाद से हो रही है, और आप गीत के साथ इसका आगाज करेंगे, तो गाइए जो आपको चाहते हैं, जिस गाने को आप सुना।
3: 15 अगस्त भी आने वाला है, तो एक देशभक्ति गीत से शुरुआत करते हैं।
1: बिल्कुल।
3: मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जानी मन जानी मन जानी मन।

0: होंगे सब मगन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन जाने मन जाने मन जाने मन, इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे वदन, इसकी धरती वास्ते गगन, अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे। जी थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक
1: नहीं
0: हो गया
1: नहीं नहीं बिल्कुल मिस्टेक नहीं हुई आपने, जो हमने आज सुबह से गीत नहीं चलाया हमारे प्रोग्राम में जब से

0: वायर ने गीत नहीं चलाया, हमने ये रखा हुआ था कि जितने भी हमारे टैलेंटेड लिसनर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, और आपने बिल्कुल जस्टिफाई कर दिया है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और इतना अच्छा गाया आपने कि हम वाइब करने लग गए थे आपके साथ।
0: बिल्कुल, हम यहाँ बैठ के एंजॉय कर रहे थे। अच्छा ये बताइए आप करते क्या हैं?
2: जी मेरा देखिए जैसे लोगों के घरों का सुरक्षा का मतलब कि जैसे हमारे फौजी भाई जैसे हमारे देश की सुरक्षा करते हैं,
0: जी
2: हमारे लोगों के घरों का सुरक्षा मतलब कि ग्रिल वगैरह और जो लोहे की जालियां होते हैं वो इसका काम करते हैं, तो लोगों की
0: जी जी
2: सुरक्षा के दायित्व है
0: बहुत
2: जी।
0: खूबसूरत काम है ये, किसी के घर को बिल्कुल जोड़ कर
1: जोड़ के
0: रखना।
1: रख सुरक्षित रखना।
0: बिल्कुल
2: जी जी जी बिल्कुल। और मुझे एक मतलब कि आज आपका जो कार्यक्रम है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं जो अपने हुनर दिखा सकते हैं अपने अपने श्रोता जो हैं, तो मैं चाहता हूँ कि और भी श्रोता आगे जुड़े और ऐसे अपने अपने हुनर दिखाएं, आज आज जो
0: जी
2: मौका मिल रहा है आकाशवाणी नजीबाबाद को।
0: जी धन्यवाद, हमारी भी कोशिश रहती है कि हमारे लिसनर्स खुश रहें। आपका कोई नाम लेना चाहेंगे आप किसी साथी का?
2: जी बिल्कुल, नाम लेना चाहेंगे क्योंकि देखिए आज मैंने 4-5 महीने के बाद कहीं आकाशवाणी में जुड़े हैं, तो नाम लेते हैं। पहले तो हैं हमारे प्रेम सिंह सिसोदिया जी हैं, केसी सिंह जी हैं, भगवान सिंह जी हैं, और राकेश जी हैं, तनुश्री हैं, और रामबाबू शर्मा जी हैं, और पूनम जी हैं, और अभी जितने तमाम सुनने वाले हैं जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन सबके लिए रहेगा। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि आने वाले 15 अगस्त आने वाला है, तो हम तिरंगा तो फहराएंगे ही, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो छोटे वाले तिरंगा होते हैं वो फहरा देते हैं लेकिन बाद में इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं, तो इससे हम सबके देश के अपमान होता है। तो अपने तिरंगा अपने शान को इसको हम सबको सिमटना है, क्योंकि देखिए अगर कहीं ये पड़ा रहे तो हम सबको भी देखने में खराब लगता है और अपने देश का भी मतलब कि अपमान ऐसा महसूस होता है। तो इन सबकी जिम्मेदारी अपने अगर लगाएं तो अपनी जिम्मेदारी से उसको सुरक्षित रखें।
1: मुझे लगता है नंदनी अब हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अविनाश जी ने सब कह दिया।
0: बिल्कुल, हम कहेंगे जय हिंद,
2: जी बिल्कुल, जय हिंद, जय भारत।
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: बहुत दिन से बादल आ रहे हैं ना, लोग कहते हैं कि आज 2 इंच बारिश हुई, 3 इंच बारिश हुई, पर ये 2 इंच नापता कौन है? आज बात करते हैं छोटे से पर बहुत जरूरी यंत्र की, रेन गॉज यानी वर्षा मापक। आज बात करते हैं हमारे क्रैश कोर्स पैसा वसूल सेगमेंट में एक छोटे से पर बहुत जरूरी यंत्र की, रेन गॉज मतलब वर्षा मापक। तो ये रेन गॉज होता क्या है? देखिए रेन,
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे एहसास कर लोट पोट,
1: क्योंकि ये है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
3: ओफो, इतनी देर से खड़ी हूँ इस लाइन में, ये मेडिकल वाले की स्टोर है कि क्या, बैंक में आ गई क्या मैं? अरे भैया जल्दी कर लो, इतनी धूप हो रही है, कितनी देर से खड़ी हूँ मैं।
0: तो मैडम इतनी बड़ी लाइन दिख नहीं रही आपको, रुक जाओ थोड़ी देर।
3: अरे भैया मेरा काम बहुत जरूरी है।
0: हाँ तो आओ, पहले तुम ही आओ, बताओ क्या चाहिए।
3: नहीं नहीं नहीं, आप कर लीजिए, भीड़ जब खत्म होगी ना मैं तभी आऊंगी।
4: A few moments later.
0: हाँ मैडम बताओ कौन सी दवाई चाहिए।
3: थैंक गॉड। अरे भाई साहब वो क्या है ना।
0: हाँ लाओ पर्चा दो।
3: भाई साहब मेरे होने वाले पति ना डॉक्टर हैं, उनका ना प्रेम पत्र आया है, आप पढ़कर सुना देंगे प्लीज।
2: जी हाँ मजा आ गया।
5: कुछ नाम इतिहास के पन्नों पर लिखे जाते हैं और कुछ नाम इतिहास की दिशा बदल देते हैं। दोस्तों आज हम एक ऐसे ही नाम की कहानी लेकर आए हैं, एक ऐसे शख्सियत की जिसने अपने विचारों, कर्म और योगदान से आधुनिक भारत के निर्माण में अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा ये सेगमेंट नंदिनी, कुछ सवालों के साथ, कुछ इशारों के साथ और एक ऐसी कहानी के साथ जिसे जानना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। तो नंदिनी चलो देखते हैं हमारे सेगमेंट मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया में अभी हमारे साथ कौन जुड़े हैं। आपका नाम?
6: आराधना।
5: अच्छा आराधना जी, कैसी हैं आप?
6: अच्छे हैं, और आप लोग कैसे हैं?
5: जी हम भी बिल्कुल बढ़िया है, जिसमें हम लेकर आए हैं कहानियाँ उन वीरों की जिन्होंने हमारे भारत को आजादी दिलाने में कितनी मदद करी है। तो ऐसी एक कहानी आज हम लेकर आए हैं, उसके लिए हम आपको थोड़ा सा आपको इशारे देंगे, हिंट देंगे और आपको बताना होगा कि वो कौन हो सकते हैं। तो आप तैयार हैं?
6: जी हाँ बिल्कुल।
5: ठीक है तो आराधना जी आपका पहला हिंट है, इनका योगदान सिर्फ अपने समय तक सीमित नहीं रहा बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी इनका प्रभाव पड़ा। कोई अंदाजा कि कौन हो सकती हैं?
6: जी नहीं, ऐसे तो कोई अंदाजा नहीं हो रहा है।
5: हम बात कर रहे हैं त्रिपुर कुमारन की, एक ऐसे युवा स्वतंत्रता सेनानी की जिन्होंने तिरंगे को अपने प्राणों से भी अधिक महत्व दिया।
6: जी हाँ इनके बारे में सुना तो है पर इस तरह से समझ में नहीं आ रहा था।
5: जी कोई नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इनका नाम सुना है।
7: हेलो जी, हमारे साथ एक साथी जुड़ चुके हैं, बताइए क्या नाम है आपका?
8: जी मेरा नाम पंकज लोचन है।
7: जी पंकज जी क्या करते हैं आप?
8: मैं एक्टर हूँ, थिएटर में और फिल्म्स में, टेलीविजन में मैं एक्टिंग करता हूँ।
7: ये तो अपने आप में बड़ी बात है कि दूसरे कलाकारों को, दूसरे लोगों को अपने अंदर उतार कर आप उनकी जो छवि है वो अपनी एक्टिंग के जरिए दिखाते हैं। तो अगर मैं आपको पूछूं कि आपकी फेवरेट इंडिपेंडेंस या नेशनलिस्ट मूवी कौन सी है?
8: मूवी?
7: जी
8: जी मेरे को ना बॉर्डर बहुत अच्छी लगती है।
7: अच्छा तो कोई बॉर्डर का डायलॉग बोलेंगे आप?
8: नहीं डायलॉग तो नहीं, मैं उसका एक आपको सॉन्ग सुनाऊंगा।
7: जी अच्छा सुनाइए।
8: संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, कि चिट्ठी आती है पूछी जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है।
7: बहुत बहुत खूबसूरत, मतलब आप दिल से देखते हैं और दिल से महसूस करते हैं, वही मे भी आपकी एक्टिंग में निकल के आता है। अच्छा मैं आपसे पूछूंगी हमारे एक आजादी के बारे में, आप कितना जानते हैं कि एक हमारे फ्रीडम फाइटर हैं जिनको ज्यादा नहीं जानते लोग, आप क्या उनको जानते हैं या नहीं? पूछू
8: जी, पूछिए।
7: आप तिरुप्पुर कुमारन जी को जानते हैं?
8: जी मुझे माफ कीजिएगा, मैं नहीं, मैंने उनका नाम सुना है।
7: कोई बात नहीं, हम है ना, हम बता देते हैं आपको। तिरुप्पुर कुमारन जी उस समय तिरुपुरा के एरिया में ब्रिटिश ने असेंबलीज लगाने के लिए मना कर दिया, जैसे लोग जुड़ते थे, बात करते थे आजादी पर और जो भी उन पर अत्याचार हो था उस पर बिल्कुल बंद कर दिया था। उन्होंने प्रोटेस्ट लिया था इसके खिलाफ ब्रिटिश के, उन्हें खूब मार पड़ी, खूब उनको घायल किया। लेकिन उनकी बात है कि वो इतना घायल होने के बाद भी जब तिरंगा गिराया जा रहा था तो उन्होंने उसको पकड़ा और जमीन पर छूने नहीं दिया।
8: ओके
7: जी। और उनका नाम भी इसलिए पड़ा कोड़ी काथा कुमारन, मतलब जो फ्लैग की रक्षा करे, जो देश का मान बढ़ाए।
8: थैंक यू सो मच आपने मुझे इस जानकारी को साझा करने के लिए, क्योंकि मुझे उनके बारे में नहीं पता।
7: तो हम आपसे कहते हैं कि आप आगे तीन को बताइए, उनसे कहिए आगे तीन को बताएं।
8: ओके थैंक यू।
7: अच्छा आप बताइए आपका फेवरेट फ्रीडम फाइटर कौन है?
8: पर्सनली फेवरेट जैसा फ्रीडम फाइटर में है मुझे लगता है कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि सब अपने आप में इतने बड़े देशभक्त रहे हैं
7: जी।
8: उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी लगा दी, तो मुझे लगता है भगत सिंह और आजाद जी, सुखदेव और भी जितने रहे हैं, मतलब जिनका नाम मुझे नहीं पता है ना, जैसे कि अभी इन्हीं का नहीं पता था, उनकी वजह से हम आज आजाद।
7: बहुत खूबसूरत बात कही है आपने, मतलब देशभक्ति का कोई कंपैरिजन नहीं है कि इनकी कम है इनकी ज्यादा है।
8: बिल्कुल बिल्कुल।
7: चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।
8: थैंक यू सो मच।
7: तो देखिए हमारे साथ एक नए साथी जुड़ गए हैं। हेलो, क्या नाम है आपका?
9: अनुप अंथवाल।
7: अनुप जी क्या करते हैं आप?
9: मैं म्यूजिक टीचर हूँ, शिक्षक हूँ।
7: पहले बताइए आपका कौन सा फेवरेट फ्रीडम फाइटर है?
9: भगत सिंह।
7: भगत सिंह जी, क्या अच्छा लगता है उनके बारे में आपको?
9: बहुत कम उम्र में देशभक्ति की भावना होना बहुत बड़ी बात है,
7: और देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर
9: जान कुर्बान करना जी।
7: अच्छा चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, एक फ्रीडम फाइटर है तमिलनाडु के जिनको कहा जाता है कोड़ी काथा कुमारन, उनके बारे में जानते हैं आप?
9: क्षमा चाहूंगा मैं जानता नहीं।
7: चलिए कोई बात नहीं, हमारा तो प्रोग्राम है ही इसलिए कि लोगों को इन्फॉर्मेट करें। तो बेसिकली ये थे तिरुप्पुर कुमारन, तमिलनाडु के एक क्रांतिकारी जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जब इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ प्रोटेस्ट किया तो उन्होंने खूब मारा इनको, और उस चोटिल हालत में भी इन्होंने देश के तिरंगे को जमीन पे गिरने नहीं दिया। तो इनका नाम भी है कोड़ी काथा कुमारन, मतलब देश के झंडे की रक्षा करने वाला, देश की रक्षा करने वाला। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए,
9: धन्यवाद।
7: चलिए ठीक है, धन्यवाद।
10: दोस्तों तिरुप्पुर कुमारन तमिलनाडु के एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने कई सारे आंदोलनों में हिस्सा लिया, स्वदेशी और एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज से भी जुड़े। उन्होंने युवाओं को संगठित करने में और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन में भाग लेने में सक्रिय भूमिका निभाई।
0: तो देखिए हमारे जो टी कुमारन जी हैं, तिरुप्पुर कुमारन जी हैं, इनके बारे में आपको बताया, और साथ ही जो साथी हमारे साथ जुड़े थे उनको भी बताया। अब हम बारी बात करते हैं किस बारे में श्रेया?
3: हमारे अगले कॉलर से बात करने की बारी है।
0: बिल्कुल, हमारे कॉलर इंतजार कर रहे हैं तो हम इन्हें ले लेते हैं।
3: हेलो।
11: हेलो, नमस्कार मैम।
3: नमस्कार सर, कैसे हैं आप?
11: बहुत अच्छे मैम, दुआएं हैं आपकी, और जानना चाहूंगा कि आप लोग कैसे हैं सभी आकाशवाणी में?
3: जी हम बहुत बढ़िया हैं, और जब लिसनर से बात करते हैं तो हम और भी बड़े हो जाते हैं।
11: जी जी जी हाँ, हमारा और मतलब श्रोताओं का और आपका तो ये मान लो के नाता बहुत ही मतलब
3: जी
11: अटूट नाता है मैम।
0: ऐसा नाता है जिसे स्पेशल फ्रेंडशिप डे की जरूरत नहीं है, हमारे लिए सारा वक्त एक फ्रेंडशिप डे, एक फ्रेंडशिप मोमेंट के जैसा है।
11: जी जी जी जी जी बिल्कुल जी जी।
3: अच्छा अपने फ्रेंड का नाम जानना चाहेंगे हम?
11: मैं जिला मुरादाबाद, जिला मुरादाबाद ग्राम बीबीपुर से मकसूद हुसैन बात कर रहा हूँ मैम।
3: अच्छा हुसैन जी, तो आप हमें ये बताइए कि आपके फेवरेट फ्रीडम फाइटर कौन है?
11: फिल्मी कलाकार?
3: नहीं नहीं, फ्रीडम फाइटर,
0: स्वतंत्रता सेनानी जैसे महात्मा गांधी जी हैं, भगत सिंह जी हैं, आपको सबसे ज्यादा कौन प्रेरित करता है?
11: सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जी हैं,
0: अच्छा।
11: और बहादुरलाल शास्त्री जी हैं, सभी अच्छे लगते हैं मुझे तो। सभी सभी ने देश के लिए जो है जान अपनी जो है बहुत मतलब मेहनत की है देश आजाद कराने में।
0: अच्छा तो जैसे कि इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, हम आपसे कहेंगे कि पहले तो हम पूछेंगे कि आप गाना गाना चाहेंगे, क्योंकि हमारा तो प्लेटफॉर्म आज ओपन है, जो भी हमारे लिसनर गाना गाना चाहें उनके लिए।
11: मैम देख के गुनगुना तो मैं लेता हूँ, लेकिन मैं आपसे बताऊँ, मैं अभी आकाशवाणी पे मेरी जो है की नहीं खुली मैम, कभी आकाशवाणी तो मैं नहीं गुनगुनाया, अकेले में तो मैं गुनगुना लेता हूँ मैम।
3: तो समझ लीजिए आप अकेले बैठे हैं, गुनगुना लीजिए थोड़ा सा।
11: मैम थोड़ा सा वही लगता है, थोड़ा सा घबराहट सी पैदा होती है मैम।
3: अरे घबराने वाली कौन सी बात है, सब दोस्त लोग बैठे हैं आपके, सबको सुन रहे हैं आपको, थोड़ा गुनगुना दीजिए।
11: पूरे भारत में आकाशवाणी नजीबाबाद जो है इसकी आवाज जाती है, सब लोग ये करेंगे क्या बेसुरा आदमी है ये
3: दारिया। जी जी बेसुरे होने की कोई बात नहीं, हमारा तो प्लेटफॉर्म आज सबके लिए है, दिल से जो गाएगा उसका सुर हमेशा किसी न किसी के दिल तक पहुंच जाएगा।
11: कहां जाते हो रुक जाओ, तुम्हें मेरी कसम देखो, मेरे बिन चल नहीं आओगे जानम, दो कदम देखो। ठीक मैम?
3: जी जी बढ़िया, दो कदम नहीं सात जन्म चलेंगी आपकी जानम आपके साथ। तो धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, कोई नाम लेना चाहेंगे आप?
11: हाँ मेरे साथ में डॉक्टर अख्तर हुसैन, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, रजा हुसैन, गफ्फार हाजी जी है, मुकेश भाई है, बख्तार फरीदी, निजामुद्दीन, रऊफ भाई, आसिफ अली चौधरी, राशिद अली अंसारी और सभी लोग सुनने वाले मैम।
3: चलिए बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए,
12: धन्यवाद।
3: तो श्रेया एक बात है, देखो अभी पीछे कुछ ऐसा हुआ था जो हमारे श्रोता सुन रहे होंगे कि ये क्या हो गया,
12: बिल्कुल सोच रहे होंगे, लेकिन आपको बता देते हैं आज मंडे है और हमने
3: ये
12: बोला
3: ये भी एक उसी का पार्ट
12: ये भी उसका पार्ट है, बट आज मंडे और हमने कहा था कि सब कुछ आज स्पेशल होगा।
3: तो देखिए होता क्या है कि कोई गलती हो जाती है तो लोग घबरा जाते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया, हम क्या करें। तो जैसे इनका स्लिप ऑफ टंग हुआ था या थोड़ी देर पहले जब हम क्रैश कोर्स चला रहे थे तो एक ट्रिक हमने रखी थी कि अक्सर सुनने में आता है कि लोगों में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, तो एक ये टिप है आपके लिए कि अगर गलती हो जाए तो फिर स्क्रैच से शुरू करें, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है।
12: बिल्कुल नंदिनी, ये जो तुमने बात बोली है ये लागू भी कर लेना, ठीक है?
3: ऐसा करते हैं अभी लागू कर लेते हैं, जो क्रैश कोर्स हमारा अधूरा रह गया था वो हम शुरू करते हैं। बहुत दिन से बादल आ रहे हैं ना, लोग कहते हैं कि आज 2 इंच बारिश हुई, 3 इंच बारिश हुई, पर ये 2 इंच नापता कौन है? आज बात करते हैं हमारे क्रैश कोर्स पैसा वसूल सेगमेंट में एक छोटे से पर बहुत जरूरी यंत्र की, रेन गॉज, मतलब वर्षा मापक। तो ये रेन गॉज होता क्या है, देखिए रेन गॉज एक बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा डिवाइस है। इसका काम सिर्फ एक है कि एक निश्चित समय में कितनी बारिश हुई उसकी गहराई नापता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं प्रेसिपिटेशन मेजरमेंट। अगर आम भाषा में कहा जाए तो जमीन पर बारिश का पानी कितना जमा हुआ है उसको mm या इंच में बताना। अब ये काम कैसे करता है, सबसे कॉमन जो इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं साइमंस रेन गॉज या ऑर्डिनरी रेन गॉज। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, फनल, वही जिससे आप तेल पलटते हैं बिल्कुल वैसी ही, इसका जितना बड़ा मुंह का एरिया होगा उतना ज्यादा पानी कलेक्ट होगा, और इसका स्टैंडर्ड साइज होता है 127 मिलीमीटर यानी कि 5 इंच का डायमीटर। फिर दूसरा पार्ट होता है कलेक्टर बॉटल, फनल के नीचे एक छोटी सी बॉटल होती है जिसमें सारा पानी जाकर जमा हो जाता है, और इसका तीसरा पार्ट होता है मेजरिंग सिलेंडर या मेजरिंग ग्लास भी उसको कहते हैं। इसके थ्रू वो जो पानी कलेक्टर बॉटल में आता है वो एक पतली सी ग्लास में डालकर नापते हैं, और ग्लास पतली इतनी होती है कि छोटी से छोटी बारिश अच्छे से दिख जाए। पार्ट्स तो हमने सुन लिए लेकिन इसका प्रिंसिपल क्या है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ कि मान लीजिए 1 मिलीमीटर बारिश हुई तो इसका मतलब है 1 स्क्वायर मीटर जमीन पर 1 लीटर पानी गिरा। रेन गॉज यही नापता है बिना ये देखे कि पानी बहकर कहाँ गया, सिर्फ गिरने वाली गहराई के थ्रू बारिश का पता चलता है। अब प्रिंसिपल पता चल गया, पार्ट्स पता चल गए, लेकिन इसको लगाएं कहाँ, घर पे? नहीं, रेन गॉज को लगाने के भी रूल्स हैं, वरना नाप गलत हो जाएगा। रूल नंबर 1, खुले मैदान में लगे, आस पास कोई पेड़ या बिल्डिंग ना हो, क्योंकि छत से पानी टपकेगा या बिल्डिंग से पानी टपकेगा तो ज्यादा पानी गिर जाएगा, नाप ऑटोमेटिकली गड़बड़ हो जाएगा। रूल नंबर 2, जमीन से लगभग 30 सेंटीमीटर या 1 फीट की ऊंचाई पर लगे, बिल्कुल लेवल जमीन पर भी ना हो, क्योंकि अगर पानी की बूंद गिरेगी तो उसकी छींटे वापस आ सकती हैं, फिर नाप गलत हो जाएगा। एंड रूल नंबर 3, हर दिन सुबह 8:30 बजे रीडिंग ली जाती है। तो दोस्तों अगली बार जब न्यूज में सुने कि शहर में 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, तो समझ जाइए कि किसका काम है, ऑफ कोर्स रेन गॉज का काम है।
0: ये थी हमारी क्रैश कोर्स पैसा वसूल में, पैसा वसूल क्लास ऑन रेन गॉज। चलिए प्रोग्राम को बढ़ाते हैं अब आगे।
12: हमने किया था आपसे एक सवाल हमारे सेगमेंट भूजो तो जाने में, जो सवाल था कि सुपरहिट मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे किस वर्ष रिलीज हुई थी। और जहां तक नजरिंग में दिख रहा है कि जवाब आ गए हैं, तो क्यों ना उनके नाम शामिल कर ले अपने प्रोग्राम में।
0: बिल्कुल, पहले जवाब तो बता देते हैं। सही जवाब देने वाले हमारे साथी हैं, नहीं साथी हम बताएंगे, पहले जवाब बता देते
12: हैं। ये भी स्लिप ऑफ टंग है दोस्तों।
0: दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे रिलीज हुई थी 1995 में, जो गोल्डन ईयर था, मतलब इतनी बड़ी सुपरहिट उससे पहले शायद हुई हो,
12: हुई होगी
0: उस दौर की, शाहरुख की पहली इतनी सुपरहिट,
12: शाहरुख की पहली थी।
0: तो सही जवाब देने वाले हमारे साथी हैं धर्मेंद्र छीपा, प्रजाजी नावकर, नंद कुमार ठाकुर, हीरामणि वर्मा, राहुल पाल, सुदर्शन शाह, नवाबुद्दीन, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद वक्कार फरीदी, दिनेश वर्मा, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, उमेश कुमार गौड़, गंगा सिंह रावत।
12: साथ है जॉन डी कैस्ट्रो, मोहम्मद रफीक पवार और धूमेंद्र नेतम। तो दोस्तों ये तो थे सही जवाब देने वालों के नाम। अब मुझे लगता है
0: अभी फिनिश नहीं हुआ, लास्ट कॉल की गुंजाइश बाकी है। हमारे जो श्रोता हैं, देखते हैं कौन है। हेलो।
13: हाँ जी हेलो।
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका?
13: जी नमस्कार जी, मैं ग्राम द पोस्ट राहुल मंगली से आचार्य सत्यवीर सिंह बोल रहा था जी।
0: सत्यवीर जी, आपका तो नाम ही सत्य है आपके नाम में, तो सच बोलते हैं आप हमेशा?
13: हाँ जी, कोशिश करते हैं सच बोलने की और बोलते ही हैं।
12: कोशिश करना भी बहुत बड़ी बात होती
0: बहुत
12: है,
0: बड़ी बात होती है।
12: तो अच्छा सत्य जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आज हमारा मंडे है, हम स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं कि हम अपने लिसनर्स को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो आपको गाने का शौक है?
13: हाँ जी, देखिए मैंने तो स्कूल में पढ़ाया बच्चों को, हम लोग तो गाने नाटक सब सिखाते हैं।
0: तो आज कुछ हो जाए हमारे
13: लिए? हाँ जी, मैं तो बहुत गा सकता हूँ जी, बताइए क्या सुनना चाहते हैं आप?
12: तो चलिए आज हम भी कुछ सीखते हैं आपसे।
13: ठीक है जी, मैं कुछ देशभक्ति लाइन है, 15 अगस्त भी आ रहा है, आपको गा करके सुनाता हूँ
12: जी। बिल्कुल।
13: मन कहता है इस धरती पर हो मेरा सतबार जन्म, फांसी का फंदा मैं चूमू कहकर वंदे मातरम, और जब जब आते पूज्य पर्व

0: फंदा जब तक था कुछ दम में दम, फांसी का फंदा मैं चूमू कहकर वंदे मातरम। जय हिंद।
1: जय हिंद। और बताइए क्या करते हैं आप?
0: हाँ जी, मैंने बताया मैं शिशु मंदिर में प्रधानाचार्य रहा हूँ जी कई वर्षों तक।
1: अच्छा, आप क्योंकि और... प्रधानाचार्य रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसी मेमोरी होगी, कोई नहीं कई सारी होंगी जो आप हमें शेयर करना चाहेंगे किसी बच्चे की।
0: जी बहुत सारी मेमोरी है। देखिए एक बार ऐसा हुआ, एक हमारे हिंदी के आचार्य जी नहीं आए तो मुझे हिंदी का पीरियड पढ़ाना पड़ गया। और मैंने कहा भाई बच्चों आज मैं आपको कविता लिखनी सिखाता हूँ। तो मैंने कहा भाई आप एक जैसी तुक जैसे शब्द लिख लीजिए, जैसे हीर तीर नीर शीर, और शब्दों को हम आपको जोड़ना सिखाएंगे। तो बच्चों ने लिख लिए और एक छोटी सी लड़की उठकर क्या ही बोली, आचार्य जी मैंने दो लाइन लिखी है, आप बस डांटना मत मारना मत, मैं कैसा बताओ
1: जी।
0: तो वो बोली देखो मैंने लिखा है, आते हैं जाते हैं खाते हैं खीर, इसलिए आपका नाम रखा गया है सत्यवीर।
1: कितनी प्यारी बात है, मतलब छोटे छोटे बच्चे कई बार ऐसी मेमोरी क्रिएट कर जाते हैं जो बिल्कुल बिल्कुल छू जाती है।
0: और मैं कुछ नाम लेना चाहता हूँ।
1: जी जी बिल्कुल लीजिए।
0: ये गदरौना से हमारे बड़े पुराने रेडियो के लिसनर हैं मदन गिरी जी और प्रकाश चंद हैं और राशिद भाई हैं और ये आसिफ चौधरी, अमित दीवान और अनिल बिनोचा और प्यारी सी बहन हमारी निश्वास सुनकी, ये सब आपके साथ सुन रहे हैं। और बड़ा अच्छा आपने ये मेकर्स ऑफ इंडिया जो शुरू किया मॉडल,
1: जी जी,
0: और आज पी कुमार के विषय में बातचीत की, हिस्ट्री में हमने भी थोड़ा बहुत उनके विषय में पढ़ा था कि भाई ध्वज लेकर के उन्होंने उसको नीचे नहीं गिरने दिया था। तो एक मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि अभी सैटरडे को ना दुर्गा भाभी जी के विषय में बातचीत हुई थी इसी क्रम में, लेकिन उनके विषय में पूरी बातचीत नहीं बताएगी कि उनको भाई उनने क्या किया, उनके पति कैसे शहीद हो गए और किस प्रकार उन्होंने मदद की थी। केवल ये बता दिया कि उन्होंने भगत सिंह को बचाया था, उनके हस्बैंड बन गए थे, रेल में उनको ले गई थी। लेकिन पूरी कहानी अगर बताएं आप, जिस जैसे टी कुमार के विषय में आज बताया तो बड़ा अच्छा रहेगा और लोगों को जानकारी भी मिलेगी, क्योंकि हमारे ऐसे अननोन हीरो हैं जिनको हम नहीं जानते या बहुत से लोग नहीं जानते हैं।
1: ये बहुत अच्छा चीज की आपने जी, क्योंकि हमारे पास जो है ना कई बार तारीफ आती है लेकिन क्रिटिसिज्म नहीं आता, लेकिन हमें पता चले कि हम कहाँ गलती करें तो उसे बेहतर किया जा सकता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: देखो कल आपका पत्र मिला भी ये लिखा था कि दुर्गा भाभी के विषय में अगर पूरी जानकारी देते कि भगवती चरण उनके जो हस्बैंड थे वो किस प्रकार शहीद हुए तो बहुत अच्छा लगता सुनने में।
1: चलिए हम आगे से कोशिश करेंगे कि आपको कोई शिकायत ना हो। और प्रधानाचार्य जी हैं, ये बहुत अच्छी चीज है कि हमारे पास कॉल आई, हमें पता चल गया।
2: जैसे हमने कहा था नंदनी कि हम सीखेंगे इनसे, तो इन्होंने बहुत अच्छी सीख दे दी हमें और सिखा भी दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सत्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: धन्यवाद जी।
1: धन्यवाद
2: धन्यवाद।
1: तो देखो श्रेया, हमारे साथ इतने सारे साथी जुड़े, हमें इतनी सारी सारी बात बताई। अब मैं तुम्हें एक चांस दूंगी, क्या तुम कोई गाना गाना चाहती हो?
2: नहीं नहीं, तुमने मुझे चांस दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपकी आभारी रहूंगी, लेकिन मैं गा नहीं पाऊंगी। तुम गाना चाहती हो?
1: देखो गाना वही वाली स्थिति है, बास्तुरु में सिंगर वाला हिसाब है, तो गा मैं भी अच्छा नहीं सकती, तो एक काम करते मिलके कोशिश करते हैं कुछ।
2: तुम शुरू करो, मैं पीछे पीछे आती हूँ तुम्हारे।
1: साथिया तूने क्या किया, बेलिया ये तूने क्या किया। देखो इससे आगे मैं भी नहीं जा सकती।
2: लेकिन तुम अच्छा गा रही थी, तुम गा सकती थी।
1: नहीं नहीं, मैं इंडियन टैलेंट के कंपटीशन में मैं सिंगिंग में नहीं जा सकती, मैं जरूर जानती हूँ कि मैं बाकी चीजों में जा सकती हूँ।
2: चलो ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे लग रहा है कि तुम जो अपना टैलेंट है वो छुपा के रख रही हो, वो बाथरूम सिंगर वाला टैग ना तुम हटा सकती हो। वैसे
1: नहीं, मैं बाकी चीजों में टैलेंट दिखा देती हूँ। तो श्रेया तुम बताओ, इस इंडिपेंडेंस डे क्योंकि आ रहा है तो कोई मैसेज देना चाहोगे हमारे श्रोताओं को?
2: मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें एक्चुअली इंडिपेंडेंस डे अगर हम सच में मनाना चाहते हैं तो हमें एक तो कूड़ा कचरा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, स्वच्छ इंडिया स्वच्छ सक्सेसफुल रहेगा इंडिया, मैं यही मानती हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि देखिए इंडिपेंडेंस डे आ रहा है और वाइब अपने आप चेंज हो जाती है, लाइक पूरा वीक वाइब चेंज हो जाती है। हम खुद मेरी प्लेलिस्ट में खुद हम इंडिपेंडेंस सॉन्ग सुनने लग जाते हैं और मूवी देखने लग जाते हैं, तो उसकी वाइब ना वो अलग ही रहती है।
1: बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता जुड़े भी थे जिन्होंने कहा था कि छोटे छोटे जो तिरंगे लेते हैं, अगर आप ले रहे हैं तो जरूर लीजिए शौक से, लेकिन उसका ख्याल रखिए।
2: जी बिल्कुल,
1: सम्मान के साथ, छोटा है बड़ा तिरंगा हमारा मान है, राष्ट्रीय सम्मान है ना। तो देखो श्रेया, अब हमारा बातों बातों में प्रोग्राम यूं ही चला गया, हमारे इतने सारे कॉलर्स भी आ गए, तो ऐसा करते हैं अब समय की मयार का ध्यान रखते हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे अलविदा लेते हैं।
2: चलो ठीक ठीक है, जैसे तुम कहो। तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम, हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लग रहे हैं आप हमें खत के जरिए बता सकते हैं। खत के लिए नोट करना होगा आपको हमारा पता, हमारा पता है कार्यक्रम युवाणी अनुभाग द्वारा, केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाद, पिन कोड 246763।
1: हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो नंबर हमने आपको अभी दिया था 9457078288। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, आसानी के लिए हमारा हैंडल एक ही है फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर, वो है आकाशवाणी नजीबाबाद। आप जाइए सर्च कीजिए, हमारी जो भी अपडेट्स है, हमारे जो भी प्रोग्राम्स हैं जो अपलोडेड हैं, आप जाइए लाइक सब्सक्राइब शेयर और फॉलो कीजिए, ढेर सारा जैसे भी प्यार होता है वो हमें दीजिए, और दीजिए अपनी साथी नंदिनी महेश्वरी को
2: और श्रेया विश्वास को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। संध्या के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ। संसद ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। इस विधेयक के माध्यम से भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन किया गया है। संसद ने बैंककार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसका उद्देश्य वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि यह विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बैंककार बहिस्साक्ष्य अधिनियम 1891 में बनाया गया था, जब बैंकिंग प्रणाली पूरी तरह से कागजी थी। लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 बिना चर्चा के पारित हो गया। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुए कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य सलाहकार समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
2: छात्र आंदोलन पर पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूरी तरह से सुनेंगे

0: अमरो मध्य को फिर से नहीं खोला जाएगा। श्री बघाई ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की सैन्य कार्रवाई के कारण होर्मुज जलडमरो मध्य को बंद किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है जो नागरिकों को विकसित भारत निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण यह अभियान हर देशभक्ति के लिए भावुक बन गया है। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और हरघरतिरंगा.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप से पहले इसकी संरचना में बदलाव किए गए हैं। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। समय शाम के 6:05 हो रहे हैं। आप किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया हिमांशु रंजन की राम राम। और सुनाइए किसान भाइयों, कैसे हाल चाल हैं आपके? भैया देखो, हाल चाल तो आपके ठीक होंगे और भैया आपकी खेती किसानी भी अच्छी चल रही होगी। साथ ही भैया, जो आपने अन्य व्यवसाय कर रखे हैं, चाहे भैया वो डेयरी व्यवसाय हो, कुक्कुट पालन हो, मधुमक्खी पालन हो, या भैया हो मछली पालन, भैया सब ठीक ठाक चल रहे होंगे भैया? और खासकर अगर बात करें बरसात के मौसम में, तो हमें कुछ विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है भैया, चाहे हमने कोई सा भी जो व्यवसाय है वो कर रखा है। और किसान भाइयों, अगर हम मछली पालन की यहाँ पर बात करें, क्योंकि भैया बरसात का मौसम चल रहा है और भैया देखो, हमें अपने मछलियों की यानी कि जो हमारे तालाब हैं उसकी सुरक्षा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि भैयो मछली पालन करने वाले किसान अक्सर मछलियों की वृद्धि पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन भैया तालाब की सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। वास्तव में तालाब की सुरक्षा केवल मछलियों की चोरी से बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें तालाब की मेड़, पानी की गुणवत्ता, जल निकास की व्यवस्था, मछलियों को नुकसान पहुँचाने वाले जो भैया जीव जंतु हैं उनसे बचाव, बीमारी की रोकथाम, जहरीले पदार्थों से सुरक्षा, और साथ ही भैया बाढ़ और वर्षा के पानी से होने वाले नुकसान से बचाव तथा तालाब के आसपास की स्वच्छता भी शामिल है। यदि तालाब हमारा सुरक्षित रहेगा तो मछलियां स्वस्थ रहेंगी, उनका विकास अच्छा होगा और किसानों को उत्पादन तथा आय में अधिक लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहले किसान भाइयों को यह समझना चाहिए कि जिस स्थान पर भैया तालाब बनाया गया है उसकी सुरक्षा तालाब बनने के समय से ही शुरू हो जाती है। तालाब की मेड़ मजबूत, ऊंची और पर्याप्त चौड़ी होनी चाहिए। यदि मेड़ कमजोर होगी तो बरसात के समय भैया पानी का जो दबाव है उसके बढ़ने से क्या होगा, कटाव होगा और तालाब का पानी बाहर निकल सकता है। इससे मछलियों के बाहर निकलने के साथ साथ तालाब की मिट्टी भी बह सकती है, इसलिए समय समय पर मेड़ का निरीक्षण जरूर करते रहें हमारे किसान भाई। और जहां मेड़ में दरार या कोई सुराग, धसाव या कोई कटाव दिखाई दे, वहां तुरंत हमें मिट्टी डालकर मरम्मत कर देनी चाहिए। मेड़ की मरम्मत के लिए चिकनी या अच्छी तरह दबने वाली मिट्टी का प्रयोग हमारे किसान भाई कर सकते हैं और मिट्टी को परत दर परत अच्छी तरह से दबा देना चाहिए। किसान भाइयों, तालाब की मेड़ में चूहे, केकड़े या अन्य जीव सुरंग बना सकते हैं। इन सुरंगों के कारण पानी का रिसाव बढ़ सकता है और धीरे धीरे मेड़ हमारी कमजोर हो सकती है, इसलिए मेड़ पर बने

0: की नियमित जांच करनी चाहिए। यदि बिल दिखाई दें तो उन्हें बंद करना चाहिए और आवश्यकता के अनुसार संबंधित कृषि या मत्स्य विभाग की भैया सलाह लेकर चूहों तथा अन्य नुकसान पहुंचाने वाले जीवों का नियंत्रण करना चाहिए। किसान भाइयों, हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि तालाब के किनारे जहरीले रसायनों का अंधाधुंध हमें प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये रसायन पानी में पहुंचकर मछलियों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तालाब की ऊंचाई और चारों ओर की मेड़ ऐसी होनी चाहिए कि तेज बारिश के समय बाहर का गंदा पानी सीधे तालाब में ना आए और खेतों से बहकर आने वाले पानी अपने साथ मिट्टी, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और खरपतवार नाशी अपने साथ ना ले आए। यदि ऐसा पानी तालाब में पहुंचता है तो पानी की गुणवत्ता खराब हो सकती है और मछलियों की मृत्यु भी हो सकती है। किसान भाइयों, विशेष रूप से अगस्त जैसे भैया यो वर्षा वाला समय चल रहा है, वर्षा का महीना चल रहा है, तो तालाब की सुरक्षा पर अतिरिक्त हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। भारी बारिश के कारण पानी तेजी से बढ़ सकता है, इसलिए किसान भाइयों को तालाब की मेड़, जल निकास, साथ ही भैया इनलेट और आउटलेट की जांच अवश्य करनी चाहिए। यदि तालाब का पानी मेड़ के ऊपर से बहने लगे तो तुरंत ही सुरक्षित निकास व्यवस्था उसकी करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, नियमित निगरानी, समय पर निर्णय और वैज्ञानिक सलाह के आधार पर किया गया प्रबंधन ही सुरक्षित और सफल मछली पालन की कुंजी है। तो किसान भाइयों, ये तो बात आप समझ गए होंगे कि भैया मछली पालन में तालाब की सुरक्षा इस समय हमारे किसान भाई कैसे कर सकते हैं। और भैया एक जरूरी काम हमें भी करना है, वो है भैया कार्यक्रम में लेना है एक विराम छोटा सा। तो आइए सुनते हैं कुछ ही जरूरी संदेश।
1: आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रत्येक मंगलवार को
2: शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में सुनिए
1: गुणवत्ता युक्त बासमती धान उत्पादन हेतु
2: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा
1: साप्ताहिक आयोजित कार्यक्रम।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: अभी हमारे किसान भाइयों ने सुने कुछ ही जरूरी संदेश, और अब चलते हैं भैया फिर से खेती किसानी की ओर, क्योंकि भैया ये हमारा खेती किसानी का कार्यक्रम है। और इस समय हमारे किसान भाइयों ने भैया खरीफ की फसलें अपने खेतों में लगा दी होंगी, क्योंकि खरीफ का मौसम चल रहा है। और अगर खरीफ सीजन की बात करें तो हमारे किसान भाइयों ने धान की, मक्का, बाजरा, अरहर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, साथ ही भैया कुछ सब्जियों की खेती करते हैं हमारे किसान भाई, तो भैया उन्होंने सब्जियों की करी होगी, या कुछ भैया अन्य फसलों की भी खेती करते हैं, तो किसान भाइयों ने अपनी जो फसल है भैया वो लगा ली होगी। और अगर भैया हम बात करें बरसात के दिनों में, तो भैया इस समय कीटों का आक्रमण हमारी फसलों पर अधिक हो जाता है। कीट नियंत्रण के लिए भैया सबसे पहले हमारे किसान भाई ये बात जान ले कि हमें सबसे पहले कीटों की पहचान करनी है कि वो भैया कौन सा कीट है और हमारी फसल में भैया उसकी जो तादाद है वो कितनी है। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे कीट कौन सा है, किस तरह से ये फसल में नुकसान पहुंचा रहा है और इसकी संख्या कितनी है। तो इसके लिए हमारे किसान भाई भैया इसका समय समय पर निरीक्षण करते रहे मैं। और भैया देखो आजकल तो बहुत सारी ऐसी तकनीक आ गई हैं जिसके द्वारा हमारे किसान भाई इसकी पहचान कर सके हैं। तो इसके लिए भैया एक सोलर ट्रैप करके आता है, जिसको हम लाइट ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। तो इसके द्वारा भैया कीट नियंत्रण हमारे किसान भाई कर सकते हैं, जैसे कि इसके नाम से भी स्पष्ट है लाइट ट्रैप, यानी कि भैया ये एक सोलर से चलने वाला, भैया इसके अंदर बैटरी लगी होती है, वो धूप से चार्ज होती है, और भैया जब रात हो जाती है तो क्या होता है कि वो खेतों में उजाला सा करता है, और भैया उजाला जब वो करता है तो कीट उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और भैया उसमें फंस जाते हैं। तो सबसे पहले भैया हम किसान भाइयों को बता दें कि सोलर ट्रैप का उपयोग कीटों की निगरानी और नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाई कर सकते हैं। यह खासकर उन रात्रि चरों कीटों के लिए उपयोगी है जो प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। इसे रासायनिक कीटनाशक का सीधा विकल्प न मानकर भैया आईपीएम, जिसे हम एकीकृत कीट प्रबंधन के तहत भैया जानते हैं, एक हिस्से में भैया इसको अपना सकते हैं, ये प्रभावी तरीका है। भाइयों खरीफ फसलों में खरीफ फसलों की बात करें तो इसमें भैया विभिन्न फसलें होती हैं, अलग अलग प्रकार के कीट लगते हैं, और इनमें कई कीटों के वयस्क होते हैं वो प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। सोलर ट्रैप दिन के समय में भैया सोलर पैनल जो होता है वो सूर्य की रोशनी से बैटरी चार्ज करता है, और रात में उसी ऊर्जा से बल्ब या LED प्रकाश देता है। प्रकाश से आकर्षित होकर कीट ट्रैप के पास आते हैं और संग्रह पात्र में फंस जाते हैं। इससे खेत में जो प्रजनन करने वाले वयस्क कीटों की संख्या कम होने लगती है, क्योंकि भैया इसकी सहायता से हम उन कीटों को पकड़ लेते हैं। किसान भाई सोलर ट्रैप को खेत के ऐसे स्थान पर लगाएं जहां रात में आसपास की दूसरी तेज रोशनी ना आ रही हो। इससे मजबूत डंडे या स्टैंड पर इस प्रकार लगाएं कि प्रकाश फसल के ऊपर और आसपास अच्छी तरह दिखाई दे। ट्रैप की ऊंचाई फसल और उपकरण के डिजाइन के अनुसार रखें तथा निर्माता द्वारा दी गई स्थापना संबंधी सलाह का हमारे किसान भाई पालन कर सकते हैं। सोलर ट्रैप का एक लाभ यह भी है कि इसे चलाने के लिए सामान्य बिजली की आवश्यकता नहीं होती, ये सूर्य की रोशनी से बैटरी चार्ज होती है इसकी, इसलिए दूर स्थित खेतों में भी हमारे किसान भाई इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही किसान भाई ध्यान रखें कि ट्रैप में आने वाला हर कीट हानिकारक नहीं होता, कुछ लाभकारी कीट भी प्रकाश की ओर आकर्षित हो जाते हैं, इसलिए ट्रैप में पकड़े गए कीटों की पहचान जरूरी है। बिना पहचान के केवल कीटों की संख्या देखकर कीटनाशक का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। यदि किसान भाइयों को इसकी पहचान नहीं हो रही है तो कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग या कृषि विशेषज्ञ को कीटों का फोटो दिखाकर भी भैया इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो भैया हम तो अपने किसान भैया से यही कहेंगे कि भैया अगर जैविक तरीके से वो अपने खेतों में कीटों का नियंत्रण करना चाहते हैं तो भैया सोलर ट्रैप का इस्तेमाल वो अपने खेतों में कर सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए भैया आप अपने नज़दीकी कृषि विभाग से, कृषि विज्ञान केंद्र से या कृषि विशेषज्ञों से संपर्क करके भैया इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो ये तो बात हुई सोलर ट्रैप द्वारा कीट नियंत्रण की। और भैया आगे अब हम बढ़ रहे हैं, खेती किसानी का हमारा कार्यक्रम है, हम भैया फलों की बात भी कर रहे थे। और भैया देखो जिन किसान भाइयों ने भैया फलों के बाग लगाए थे तो भैया उनकी तुड़ाई भी हो गई होगी। तो आज हम किसान भाइयों के लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं भैया जो फल तुड़ाई उपरांत फलदार बागों का प्रबंधन हमारे किसान भाई किस प्रकार से कर सकते हैं, और इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं प्रोफेसर एसएल पाल जो कि प्राध्यापक उद्यान विज्ञान विभाग आरएसएम महाविद्यालय धामपुर में है। तो आइए सुनते हैं उनसे की गई ये बातचीत।
3: किसान भाइयों आज हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर एसएल पाल जी जो कि प्राध्यापक हैं उद्यान विज्ञान विभाग आरएसएम महाविद्यालय धामपुर में, और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा फल तुड़ाई उपरांत फलदार बागों का प्रबंधन। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद
3: सर। जैसे कि आज हमारा विषय है कि फल तुड़ाई उपरांत फलदार बागों का प्रबंधन किस प्रकार से करें, तो सर सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि जब हमारे किसान भाई फल की तुड़ाई कर लेते हैं तो उसके बाद जो उनके बाग हैं या जो उनके बागों में पेड़ हैं उसका प्रबंधन किस प्रकार से किसान भाई कर सकते हैं।
4: बहुत अच्छा प्रश्न है और हम इसमें बता देना चाहेंगे कि किसान भाई इसमें उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश से जुड़े होंगे, तो मेरा इसमें सुझाव है कि ये जो पल है जब कोई भी वृक्षों की तुड़ाई हो जाती है इसके बाद उसकी जो एनर्जी है उसकी जो ऊर्जा है वो लगभग खत्म हो जाती है। ऐसी स्थिति में उसको क्योंकि साल भर कुछ ग्रोथ भी करना है और इसके साथ में आगे फल भी देना है, तो ये जो समय है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तुड़ाई के बाद उसका विशेष रूप से उसकी खाद पानी की व्यवस्था, साथ में उसकी जो भी उसमें लगने वाले कीड़े हैं या बीमारियां हैं उनका सही ढंग से देखभाल की जा सके, इसलिए ये महीना बहुत देख रेख वाला होता है और पौधा पूरी तरह से लगभग एनर्जी से एग्जॉस्ट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में पौधे को पोषण और साथ में कीड़ों तथा बीमारियों और इसके साथ में उसके पौधे की कटाई छटाई ये महत्वपूर्ण है।
3: बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा बताया कि फल तुड़ाई के बाद अगर हमारे किसान भाई फलदार बागों का सही से प्रबंधन करेंगे, सही से देखभाल करेंगे तो निश्चित ही उन्हें अच्छी उपज आने वाले जो वर्ष है उसमें मिलेगी। सर अगस्त का महीना हमारा शुरू हो गया है, तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि फल तुड़ाई के बाद पौधों की छटाई जिसको हम प्रूनिंग कहते हैं कब और किस प्रकार से करनी चाहिए सर?
4: बिल्कुल, अब ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि किसान भाई एक बार जहाँ बाग लगा देते हैं इसके बाद उनको आइडिया नहीं रहता कि पौधे की हमें कभी कटाई छटाई करनी है कि नहीं करनी चाहिए, हमारे उपज में क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। तो मैं किसान भाइयों से विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहूंगा क्योंकि ये विशेष रूप से आम की बेल्ट है और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आम पश्चिम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का तराई वाला बेल्ट यहाँ पर पैदा होता है, तो किसान भाई इस बारे में विशेष ध्यान दें कि जब भी पौधा आपका फल देने लायक हो जाता है ढाई साल बाद तो उसको लगभग 5 या 7 साल तक उसमें कोई खास हमें ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ती है कटाई की, लेकिन उसकी ट्रेनिंग करते हैं 7 साल के बाद उसमें तमाम प्रकार की बीमारियां कुछ हमारे पौधे की टहनियां विशेष रूप से आम है, अमरूद है या आंवला है, इनकी टहनियां सूखने लगती हैं तो उसमें पहले बीमारी लगती है, बीमारी के कारण हो सकता है या पौधे को प्रॉपर रूप से सप्लाई ना हो उसके कारण हो सकता है तो सूख जाती है। कुछ टहनियां ऐसी होती है जो हरी भी होती है लेकिन वो एक दूसरे की शाखाओं को आपस में क्रॉस करते हुए जाते हैं जिससे पौधे को सही ढंग से हवा नहीं मिल पाता, प्रकाश नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो पौधे की शाखाएं जमीन को छूती हो या आपस में भिड़ने वाली शाखाएं हो या किसी में बीमारी लग गई हो या किसी में कीड़े का प्रकोप हो गया हो, ऐसी टहनियों को उस टहनी की जड़ से एक शार्प सिकेटियर के माध्यम से अथवा आरी के माध्यम से काट देना चाहिए और काटने के तुरंत बाद उसमें एक पेस्ट लगाया जाना है जिसको हम चौबटिया पेस्ट के नाम से भी जानते हैं, घर में भी किसान भाई इसको बना सकते हैं। उसका एक निश्चित रेशो अलसी का उसमें तेल लगता है और उसमें कॉपर कार्बोनेट मिलाया जाता है और इसके बाद चूना मिला करके उसको पेस्ट करते हैं। ये भी नहीं मिलता है तो किसान भाई कोई भी सिस्टेमिक फंजीसाइड जैसे कार्बेरिल है या बाविस्टीन है इसका 0.1% का सोल्यूशन बना के इसी तेल में मिलाकर के उसमें पेस्ट करा दीजिए,
3: जी
4: तो वो आगे इन्फेक्शन नहीं होगा, प्लस वो टहनिया सभी छट जाएंगी। पौधे को एक निश्चित अम्ब्रेला शेप का आकार देने का प्रयास करें और जितने भी इस तरह की शाखाएं उनको हटा दें। ये ऑटोमेटिक जो ही पौधे को प्रकाश और हवा मिलना चालू हो जाएगी, पौधा बढ़िया वृद्धि करेगा अब से लेकर के अक्टूबर तक, और इसके बाद दिसंबर के महीने में उसको नई बड़ निकालना होता है जिससे आगे चल के फूल निकलते हैं और उसी में फल लगते हैं, तो प्रति पौधा अधिकतम उपज उससे प्राप्त कर सकता है किसान।
3: बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा बताया कि किसान भाई फलों की तुड़ाई के बाद फलों की छटाई कब और किस प्रकार से कर सकते हैं। अच्छा सर, आपने अभी एक चौबटिया पेस्ट का जिक्र किया था, तो सर ये क्या मार्केट में भी उपलब्ध है?
4: हाँ, ये मार्केट में उपलब्ध है, और ये भी अगर नहीं मिलता है तो जो एक बोडो मिक्सचर करके आता है
3: जी,
4: वो बोडो मिक्सचर 4:4:50 का रेशियो मिला करके 0.1% का सोल्यूशन उसको बना करके उसको भी किसान भाई अपना स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कोई भी इस तरह का फंगस या बैक्टीरिया, या क्योंकि बोडो मिक्सचर एक टॉनिक भी है, एक तरह का काम करता है और तमाम प्रकार की बीमारियों को रोकता भी है।
3: जी जी जी,
4: क्योंकि उसमें कैल्शियम भी होता है, कॉपर भी होता है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पौधे को मिल जाते हैं, और इसकी वजह से उसमें इम्यूनिटी सिस्टम उसका स्ट्रांग होने की वजह से उसमें फलत की अधिक संभावनाएं रहती हैं।
3: बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपने बताया सर। अच्छा सर, आगे हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो हमारा ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यानी कि जो तराई का हमारा क्षेत्र है सर, इसमें फलों के बाग अत्यधिक होते हैं या किसान फलों की खेती अधिक करते हैं, तो अगले मौसम में किसान अपनी फसल से या अपने बाग से अच्छी उपज प्राप्त करें, तो उसके लिए क्या सर फलों की तुड़ाई के बाद खाद और उर्वरक का प्रबंधन इस समय भी किसान भाई कर सकते हैं?
4: बिल्कुल बिल्कुल, ये किसान भाई इस बारे में विशेष ध्यान दें, क्योंकि किसान भाई के अंदर एक बात जो छिपने वाली है वो ये रहती है कि बरसात के समय में यदि हम किसी प्रकार का कोई खाद देंगे तो बारिश की वजह से वो खाद पानी जमीन में अंदर इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा, लीचिंग हो जाएगी, परकुलेशन हो जाएगा, जिसके कारण वो बर्बाद हो जाएगा। तो किसान भाई इसमें विशेष रूप से ध्यान दें कि पौधा एक बार लगाया जाता है और पौधे अपनी उम्र के अनुसार 60 साल 70 साल तक

0: खूब फल देता है,
1: जी
0: तो इसका मैनेजमेंट अगर विशेष रूप से पोषण प्रबंधन इसका ध्यान देने वाली बात है, तो पोषण प्रबंधन के लिए मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि इसमें मान लीजिए आम का बाग है, आम की सप्लाई पूरे देश में होती है, यहाँ से इसके अलावा जितने भी खाड़ी देशों में सब जगह होती है, सब जगह एक क्वालिटी की डिमांड है कि बढ़िया क्वालिटी होनी चाहिए। तो उसके लिए किसान भाई, जब तक हम किसी पौधे को प्रॉपर रूप से खाद पानी नहीं देंगे, तब तक उसमें क्वालिटी फल नहीं आ सकता है। तो किसान भाइयों को मेरा सुझाव है कि जो भी खाद पानी दी जाती है उसको दो भागों में डिवाइड कर दीजिए। पहला, जो आपका जो भी मान लीजिए आम का बाग है, तो आम के बाग में ये हमें 1 किलो नाइट्रोजन और लगभग 2 किलो फास्फोरस और 1 किलो पोटास के रेशियो में हमें देना है, 10 साल या 15 साल से ऊपर का बाग है।
1: जी
0: तो इस स्थिति में किसान भाई ध्यान दें कि 1 किलो अगर मान लीजिए नाइट्रोजन देना है, तो उसकी आधी मात्रा यानी 500 ग्राम मात्रा अभी जुलाई अगस्त के महीने में पौधे से लगभग 1 मीटर की दूरी पर 15 सेंटीमीटर पतला सा गड्ढा बनाते चारों तरफ पेरिफेरल में, और उसको गोबर की खाद लगभग 30 किलो गोबर की खाद एक पौधे के हिसाब से, 500 ग्राम नाइट्रोजन एक पौधे के हिसाब से, 1 किलो फास्फोरस एक पौधे के हिसाब से, और 500 ग्राम पोटास के साथ में लगभग 250 ग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट का मिक्सचर, ये विशेष दे किसान भाई, माइक्रो न्यूट्रिएंट का मिक्सचर मार्केट में उपलब्ध है, तमाम प्रकार की ब्रांडिंग में उपलब्ध है, लेकिन उनमें तमाम प्रकार की मिलावट है, जिसकी वजह से सही स्थान से सही जगह से माइक्रोन्यूट्रिएंट 250 ग्राम, जिसमें सभी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहे वो कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर के अलावा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, विशेष रूप से जिंक है, कॉपर है,
1: जी
0: कोबाल्ट है, इस तरह के न्यूट्रिएंट उसमें मिले होना चाहिए, और उसकी 250 ग्राम मात्रा प्रति पौधे के हिसाब से ये 15 सेंटीमीटर गहरे गड्ढे में मिला करके और गोबर की खाद के साथ मिला करके गड्ढे में भर दीजिए, ऊपर से मिट्टी चढ़ा दीजिए और उसको डालने दीजिए। ये धीरे धीरे इनफिल्ट्रेट करेगा नीचे और उसकी जड़ों तक जाएगा। आप देखेंगे जुलाई अगस्त के लास्ट सप्ताह से लेकर के सितंबर तक में पौधे में बिल्कुल नई नई पत्तियां आनी चालू हो जाएंगी, नई नई टहनियां चालू हो जाएंगी,
1: जी
0: जिससे नई शाखा में एक नया जो फ्लावर आएगा दिसंबर जनवरी के महीने में, वो अच्छी गुणवत्ता वाला आगे चल के फल उसमें लगेगा। जिससे किसान भाई, अगर मान लीजिए एक पौधे में उसको 1.5 क्विंटल आम की फलत होती है, तो इतना अगर डालते हैं तो वो लगभग 2.5 क्विंटल पर पौधा उपज देने के लिए तैयार हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपने बताया किसान भाइयों को कि किसान भाई किस प्रकार से खाद और उर्वरक का प्रबंधन कर सकते हैं। साथ ही आपने सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में भी बताया कि किसान भाई किस प्रकार से अपने जो पौधे हैं, जो पेड़ हैं, उसमें किस प्रकार से सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी प्रबंधन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आगे हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस समय बागों में कौन कौन से प्रमुख कीट और रोग लगते हैं और उनके प्रभावी नियंत्रण के क्या उपाय किए जा सकते हैं।
0: किसान भाई, जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश विशेष रूप से आम की बेल्ट है, बाकी अमरूद भी होता है खूब, और ये सीजन ऐसा होता है जिसमें टेम्परेचर लगभग 26 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ह्यूमिडिटी लगभग 80 से 95% 100% तक ह्यूमिडिटी होती है। इस समय अवधि में ढेर सारे कीड़े मकोड़े, इनका प्रकोप, बीमारियों का प्रकोप भयंकर होता है। तो किसान भाई इस बारे में विशेष रूप से ध्यान दें कि अभी हमारी तुड़ाई हो चुकी है, तुड़ाई के बाद भी तमाम प्रकार के कीड़े जो बचे हुए थे, वो कीड़े अभी डालों पर बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसे आम के उसमें है, मान लीजिए मैंगो हॉपर्स था, आपने स्प्रे किया, वो मर गया होगा। मिली बग ऊपर अभी आम का चढ़ा हुआ है, जुलाई अगस्त के महीने में नीचे उतर आता है और नीचे खेत में ढेलों के नीचे ये अपने अंडे देता है आम के पेड़ के नीचे। तो किसान भाइयों से विशेष आग्रह है कि इस समय आप जो है इसमें फॉस्फोमिडान वगैरह या नुवाक्रान 0.04% का स्प्रे कर सकते हैं, और इसके अलावा जो इस समय का जो भयंकर कीड़ा है आम के, उसमें एक तो स्टेम बोरर लगता है, स्टेम बोरर ये अंदर घुस जाता है तने में और एक सुरंग की रचना बना लेता है आम के पेड़ों में, आगे चल के अंदर है अंदर खोखला कर देगा और पौधा आपका धीरे धीरे ऊपर से सूखना चालू हो जाएगा। तो किसान भाइयों से ज्यों ही इस तरह के सिम्टम्स देखे, कहीं छेद देखें तो, और ना हो तो कम से कम केरोसिन आयल भी नहीं मिलता है तो पेट्रोल को रुई में भिगो करके उसमें जाके प्लगिंग कर दें, जिससे वो प्लग और बाहर से मिट्टी चिपका दें, वो
1: जी
0: कीड़ा अंदर ही अंदर मर जाएगा। इसके अलावा सूट बोरर होता है, जो नई नई आपकी डालें होती हैं, इन डालों को वो सूट को जाके चिपक जाएगा और उसका रस चूस लेता है, जिससे वो टहनी सूख जाती है और आगे चल के पौधा की पत्तियां सूखेंगी, बाद में वो टहनी भी सूख जाएगी।
1: जी
0: इसके अलावा एक बार्क ईटिंग कैटरपिलर छाल में लगता है, और ये भी काफी डालों को जो ही छाल के अंदर अंदर सुरंग सी संरचनाएं बनाता है। तो जैसे मैंने अभी बताया नुवाक्रान की दवा है, उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आम में एक लीफ कटिंग बीबिल लगता है, वो पत्ती के नीचे से अपना सुरंग टाइप की बनाएगा, काट देगा। और इसके अलावा पत्तियों में एक छोटे छोटे से चकत्ते से बनते हैं, और उभरी हुई जैसे सीड सरसों के बीज जो पत्तियों में चिपका दिए गए हो, तो वो लीफ गाल मेकर्स होता है।
1: जी
0: उसके लिए भी ये सभी के लिए एंड्रिन या आप पैराथियन की दवा आती है, पैराथियन भी ये 0.04% का स्प्रे कर सकते हैं। नुवाक्रान इंसेक्टिसाइड है, इसका स्प्रे कर सकते हैं आप। और नहीं कुछ कर सकते हैं तो ये सब दवाओं का प्रकोप तो रहेगा, जमीन भी इनके साइड इफेक्ट भी रहते हैं। तो मेरा किसान भाइयों से विनम्र अनुरोध है कि इस समय अभी नीम की निमौली लगभग आ चुकी है, और उसको एक ड्रम लीजिए, 10 किलो आप उसमें गौमूत्र डाल दीजिए, और लगभग उसमें 2 किलो जो तंबाकू के डंठल है वो डाल दीजिए, और
1: जी
0: इसके अलावा 250 ग्राम लहसुन डाल के, और गेंदे की पत्तियां लगभग 2 किलो क्रश करके चॉपिंग करके उसमें डाल दीजिए। एक हफ्ते तक सड़ने के बाद इसको छान लीजिए, और छानने के बाद इसमें इतना पानी मिलाइए कि ये चाय का कलर का हो जाए, और इसको आप स्प्रे करिए, पूरी बीमारियां कीड़े सब कुछ खत्म हो जाएंगे, और साथ में आपका किसी प्रकार की दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा।
1: जी जी बिल्कुल
0: दूसरी बात किसान भाइयों से मैं एक और कहना चाहूंगी, इस समय जैसे चींटियां, एक लाल चींटी होती है वो पूरे पेड़ में चढ़ जाती है, और इसकी जो भी कोमल पत्तियां होती हैं उनको चूसना चालू कर देती हैं। इसके लिए भी किसान भाई सावधान रहें, और इसके लिए भी एंड्रिन या डाई एंड्रिन करके एक दवा आती है, 0.03% का स्प्रे करके आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं। तो उन आंट्स को कंट्रोल करना जरूरी है। इसके अलावा अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग का ठप्पा लगा है या ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है, तो इसमें इस प्रकार की कोई भी केमिकल दवा ना डालें। इसके लिए गौमूत्र वाला जो हमने आपको ऑप्शन दिया था उसको करके आप डाल सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, इसमें तमाम प्रकार की बीमारियों की इस समय बहुत बड़ी समस्या है, और आम तो आपको कट चुका, इस समय तुड़ाई हो चुकी है। इसमें सबसे प्रमुख बीमारी में एक एंथ्रेक्नोज बीमारी होती है, यह फंगल बीमारी है, और इसके लिए किसान भाई इसका कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। नहीं तो इसमें पहले पत्तियों में काले धब्बे से पड़ेंगे, आगे चल के इसमें टहनियों में पड़ेंगे, फिर तने में आते हैं, और तने की छाल कुछ दिन में सूख सूख करके काला चूर्ण निकलना चालू हो जाता है।
1: जी
0: तो किसान भाई इसमें ध्यान दें कि ये सितंबर के महीने में या अगस्त के महीने में अभी से 0.1% एक बेनलेट दवा आती है, बेनलेट कॉपर फंजीसाइड है,
1: जी
0: और थोड़ा महंगी जरूर पड़ेगी, लेकिन ये दवा बहुत सबसे ज्यादा कारगर है। तो किसान भाई इसको स्प्रे कर सकते हैं, 0.1% का स्प्रे बना करके, और इसको स्प्रे करें जिससे ये बीमारी को नियंत्रित हो जाएगी। बाकी इस समय अभी कोई ऐसी समस्या नहीं है, बस जो ही ये दवा आप डालेंगे, अन्य प्रकार की भी कोई बीमारी अगर लगेगी तो उसको नियंत्रित किया जा सकता है।
1: बिल्कुल सर बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बताया है कि किस प्रकार से किसान भाई अपने जो फलदार बाग हैं उसका समय समय पर निरीक्षण करते रहें, और जो भी उसमें कीट या बीमारी दिखाई दें तो सबसे पहले उसका जैविक तरीके से नियंत्रण करें।
0: जी, बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: सर आगे जैसे ये अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो क्या फलदार बागों में जल निकासी और सिंचाई का सही प्रबंधन किसान भाई किस प्रकार से कर सकते हैं,
0: हाँ, ये
1: इस
0: भी
1: पर
0: बहुत
1: भी?
0: महत्वपूर्ण है। हाँ
1: जी
0: बिल्कुल
1: जी
0: बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ही अगर कहीं पर पानी का भराव होता है, और किसी भी बाग में अगर एक हफ्ते तक पानी भरा रहे, तो उसमें जमीन से जो जनित बीमारियां हैं वो पौधे में लगेंगी, और ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण फंगस का इन्फेक्शन अंदर ही अंदर सिस्टम में होगा और पौधे सूख जाते हैं। तो किसान भाइयों से विशेष आग्रह है कि जल निकास की समुचित व्यवस्था करें, जहां पर भी पानी भरता हो उसका किनारे थोड़ा सा ऐसा स्लोप दे करके, और ड्रेनेज की व्यवस्था करें जिससे बाग में पानी 24 घंटे से ज्यादा रुकना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। अन्यथा की स्थिति में हो सकता है पौधे में रेजिस्टेंस कैपेसिटी अभी हो, लेकिन वो 1-2 साल के बाद वो अपनी रेजिस्टेंस कैपेसिटी खो देगा, और आपका भारी भरकम नुकसान हो सकता है। तो
1: बिल्कुल
0: किसान भाइयों से मेरा आग्रह है कि कम से कम 24 घंटे, और ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे तक आप अपनी व्यवस्था सुनिश्चित करें कि उसका पानी का ड्रेनेज, अगर आपके बाग में 1% का स्लोप भी हो जाता है, तो 1% स्लोप देने पर एक जगह इकट्ठा होगा पानी, और बाद में उसको ड्रेनेज कर सकते हैं, तो जल भराव कम से कम होगा, और विल्ट जैसे बीमारियां कि आपका बाग अगर एक हफ्ते तक ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में रहा तो जल निकास नहीं हो पाएगा और इसके बाद वो पौधा विल्ट बीमारी लगेगी और पूरा बाग सूख जाएगा। तो
1: जी
0: किसान भाई विशेष रूप से ध्यान दें कि ड्रेनेज की व्यवस्था किसी भी नए बाग में हो या पुराने बाग में बिल्कुल 100% सुनिश्चित होना चाहिए।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने बताई। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ ऐसी बात जो अभी रह गई हो और किसान भाइयों को आप सुझाव के तौर पर

0: बताना चाहते हैं, तो चलते चलते कुछ ऐसी बात आप किसानों को बताइए जिससे वो आने वाले समय में अपने फलदार बागों से अच्छी आमदनी प्राप्त कर सके।
1: बस मैं यही कहना चाहूंगा कि किसान भाई इस चीज का विशेष ध्यान दें कि अगर आम का बाग है तो साल में दो बार उसको पोषण की व्यवस्था करनी चाहिए, एक जुलाई अगस्त के महीने में, दूसरी दिसंबर के महीने में। तो आधे जितने भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट के मिक्सचर, वो सारी चीजें दे दें। बाग में इस समय अगर कहीं पर कोई बीमारी का प्रकोप दिखाई देता है तो ज्यों ही ड्राई स्पेल हो, यानी एक हफ्ते का पानी रुक जाए, बरसात ना हो, उसमें लगभग 0.5% यूरिया के साथ में जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर है उसको 0.1% मिला करके, और साथ में जो हमने एकाध सिस्टेमिक फंजीसाइड या गौमूत्र वाला जो आपका ऑर्गेनिक बताया था उसका स्प्रे करा दीजिए, किसान का कोई खर्चा भी नहीं आएगा और तमाम प्रकार की बीमारियों और कीड़ों मकोड़ों से नियंत्रित होते हुए पौधे को प्रॉपर पोषण मिल जाएगा और पौधा इस समय उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट का पीरियड होता है, पूरा भयंकर पोषित होगा, वृद्धि करेगा, विकास करेगा, आगे चल के उसमें अच्छी क्वालिटी की फलत होगी, अच्छी क्वालिटी के साथ अच्छी उपज प्राप्त होगी। तो किसान भाई इस बारे में विशेष ध्यान दें, जो हमने अभी आपको बताया है उसका समुचित उपयोग करके आप प्रति इकाई क्षेत्र से और प्रति इकाई समय में अधिकतम लाभ ले सकते हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने बताई और आज आपने फल तुड़ाई उपरांत फलदार बागों के प्रबंधन विषय पर इतनी अच्छी जानकारी दी। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद किसान भाई।

किसान भाई, अभी आप सुन रहे थे फल तुड़ाई उपरांत फलदार बागों के प्रबंधन विषय पर ये डॉक्टर एसएल पाल से की गई बातचीत। और उम्मीद है भाई हमारे किसान भाइयों ने ये जानकारी सुनकर लाभ कमाया होगा, क्योंकि भैया देखो, अब हमारे किसान भाइयों ने अपने जो फलदार वृक्ष हैं उनकी तुड़ाई कर ली है। आगे वो अगले साल अच्छी फलत कैसे ले, अच्छी पैदावार कैसे ले, तो भैया उसके लिए हमारे किसान भाई क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमारे किसान भाई कर सकते हैं अपने बागों का प्रबंधन। और भैया जब अच्छे से प्रबंधन करेंगे तो हमारे किसान भाइयों को होगा लाभ। और भैया देखो, लाभ एक और चीज़ से होता है भैया, वो है गीत संगीत, वो है मनोरंजन। क्योंकि भैया हमारे किसान भाई कह रहे होंगे कि भैया आज तो भैया बातचीत ही करो जा रहे हैं, कुछ मनोरंजन ना करा रहे, तो भैया बिल्कुल आपको लिए चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनते हैं मैनपाल सिंह की गाई ये प्यारी सी रागनी।

सुख थोड़े दुख घने जगत में। किसान भाइयों, अभी आपने मैनपाल सिंह की गाई ये प्यारी सी रागनी सुनी और भैया उम्मीद है आपका मनोरंजन हो गया होगा। और भैया अब बारी है मौसम की चिट्ठी की, जो कि भैया हमें प्राप्त हुई है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ से। और भाई इसमें दी गई जानकारी के अनुसार भैया आने वाले दो दिनों में भैया वर्षा जारी रहने की संभावना है। तो भैया हमारे किसान भाई, अधिक वर्षा से खेतों में जलभराव आपको हो सकता है, तो भैया जल निकास की उचित व्यवस्था करें, क्योंकि भैया खेतों में जल निकास की उचित व्यवस्था करेंगे और पानी नहीं भरेगा तो भैया हमारे जो खेत हैं उसमें रोग कीट भैया वो भी कम लगेंगे। तो हमारे किसान भाई इस बात का ध्यान रखें। और भैया देखो घड़ी भी हमारी इस ओर इशारा कर रही है कि और बातचीत नहीं, तो किसान भाइयों उठाइए कागज और कलम और लिखिए हमारे कार्यक्रम का पता। पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन है भैया 246763। तो इस पते पर भैया हमें आपकी चिट्ठियों की प्रतीक्षा रहेगी। साथ ही भैया एक हमारा व्हाट्सएप संदेश नंबर भी है, तो भैया वो भी आप लिख सकते हैं, वो है 9457072888। और भैया अब अपने भैया हिमांशु रंजन को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों राम राम।

0: अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। समय शाम के 6:45 और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विविधा। राहुल नील से शुभ शर्मा की बातचीत का विषय है जनपद बिजनौर का इतिहास लेखन।
1: श्रोताओं, बिजनौर का बहुत पुराना इतिहास है, वैदिक काल से वर्तमान तक हम बात करते हैं। और कहीं ना कहीं जब इतिहास की बात होती है तो इतिहास लेखन एक ऐसा पहलू निकल कर आता है जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। और आज बिजनौर के इतिहास लेखन को लेकर हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है राहुल नील साहब को। राहुल नील जी खुद एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हैं, वैसे तो साहित्यकार हैं, प्रोड्यूसर हैं, उसके साथ में इतिहासकार के रूप में भी कदम रख रहे हैं। राहुल जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत आभार शोभित जी। मुझे लगता है कि इतिहासकार कहना थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। बिजनौर के इतिहास को लेकर बहुत सारे लोगों की मदद से कुछ काम हम कर रहे हैं, तो एक कोशिश है कि इस जमीन को लोगों के सामने उस तरीके से लेकर आया जाए जिस तरह से वो आनी चाहिए।
1: जी, ये सबसे बड़ी कोशिश है राहुल जी, और इसी वजह से हमने ये सोचा कि आपसे थोड़ी सी बात करते हैं हम इतिहास लेखन के बारे में, स्पेशली बिजनौर के इतिहास लेखन के बारे में। हमें ये बताइए कि आपने क्या पाया बिजनौर के इतिहास लेखन को लेकर।
2: जितना काम होना चाहिए था अभी तक उतना काम नहीं हुआ है, और हिंदी में तो हम इस काम की कमी को बहुत बड़े तरीके से महसूस करते हैं। उर्दू में फिर भी हमें बहुत काम मिलता है, लेकिन उसका ट्रांसलेशन वर्क जो है वो भी उस स्टैंडर्ड का नहीं है, उस स्तर का नहीं है जिस स्तर का होना चाहिए था। अगर बहुत कोशिश करें तो 1857 के बाद जो लेखन हुआ वहां तो मिलता है, लेकिन चाहे आप जैसे आपने बात की कि वैदिक साहित्य को लेकर या फिर मिडिवल इंडिया को लेकर या फिर जब जनपद काल था उस समय को लेकर काम हुआ नहीं, जबकि हमारे पास बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य इस जिले में मौजूद है। तो कहीं ना कहीं एक कोशिश की कमी रही है। हमें बहुत कुछ ऐसा मिल सकता है जो इस पर अभी भी काम होना बाकी है, लेकिन हुआ नहीं।
1: बिजनौर जनपद का इतिहास आप लिखने के प्रोसेस में है, तो कहाँ से आप शुरू कर रहे हैं उसे, और कौन कौन से ऐसे कालखंड हैं जिससे आप होकर गुजरेंगे?
2: शुरुआत अगर हम वैदिक काल से ही करें तो चाहे वो स्कंद पुराण हो,

0: वो महाभारत हो चाहे रामायण हो, महाभारत का जैसे अगर आप वन पर्व उठाते हैं, या फिर वाल्मीकि रामायण में जिसे प्रलंब कहा गया है, लक्ष्मण के पुत्रों का जो स्थान रहा, उससे भी अगर हम पहले जाते हैं तो ये पूरी तरह से दुष्यंत भरत वो एक श्रृंखला बनती है। और ये बातें केवल साहित्य तक नहीं है, 1985 में मोरध्वज के किले में गढ़वाल विश्वविद्यालय की खुदाई होती है, जो साक्ष्य मिलते हैं वो हमारे इतिहास को कार्बन डेटिंग के आधार पर ले जाते हैं ईसा से दूसरी शताब्दी तक। तो केवल साहित्य में है ऐसा नहीं है, हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य भी है। अगर हम पार्श्वनाथ की किले में जो मूर्तियां हमें मिली हैं उन मूर्तियों की जांच करवाएं तो वो भी हमें लगभग 1500 से 1700 साल पुरानी साक्ष्य तक ले जाते हैं। तो वैदिक साहित्य हुआ, बौद्ध काल हुआ, उसके बाद चूंकि पार्श्वनाथ से ये क्षेत्र जुड़ा रहा है तो हम जैन साहित्य में भी उसको ढूंढ सकते हैं। इसके बाद महाजनपद काल, जिसे पांचाल ये क्षेत्र था, जो 16 जनपद थे महाजनपद उनमें से पांचाल ये क्षेत्र था। उसके बाद आगे जाते हैं तो रुहेलों का साम्राज्य मध्यकालीन भारत में पूरी तरह से इसका वो साक्ष्य हमें मिलते हैं यहाँ पर। और 1857 के बाद तो सर सैयद अहमद खान की किताब आ जाती है, जहां से और बहुत सारी चीजें मिलनी शुरू होती हैं। लेकिन शोभित जी, मैं फिर वही कहूंगा कि जिस तरह से काम होना चाहिए था, सर सैयद अहमद खान की उस किताब के बाद भी कुछ ऐसा नहीं मिलता कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को या आज की पीढ़ी को अगर पता करना हो कि बिजनौर में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, तो वो शायद खाली हाथ बैठेंगे।
1: व्यवस्थित तरीके से नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जैसे एक्सक्लूसिव एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में होना चाहिए, ऐसे नहीं है। और जिस साइकिल में आपने बात की, जिस ऑर्डर में आपने बात की, तो शायद वो एक प्रॉपर ऑर्डर है इतिहास को लिखने का। अभी आपने पार्श्वनाथ के किले का जिक्र किया, उसके बाद आपने कहा कि वहां जो मूर्तियां हैं अगर उनकी आयु का पता लगाएं, तो क्या अभी तक वो काम नहीं हो पाया?
0: अभी तक केवल ये काम गढ़वाल विश्वविद्यालय की खुदाई के बाद मोरध्वज के किले पर हुआ, लेकिन पार्श्वनाथ के किले में जितनी भी मूर्तियां मिली हैं आसपास वहां पर अभी भी वो संग्रहित है एक तरह से। उतनी अच्छे तरीके से नहीं है जितने अच्छे तरीके से होनी चाहिए थी। वहां से एक मूर्ति आकर जैन मंदिर बिजनौर में प्रॉपरली अवस्थित हुई है, नेहटौर में एक जैन मंदिर में अवस्थित हुई है, लेकिन बाकी मूर्तियां अभी भी वहां पड़ी हुई है। वो काम अभी तक नहीं हुआ है, जो मुझे लगता है कि बहुत जरूरत है करने की, और सरकार को कहीं ना कहीं इस पर पहल भी दिखानी चाहिए।
1: राहुल जी, हम अगर बात करें महाभारत कालीन बिजनौर जनपद की, आपने अभी महाजनपदों का जिक्र किया, 16 महाजनपद में से एक पांचाल का ये पार्ट था। हम देखते हैं कि उसके बाद जब ट्रांजिशन होता है, हम एंशियंट हिस्ट्री में जाते हैं, उसके बाद शायद कुषाण या कनिष्क के समय का कुछ ब्यौरा बिजनौर से प्राप्त होता है, उसके बाद हम जाते हैं गुप्त डायनेस्टी में या उधर आगे जाते हैं, तो वहां पर रिलेटिवली साइलेंट रहता है। शायद उसका कारण यही है क्योंकि काम नहीं हुआ।
0: उसका कारण यही, एक पुरातत्ववेत्ता थी डॉक्टर बीना, उन्होंने एक छोटा एक्सकेवेशन बालावाली के पास कुंदनपुर टीप में किया, जहां से उनको 7 कुषाणकालीन मोहरे मिली थी।
1: अच्छा।
0: जो अभी भी लखनऊ संग्रहालय में जो है वो देखी जा सकती है। लेकिन फिर वही बात है कि उसके बाद आगे फिर साइलेंट होता है एक जो ईरा, और मुझे लगता है वो तो पूरे भारतीय इतिहास में ही है कि गुप्तकाल के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिर 200-300 साल का एक गैप आता है, वो यहाँ भी हम देख सकते हैं पूरी तरह से।
1: बल्कि उसको पॉजिटिवली कुछ लोग कहते हैं कि दैट वाज एरा ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, है ना, तो वो
0: एग्जैक्टली। एंड उसके बाद इस क्षेत्र को कटेहर क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है, बिजनौर का केवल नहीं, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, इस पूरे के जिसको बाद में रुहेलखंड क्षेत्र कहा गया। तो वो एक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो एक साइलेंट ईरा है जिस पर काम करने की बहुत जरूरत है।
1: अभी नील जी, आपने जिक्र किया कि लखनऊ संग्रहालय की बात आती है, अभी जैसे आप इसके जो रिचनेस है उसको आप अभी माप तोल रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशन यहाँ पर हो संग्रहालय जैसा बिजनौर में?
0: हम लोग प्रशासन के साथ इस कोशिश में लगे हुए हैं शोभित जी, और कई बार स्थितियों को देखकर दुख भी होता है, लेकिन केवल कहने से कुछ नहीं होता, हमें कोशिश खुद ही करनी पड़ेगी। हम जहाँ नजीबाबाद में है, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर मोरध्वज का किला है, आज आप वहां जाकर देखेंगे तो बहुत सारे स्कल्पचर्स आपको पड़े हुए मिलेंगे जिन पर एक शेड तक नहीं है, वो जैसी अवस्था में है बस रखे हुए हैं। इसी तरह से मैं जब पहली बार पार्श्वनाथ के किले में गया था तो उन मूर्तियों को देखकर मन द्रवित हो गया था, वो जिस स्थितियों में थी। ये हमारी धरोहर है, हमारा इतिहास है, हमारी थाती है, जो कहीं ना कहीं हमें गर्व करने का मौका देती है, लेकिन उनके संग्रहण की, उनके बचाव की हमारे पास कोई रणनीति नहीं है। केवल हम प्रशासन को या राजनीति को हम दोष दें, मुझे लगता है वो ठीक भी नहीं, कहीं ना कहीं लोगों को उसके लिए आगे आने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
1: बेशक। नील जी, एक चीज और है कि अभी आपने कहा कि हमें आगे आने की जरूरत है, जो यहाँ की जनता है उसे आगे आने की जरूरत है। मेरठ जनपद पे आर्कियोलॉजी पे एक्सकैवेशन में खूब काम हुआ है, हम देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो उससे उसे जोड़ा गया है, और शायद अभी तक ऐसा कोई एफर्ट यहाँ पर नहीं हुआ है, तो इसका बेसिक रीजन क्या देखते हैं?

0: शोभित जी, टू बी वेरी फ्रैंक, केवल ही इतिहास के मामले में नहीं है, एक तरफ गंगा एक तरफ हिमालय, बिजनौर हमेशा एक नेग्लेक्टेड क्षेत्र रहा है। अगर मैं केवल राजनीति की बात करूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक जितने सांसद बिजनौर से हुए उसमें से आधे बिजनौर के बाहर वाले थे।
1: दैट्स स्ट्रेंज.
0: एक बहुत लंबा समय ये क्षेत्र बाहरी लोगों के शासन में रहा है, चाहे वो रुहेलखंड, एक लंबा लगभग 250 से 300 साल का एक स्पैन मिलता है, फिर अंग्रेजों का रहा। तो मुझे लगता था कि ऐसा लगता है, मुझे व्यक्तिगत लगता है, अगर मैं लोगों की साइकोलॉजी जितनी समझने की कोशिश करता हूं, कि लोग अपने कमाने खाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। एक कल्चरल ड्राइनेस आपको यहाँ देखने को मिलेगी,
1: जी
0: और वो ड्राइनेस अपने इतिहास, अपने उन सारी चीजों को लेकर भी है। तो वो एक दिन में नहीं पनपा है या किसी परिस्थितिवश नहीं पनपा है, वो जो

0: को, अपनी रूट्स को ढूंढना चाहते हैं और उन रूट्स को लोगों के सामने ले जाना चाहते हैं कि हाँ हम ये हैं। एक चीज और अंत में मैं ये पूछना चाहूंगा नील जी, चूंकि आप अध्ययन कर रहे हैं और आप इस समय शुरू से अंत तक आपने इतिहास को खंगालने की कोशिश भी की है, तो कौन सा ऐसा एरिया है या कौन सा ऐसा कालखंड है, पीरियड है, जो आपको सबसे ज्यादा फैसिनेट करता है बिजनौर को लेकर?
1: अगर आप गढ़वाल विश्वविद्यालय की जब रिपोर्ट्स पढ़ते हैं एक्सकेवेशन की, नौटियाल जी के मार्गदर्शन में जो 1985 में हुई, तो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर और पांचवी शताब्दी तक वो जो 700 साल रहे होंगे, मुझे लगता है कि वो बहुत इंटरेस्टिंग इरा रहा होगा। क्योंकि जब कनिंघम ह्वेनसांग की बात करते हैं तो यहाँ 6 महीने ह्वेनसांग मंडावर में रहते हैं, उन्होंने पूरा बौद्ध साहित्य का जो है वो पूरा का पूरा अध्ययन किया है, वो एरिया मुझे लगता है कि बहुत मुझे प्रभावित करता है। और केवल उतना नहीं है, मंडावर में कनिंघम का खुदाई, उसका स्तंभ का मिलना, तो बौद्ध कालीन जो समय है उसमें भी बिजनौर बहुत प्रभावी रहा है, ये पुराने साक्ष्य जो है वो हमें बताते हैं पूरी तरह।
0: चलिए नील जी, जो आपने एक जिम्मा उठाया है कि बिजनौर के इतिहास को बिजनौर के वासियों के समक्ष लाना, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने प्रयास में सफल रहेंगे। आप हमारे साथ स्टूडियो में आए और आपने अपना वक्त हमें दिया, आपका बहुत बहुत आभार।
2: विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, विषय था जनपद बिजनौर का इतिहास लेखन। वार्ताकार थे राहुल नील, जिनसे बातचीत कर रहे थे शोभित शर्मा। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। संध्या के 6:55 हो रहे हैं और आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत छाया गीत। स्वागत है सभी श्रोताओं का कार्यक्रम छाया गीत में, और कार्यक्रम का ये पहला गीत सभी श्रोताओं के लिए।

छाया गीत कार्यक्रम का ये पहला गीत श्रोता हूँ आपने सुना फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से। आवाजें थी लता मंगेशकर और साथियों की। गीत लिखा था नरेंद्र शर्मा ने और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। छाया गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से और कार्यक्रम की अगली पेशकश है फिल्म भाग्य से। आवाजें हैं किशोर कुमार और हेमलता के साथ साथियों की। गीत लिखा और संगीत दिया है रविंद्र जैन ने।

और आइए श्रोताओं, अब कार्यक्रम छाया गीत के अंत में आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज में ये गीत। फिल्म है आपकी कसम और इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है आरटी परमन का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम छाया गीत। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। समय संध्या के 7:10 हुए हैं और लीजिए अब सुनिएगा देश गान।

0: अभी आप सुन रहे थे देश कान, ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। समय संध्या के 7:15 हो रहे हैं। और आइए श्रोताओं, अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। संसद समीक्षा आज रात्रि 8 बजे और रात्रि 9:30 पर सुनिएगा प्रोग्राम पब्लिक स्पीक। और देर रात्रि 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रसारित की जाएगी। ये तीनों ही कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। और संध्या 8:15 पर होगा कार्यक्रम गीत संध्या और 8:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत एक ही फिल्म से। रात्रि 10:19 पर होगा फिल्म संगीत और रात्रि 10:30 पर सुनिएगा भूले बिसरे गीत। तो ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर। जिले की हलचल कल सवेरे 9:15 पर आकाशवाणी लखनऊ से। भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना कल सवेरे 6:05 पर। और श्री रामचरित मानस गान की भव्य प्रस्तुति सुनिएगा कल सवेरे 6:30 पर। चिंतन का समय रहेगा कल प्रातः 6:40 पर। अरविंद कुमार शर्मा से सुनिएगा काव्य पाठ काव्यधारा कार्यक्रम के अंतर्गत कल प्रातः 6:45 पर। बच्चों के लिए घातक है पेट के कीड़े, ये पूर्व प्रसारित जानकारी रहेगी कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में कल सुबह 7:05 पर। सुबह 7:10 पर खेती की बातें कार्यक्रम में जानकारी रहेगी सीताफल की खेती के विषय में। और इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम सूरज के साथ साथ रोज की ही तरह सुबह 7:31 पर। सत्यवीरा हांडा के गाय सावन शिवरात्रि पर विशेष शिव गीतों और सावन गीतों का आनंद लीजिएगा कल सुबह 9:25 पर लोक संगीत कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत। और NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का समय रहेगा कल पूर्वाहन 11:30 पर। कल दिन में 1:15 पर बहने सुनेंगी कार्यक्रम महिला जगत, जिसमें क्रम रहेगा आधी आबादी से। साथ ही डॉक्टर पारुल त्यागी से सुनिएगा कहानी पाठ बलबीरी। हरीश सिंह मेहरा के गाय कुमाऊनी लोकगीत आप सुन सकते हैं लोक संगीत कार्यक्रम लोकधारा में कल दिन दोपहर 1:45 पर। कल शाम 5 बजे रहेगा कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत, जिसमें होगी जानकारी महिलाओं के लिए भारत सरकार की योजनाएं उज्ज्वला स्कीम और वर्किंग वुमेन हॉस्टल के बारे में। युववाणी कल शाम 5:15 पर। और कल शाम 6:05 पर किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम कृषि जगत, जिसमें क्रम होगा बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला एपिसोड 12 और जिसके प्रायोजक होंगे बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मेरठ। साथ ही सुनिएगा भेंटवार्ता, विषय होगा बासमती धान में जैविक विधि से कीट नियंत्रण। जानकारी देंगे कीट वैज्ञानिक सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ से डॉक्टर राजेंद्र सिंह और आपसे बातचीत करेंगे सुबेंद्र सिंह। साथ ही रहेगी चर्चा बरसात में साफ सफाई का महत्व और प्रधानमंत्री धन्य धान्य योजना
1: एक
0: के
1: जमाने में हुकुम सिंह को
0: कल
1: घर वाले कुरकुरदास
0: आकाशवाणी क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे। इसके प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक

0: आप बीमा कंपनी कृषि ऋण समिति जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
1: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
2: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
3: Hey girls,
4: hey, congratulations!
3: आज तो पार्टी चाहिए।
4: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
5: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
3: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
3: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
5: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के गुलवीर सिंह और अस्मिता डे समेत राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से की मुलाकात। कहा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक बनेगी यह कामयाबी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में तिरंगा यात्रा का किया शुभारंभ। राज्य में 5 करोड़ घरों में तिरंगा लहराने का तय किया लक्ष्य। प्रदेश के 762 नगरीय निकायों में संपत्ति कर के बकायेदारों के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू। ब्याज और सरचार्ज पर 100% छूट, करदाताओं को 3 किस्तों में भुगतान की सुविधा। और सावन के दूसरे सोमवार पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में उमड़ रही है भक्तों की भीड़। वाराणसी, बागपत, गाजियाबाद में कांवड़ियों पर की गई पुष्प वर्षा।

0: नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के गुलवीर सिंह और अस्मिता डे समेत राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
1: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को खेलो इंडिया की गरिमा बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत अस्मिता डे से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने वाराणसी में खेल सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर होता है।
1: वाराणसी में खेल तो प्रैक्टिस कर रही थी ना?
2: जी सर, बहुत।
1: कैसा बना है स्टेडियम?
2: सर अच्छा बना है। वहाँ पे मैं 10-12 दिन के लिए ट्रेनिंग करने गई थी क्योंकि मैं मंदिर गई थी तो वहाँ पे ही ट्रेनिंग करके आई थी। और मैं वहाँ पे मतलब सेटल भी होना चाहती हूँ क्योंकि मुझे काशी विश्वनाथ बहुत अच्छा लगता है। सर साई ने भी सर बहुत सपोर्ट किया है मुझे, इसके कारण ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ सर। और मैं खेलो इंडिया स्कीम में भी थी।
1: स्पोर्ट्स व्यवस्था एक बात, लेकिन देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर बनता है। दोस्तों आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, आपको मैं बहुत बधाई देता हूँ।
0: भारत ने 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच ग्लासगो में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया है। पदक विजेताओं में उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक और गुलवीर सिंह ने एथलेटिक्स में रजत और कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में आज गोरखपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ करने से पहले उन्होंने नगर निगम परिसर में स्थापित महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को याद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का तिरंगा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अमिट गाथा का नाम है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि सभी लोग अपने घर पर तिरंगा लगाएं और उसके साथ सेल्फी लेकर अपलोड करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस वर्ष 5 करोड़ घरों में तिरंगा लहराने का लक्ष्य तय किया है। यह कार्य राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों के प्रति सम्मान का प्रतीक है।
3: राष्ट्र के महापुरुष और राष्ट्र के

0: क्रांतिकारी किसी भी युवा के लिए प्रेरणा होती है। ये जो तिरंगा है, ये तिरंगा भारत के क्रांतिकारियों, भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के बलिदान की अमिट गाथा का नाम है, उस अमिट गाथा की प्रेरणा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने हर युवा को गौरव की अनुभूति से जोड़ने के लिए हर घर तिरंगा को अनिवार्य किया है कि हर घर तिरंगा लगे, और तिरंगा के प्रति जागरूकता के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है।
1: वहीं जालौन, बलरामपुर, अयोध्या समेत कई अन्य जिलों में भी आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। श्रावस्ती में राप्ती नदी में SDRF और फ्लड PAC ने बोट से तिरंगा रैली निकाली। उधर वाराणसी में हर घर तिरंगा अभियान में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी करीब 800 महिलाएं सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। ये महिलाएं करीब 3 लाख राष्ट्रीय ध्वज तैयार करने में जुटी हैं। अभियान के तहत वाराणसी की 694 ग्राम पंचायतों तक ये तिरंगे पहुंचाए जाएंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों में एक मुश्त समाधान योजना लागू करने का निर्णय लिया है। नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने बताया कि एक मुश्त समाधान योजना की अवधि 4 माह निर्धारित की गई है और इसका क्रियान्वयन 15 अगस्त 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। सरकार ने OTS के अंतर्गत बकाया संपत्ति कर के भुगतान के लिए अधिकतम 3 किस्तों की सुविधा भी प्रदान की है। करदाता को योजना लागू होने की तिथि से 30 दिन के भीतर कुल बकाए की 1/3 धनराशि जमा करनी होगी तथा शेष 2/3 धनराशि अगले 2 माह में 2 मासिक किस्तों के माध्यम से जमा की जा सकेगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सावन के दूसरे सोमवार पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे कांवड़ियों और श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बागपत में भी पुलिस टीम ने बरनावा कांवड़ मार्ग पर कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा की। रामनगरी अयोध्या में भोर से ही श्रद्धालु सरयू में स्नान कर प्राचीन नागेश्वरनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के व्यापक इंतजाम किए हैं। सर्किल ऑफिसर आशुतोष तिवारी ने बताया कि पूरे इलाके को अलग अलग सेक्टर और जोन में बांटा गया है और कांवड़ियों के आने जाने वाले इलाके को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है।
2: सावन के दूसरे सोमवार के दृष्टिगत भारी संख्या में जो है कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भीड़ आई हुई है। उनकी सुरक्षा के लिए जो संपूर्ण क्षेत्र है नागेश्वरनाथ वगैरह पे सेक्टर और जोन वाइज ड्यूटियां लगाई गई हैं। साथ ही CCTV कैमरे और ड्रोन के माध्यम से सभी जगहों पे सतत निगरानी की जा रही है। साथ ही जो भी आपका कांवड़ियों का क्षेत्र है उसको नो व्हीकल जोन घोषित करके उसे हम लोग स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करा रहे हैं।
1: गाजियाबाद के दूधेश्वर नाथ मंदिर में भी सावन के दूसरे सोमवार को पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। सावन के सोमवार के मौके पर मंदिर में विशेष सजावट और पूजा अर्चना की व्यवस्था की गई है। कांवड़ यात्रियों पर पुलिस प्रशासन और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने विभिन्न स्थलों पर पुष्प वर्षा भी की। गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मानदंड ने बताया कि कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर और आसपास के इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
3: ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है। CCTV कैमरे इंस्टॉल हैं। PA सिस्टम के माध्यम से लोगों को भी लगातार सूचित किया जा रहा है और हमारे जितने ऐसे क्रिटिकल पॉइंट है जहां पर कोइंसाइडिंग होती है वहां पे पुलिस का और सिविल डिफेंस का डिप्लॉयमेंट हम लोगों ने किया है। अलग अलग कांवड़ शिविर हैं 300 से ऊपर जो लगातार भोजन, पानी और विश्राम की व्यवस्था कर रहे हैं। 26 से ऊपर चिकित्सा शिविर हैं जो चिकित्सा सहायता हमारे कांवड़ श्रद्धालुओं को उपलब्ध करा रहे हैं और 4,000 से ऊपर पुलिसकर्मी हैं जो इस पूरी व्यवस्था में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं।
1: उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया कल से शुरू होगी। छात्र 25 अगस्त 2026 तक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे, जबकि वर्ष 2026-27 सत्र के नए छात्र 11 अगस्त से 21 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। छात्रों से समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की गई है। राजधानी लखनऊ समेत कई जनपदों में आज हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं पहाड़ों पर हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं और फर्रुखाबाद में गंगा,

लखीमपुर खीरी और बाराबंकी में शारदा और अयोध्या व बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में राज्य में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के गुलवीर सिंह और अस्मिता डे समेत राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से की मुलाकात। कहा, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी यह कामयाबी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में तिरंगा यात्रा का किया शुभारंभ। राज्य में 5 करोड़ घरों में तिरंगा लहराने का तय किया लक्ष्य। प्रदेश के 762 नगरीय निकायों में संपत्ति कर के बकायेदारों के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू। ब्याज और सरचार्ज पर 100% छूट, करदाताओं को 3 किस्तों में भुगतान की सुविधा। और सावन के दूसरे सोमवार पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में उमड़ रही है भक्तों की भीड़। वाराणसी बागपत गाजियाबाद में कांवड़ियों पर की गई पुष्प वर्षा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: तो आएगी ना।
1: सुगंध, क्या हो रहा है?
2: बिल हो रहा है।
1: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
3: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की।
5: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। समय संध्या के 7:31 हो रहे हैं। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे मोहन कुमार गुप्ता के गाए भजन।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, और कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मोहन कुमार गुप्ता के गाए भजन।

आप सुन रहे हैं सुगम संगीत आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और श्रोताओं कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मोहन कुमार गुप्ता के गाए भजन।

सुगम संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मोहन कुमार गुप्ता के गाए भजन।

0: सुगम संगीत के अंतर्गत अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे मोहन कुमार गुप्ता के गाए भजन। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। संध्या के 8 बजने को है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी है, अब आप जया भारती से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। संसद ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा स्पष्ट बनाना है। राज्यसभा ने संक्षिप्त चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और नीट प्रश्न पत्र लीक को लेकर राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर कुछ देर नारेबाजी करने के बाद विरोध व्यक्त करते हुए सदन से वॉकआउट किया। यह विधेयक औपनिवेशिक काल के पुराने अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विपक्षी सदस्यों के बीच हंगामे के बीच इस विधेयक को चर्चा और पारित कराने के लिए रखा। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से बैंकों को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही अदालती मामलों में बैंक के पक्ष को मजबूती से रखा जा सकेगा। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि आज बैंकिंग सेवाओं का बड़े स्तर पर डिजिटलीकरण हो गया है। बैंकिंग क्षेत्र की इस जरूरत को देखते हुए मूल कानून में बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा कि मूल कानून में कागज आधारित प्रति पर बहुत जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि पहले बैंकों को उनके लेनदेन के सिलसिले में कागजी रिकॉर्ड लेकर अदालत में बुलाया जाता था और इसमें डिजिटल रिकॉर्ड का उल्लेख नहीं था, अब डिजिटल रिकॉर्ड मान्य होगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने बैंक ग्राहकों के साथ बढ़ते साइबर अपराध को लेकर चिंता व्यक्त की। चर्चा में बीजत के मानस रंजन मंगराज, भाजपा के अरुण सिंह और शंभू शरण पटेल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के डॉ एम थंबीदुरई और डॉ एम धनपाल, रंकापा के राजेंद्र हीरालाल जैन, तेदेपा के भाष्यम रामकृष्ण, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, द्रमुक सदस्य एल के सुधीश और शिवसेना की डॉक्टर ज्योति नागराज वाघमारे ने हिस्सा लिया। प्रस्तावित कानून में बैंकर्स बुक्स या बैंक कार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर इसमें डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उसके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का भी प्रावधान है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण या स्पेशल कॉज परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। इस विधेयक के पारित होने के बाद सदन में कराधान तथा अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य उस मौजूदा कानूनी प्रावधान को हटाना है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने से रोकता है। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के तरुण चुग, विक्रमजीत सिंह साहनी, डॉ कल्पना सैनी, रेखा शर्मा, धनंजय भीमराव महादिक, बाबूराम निषाद, द्रमुक सदस्य पी विल्सन, बीजत के सुभाषीष खुंटिया, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के डॉ एम थंबीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू और तेदेपा के विजय चिंता कायला ने हिस्सा लिया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक में भारत को विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में विनिर्माण केंद्र के रूप में मजबूत करने और वैश्विक कंपनियों को उपकरण, पुर्जे तथा सामग्री लाने के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य निहित है। उन्होंने कहा कि कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कलपुर्जे ऐसे हैं जिनका भारत में निर्माण नहीं होता, लेकिन देश में उनकी जरूरत होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में अनुबंध

दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए मुफ्त होगा। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जॉन ब्रिटास के सांवैधानिक संकल्प को खारिज कर दिया है। विधेयक पर चर्चा और पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे इससे पहले ही सदन से वॉकआउट कर गए थे। मंत्री के जवाब के बाद कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। तत्पश्चात उच्च सदन में विशेष उल्लेख के जरिए भाजपा के अमरपाल मौर्य, डॉ अनिल सुखदेव राव बोंडे, डॉ मेधा विश्राम कुलकर्णी, सुजीत कुमार, बाबू भाई जयसंग भाई देसाई, दर्शना सिंह, डॉ धर्मशीला गुप्ता, डॉ दिनेश शर्मा, अधिकारी मायूम शारदा देवी, केसरी देव सिंह झाला, डॉ कल्पना सैनी और रेखा शर्मा ने लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। बाद में उच्च सदन की बैठक कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले राज्यसभा की बैठक राजधानी दिल्ली में पिछले महीने नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण 3 बार बाधित हुई। सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने और सरकारी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह की सदन में उपस्थिति और जवाब की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर को मिले चंदे में कथित चोरी के आरोपों को लेकर भी नारेबाजी की। सभापति ने सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध विषयों को उठाने की अपील की। हंगामे के बीच ही भाजपा के राहुल सिन्हा, तरुण चुग, डॉ के लक्ष्मण और बाबू भाई जयसंग भाई देसाई ने आसन की अनुमति से सदन में लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। इस दौरान विपक्षी सांसद आगे की पंक्ति के पास एकत्र हो गए और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका दिए जाने की मांग करने लगे। राधाकृष्णन ने प्रदर्शन कर रहे सांसदों से अपनी सीटों पर लौटने को कहा ताकि उनकी मांग पर विचार किया जा सके। अपनी बात का असर होता न देख सभापति ने करीब 11:20 पर बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे जब प्रश्नकाल के लिए सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो आसन की अनुमति से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और प्रवास तथा शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ऊर्जा संबंधी सवालों का जवाब देने के लिए खड़े हुए, लेकिन कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य लगातार नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 को सदन में चर्चा और पारित करने के उद्देश्य से पेश करने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग दोहराते हुए हंगामा जारी रखा। कुछ सदस्य तो अपने स्थान से उठकर आगे आ गए। सदन में व्यवस्था न बनते देख उपसभापति हरिवंश ने बैठक को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। 15 मिनट बाद बैठक के फिर से शुरू होने पर सदन में बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक और कराधान तथा अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को लिया गया। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव माहेश्वरी। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण आज लोकसभा की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के बीच ही सदन ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा के बिना पारित कर दिया। शोर शराबे के बीच ही सदन में 3 अन्य विधेयक खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए गए। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी पर सदन में चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और सपा समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की बैठक 2 बार के स्थगन के बाद जब अपराह्न 2 बजे शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है और गृह मंत्री अमित शाह विस्तार से जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पहले दिन से यह मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह को विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। श्री

0: ने कहा कि मैं सरकार की ओर से स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि सरकार विद्यार्थियों के मामले को लेकर चर्चा और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष से अनुरोध है कि उन्हें गृह मंत्री के जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, उन्हें पूरा जवाब सुनना पड़ेगा। श्री रिजिजू ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी यह बात कही गई है कि सरकार विस्तार से चर्चा और जवाब देने को तैयार है। इस दौरान विपक्ष के सदस्य सदन में नारेबाजी करते रहे। इस बीच विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। श्री मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चल रही सुधार एक्सप्रेस का हिस्सा है। उनका कहना था कि यह विधेयक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र बदलने का विधेयक नहीं है। विधेयक का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दक्षता बढ़ाने के साथ स्वतंत्रता, पारदर्शिता और पात्रता संबंधी मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने आसन के समीप आकर प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों से कहा कि वे गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग कर रहे थे और अब जब संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि गृह मंत्री सदन में चर्चा का जवाब देने को तैयार है तो सदन की कार्यवाही चलनी देनी चाहिए। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा करने लगे। आसन पर उस समय आरएसपी नेता एनके प्रेमचंद्रन थे, जिन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराने का प्रयास किया। वैसे सामान्य तौर पर लोकसभा में प्रश्नकाल के समय आसन पर अध्यक्ष ओम बिरला होते हैं। हंगामा जारी रहने पर भी श्री प्रेमचंद्रन ने बैठक शुरू होने पर भी 2 मिनट अंदर ही दोपहर 12 बजे तक कार्यवाही स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही फिर से आरंभ होने पर भी विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 और कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहले ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। हालांकि ये दोनों विधेयक केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के नाम से सूचीबद्ध थे। हंगामा नहीं थमने पर भी पीठासीन सभापति संध्या राय ने दोपहर 12:14 पर सदन की बैठक अपराहन 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इस प्रकार मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही लगातार 16वें दिन आज भी सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। सदन में आज पेश किए गए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना है। विधेयक के तहत एनसीडीसी को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सहकारिता मंत्रालय के तहत आने वाला एनसीडीसी एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 के तहत की गई थी। एनसीडीसी के प्रमुख कार्यों में कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों और अन्य अधिसूचित वस्तुओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण और आयात निर्यात से जुड़े कार्यक्रमों की योजना बनाना, उन्हें बढ़ावा देना और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना शामिल है। इस नए विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के वितरण के अनुसार जून 2021 में अलग सहकारिता मंत्रालय के गठन और केंद्र सरकार द्वारा सहकारी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों के बाद सहकारी क्षेत्र के विकास में एनसीडीसी की भूमिका काफी बढ़ गई है। केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 भी सदन में पेश किया गया, जिसमें केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 24 फरवरी को केरल का नाम बदलकर केरलम करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को आम सहमति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें केंद्र से राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर केरलम करने का आग्रह था। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: दिस इज आकाशवाणी रिव्यू ऑफ
2: मीडियम वेव 314.4।

मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। समय संध्या के 8:15 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत संध्या। श्रोताओं, जहां आस्था की गहराई हो, जहां भक्ति की पवित्रता हो, वहीं से शुरू होती है शिव की महिमा की एक सुंदर यात्रा। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आज के पावन दिन पर। सावन का दूसरा सोमवार और पूरा वातावरण भगवान शिव की भक्ति में डूबा हुआ है और ऐसा लग रहा है मानो सारा संसार शिव में हो गया हो। तो क्यों ना आप और हम मिलकर भी इस आस्था की गहराई, इस पवित्रता में खो जाएं और कार्यक्रम की शुरुआत करें इस खूबसूरत गीत के साथ।

कार्यक्रम का ये पहला गीत श्रोताओं आपने सुना, सोनू निगम सुखविंदर सिंह की आवाज़ों में फिल्म थी अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। गीत लिखा था समीर ने और संगीत था अनु मलिक का। जी हाँ बिल्कुल श्रोताओं, जहाँ आसमान धरती को छूता है, जहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच गूंजता है हर हर महादेव, वहीं इन बर्फीली वादियों में विराजते हैं भगवान भोलेनाथ। आइए उसी दिव्य धाम को महसूस करें इस खूबसूरत गीत के साथ जो हमने लिया है फिल्म OMG 2 से। आवाज़ है हंसराज रघुवंशी की। गीत लिखा है हंसराज रघुवंशी ने और संगीत है कबीर शुक्ला का।

जी हाँ श्रोताओं, जहाँ हर सांस में शिव का नाम हो, जहाँ हर धड़कन में भोलेनाथ का धाम हो, वहीं से उठती है एक आवाज़ भक्ति और विश्वास की। तो आइए दिल से बोलें हर हर महादेव।

0: bir dolle. Gonca ufe her dışarşı bir menadu zika bam bam bole.
1: श्वेता मोहित चौहान, सुखविंदर सिंह और बादशाह की आवाज़ों में फिल्म शिवाय के इसी गीत के साथ ही आज का गीत संध्या कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत संध्या। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। समय संध्या के 8:30 हो रहे हैं और लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत एक ही फिल्म से।

चाहता हूँ जहाँ पहाड़ों की ऊंचाई हो, जहाँ आस्था की गहराई हो, जहाँ प्यार की कोई सीमा ना हो, वहीं से जन्म लेती है एक खूबसूरत कहानी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से कार्यक्रम एक ही फिल्म से में, और आज का सफ़र हमें लेकर चलेगा देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में, भगवान शिव के धाम यानी केदारनाथ की ओर। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे फिल्म केदारनाथ के चंद गीत। ये फिल्म श्रोताओं आई थी साल 2018 में। इसके निर्देशक थे अभिषेक कपूर। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार, आस्था, रिश्तों की कसौटी और प्रकृति की विराट शक्ति भी थी। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान और एक चंचल बेपाक लड़की के किरदार में थी। श्रोताओं, कहानी की इस फिल्म की कहानी जो है वो इतनी खूबसूरत थी कि उसका संगीत भी दिल में उतरना लाजमी था। अमित त्रिवेदी के संगीत और अमित भट्टाचार्य के गीतों ने इस फिल्म को सुरों की एक अलग पहचान दी। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और कार्यक्रम का ये पहला गीत आपको सुनवाते हैं।

अमित त्रिवेदी की आवाज़ में श्रोताओं, आपने सुना फिल्म केदारनाथ का ये गीत, और कार्यक्रम में अगला गीत भी इसी फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह और निकिता गांधी के स्वर में।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत एक ही फिल्म से। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के

0: शुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने की देने की अपील की। कहा, गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों तथा पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। FIH हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले नहीं होंगे, पुरुष और महिला टीम पूल डी में शामिल। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर MDR शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा।
2: The bill, among various other things that it wants to do,
3: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
2: Permits authentication through manual, digital and इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
1: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है।
4: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही 3-3 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए गए। इनमें से अधिकरण सुधार विधेयक 2026 विपक्ष के शोर शराबे के बीच बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में 2 विधेयक चर्चा के लिए लिया गया, जिनमें बैंकिंग प्रणाली को आधुनिक और आज के डिजिटल युग के अनुरूप बनाने के लिए बैंककार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित किया गया। इसके अलावा कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के बाद इसे लोकसभा को लौटा दिया।

0: किया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृहमंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
2: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
1: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृहमंत्री के वक्तव्य की मांग की।
3: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
1: भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है।
4: फिर से मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
5: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया, जिसके बाद बल का प्रयोग किया गया। रांची सिटी एसपी पारस राणा और एसपी ग्रामीण गौरव गोस्वामी ने छात्रों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील करते हुए कहा कि पुलिस ने संयम बरता है। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: इस वर्ष 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में देश के युवा शक्ति के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया जाएगा।
6: रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले से करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के समारोह का एक प्रमुख आकर्षण वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव होगा। पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गान होगा। समारोह की दूसरी प्रमुख थीम युवा शक्ति विकसित भारत एट 2047 की यात्रा का नेतृत्व है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है जो नागरिकों को विकसित भारत निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की

0: 100वीं वर्षगांठ के कारण यह अभियान हर देशभक्त के लिए भावुक बन गया है। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और हरघरतिरंगा.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। तिरंगा रैली को उपायुक्त कृष्णलाल ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से झंडी दिखाकर रवाना किया। मणिपुर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत इम्फाल में बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में हजारों बाइक सवारों ने हिस्सा लिया। सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVI के अंतर्गत 10 लाख प्रशिक्षण के लक्ष्य को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे भ्रामक दावे को खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की फैक्ट चेक इकाई ने स्पष्ट किया है कि PMKVI के तहत ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
1: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते हैं। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर राजेश सिन्हा भाग लेंगे। वस्त्र मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हैंडलूम डिजाइनर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया। इसमें डिजाइनर, बुनकर, नेते निर्माता और उद्योग से जुड़े लोग शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, UPI लेन देन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने देने की अपील की। कहा गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और FIH हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज।

रिजिजू ने अपोजिशन पर जोर दिया है कि वो तलबा के एहतजाज से मुतालिक मामलात पर वजीर दाखिला अमित शाह के बयान के लिए लोकसभा की कार्रवाई चलने दे। झारखंड में भर्ती इम्तिहानात में बेजाब्तगियों पर तलबा के एहतजाज में तेजी आ गई है। तलबा ने पुलिस कार्रवाई के दरमियान रांची में असेंबली की जानिब मार्च किया। 80वें यौम आजादी की तकरीबात में युवा शक्ति और विकसित भारत 2047 के लिए नौजवान भारत के तावुन को उजागर किया जाएगा। पहली मरतबा वंदे मातरम लाल किले की फसील से गाया जाएगा। कल हिमाचल प्रदेश और मशरकी राजस्थान में शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और FIH हॉकी आलमी कप 2026 नए फॉर्मेट के साथ इस हफ्ते बाद में शुरू होगा, जिसमें क्वार्टर फाइनल मुकाबले खत्म कर दिए गए हैं। अब खबरें तफसील से। टैक्सेशन और दीगर कवानीन तरमीमी बिल 2026 राज्यसभा में गौर खोज के बाद लोकसभा को लौटा दिया गया। लोकसभा इस बिल को पहले ही मंजूर कर चुकी है, इस तरह इस बिल को पार्लियामेंट की मंजूरी मिल चुकी है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने ऐवान बाला में ये बिल पेश किया। बहस का जवाब देते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि टैक्सेशन और दीगर कवानीन तरमीमी बिल 2026 का मकसद भारत के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मुस्तहकम करना, मजीद सरमायाकारी को रागिब करना, रोजगार पैदा करना और मैन्युफैक्चरिंग सरगर्मियों को फरोग देना है। उन्होंने वाजे किया कि ये बिल UPI सारिफिन पर किसी तरह का टैक्स या लेन देन के चार्जेस आयद नहीं करता। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि छोटे कारोबारियों और ग्राहकों को UPI पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्जेस अदा नहीं करने होंगे। पार्लियामेंट की जानिब से बैंकरों के बही खाता शवाहिद बिल 2026 को भी मंजूरी मिल गई है। क्योंकि राज्यसभा ने भी इसे आज मंजूर कर लिया, मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने बिल पेश किया जिसका मकसद मौजूदा बैंकिंग निजाम की जरूरतों को पूरा करने के लिए कानूनी फ्रेमवर्क को हम आहंग करना है। ये बिल बैंकरों के बही खाते और इसे हम असर डिजिटल बैंकिंग तरीकाकार से मुताबिकत पैदा करने के लिए शवाहिद से मुताल्लिक कानून फराहम करता है। बैंकरों के बही खाता शवाहिद बिल 2026 में इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि बैंकरों के इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को शवाहिद के तौर पर काबिल कबूल और मजाज माना जाएगा और वो कानूनी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे। इस बिल पर बहस का जवाब देते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि ये बिल इसलाह पर मबनी कदम है जो मुल्क की तेज रफ्तार पेशकदमी में मदद करेगा। उन्होंने वाजे किया कि बैंकरों के बही खाता शवाहिद कानून को 1891 में तरतीब दिया गया था, जब बैंकिंग निजाम पूरी तरह से कागज से चलता था। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि आज भारत ने अपनी मईशत को डिजिटल शक्ल देने में काबिल जिक्र तरक्की का मुजाहरा किया है। मोहतरमा सीतारमन ने मजीद कहा कि बैंकिंग और इक्तिसादी लेन देन अब बड़े पैमाने पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए हो रहे हैं, जो अक्सर मोबाइल फोन पर आसान क्लिक के जरिए काबिल रसाई है। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि मुल्क का कानूनी फ्रेमवर्क इस तरह तब्दील हो जो इन जदीदकारियों की रफ्तार को बरकरार रख सके। इससे पहले राज्यसभा की कार्रवाई नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के खिलाफ मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलों पर अपोजिशन अराकीन की जानिब से हंगामाराई की वजह से कई मरतबा मुलतवी करनी पड़ी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज ऐवान की बिला रुकावट कार्रवाई के सिलसिले में तावुन के खातिर ऐवान के अरकान से जाती तौर पर एक अपील की। जनाब बिरला ने पार्लियामेंट हाउस में मुनाकिदा कारोबारी मशावरती कमेटी की मीटिंग के दौरान ये अपील की। जनाब बिरला ने ऐवान में तातुल पर अपने दुख का इजहार किया। उन्होंने ऐवान की कार्रवाई चलने देने के लिए ऐवान के लीडरों से एक जज्बाती अपील की कि वो वक्फा इस सवाल की कार्रवाई चलने दें और अहम बिलों पर बहस में हिस्सा लें। जनाब बिरला ने तामीरी बहस, बामायने शिरकत और आला तरीन पार्लियामानी रिवायात की पाबंदी की अहमियत पर जोर दिया। स्पीकर मौसूफ ने सभी पार्टियों से उनके तावुन की अपील की ताकि ऐवान की कार्रवाई को बिला रुकावट और मुनज्जम तरीके से चलाया जा सके और लोगों से वाबस्ता मामलात पर एक जामे और सूदबंद बहस हो सके। उन्होंने कहा कि लोगों के मामलात के सिलसिले में इस तरह से इंतजार नहीं कराया जा सकता और उनका इस ऐवान में इजहार किया जाना चाहिए, उन पर बहस होनी चाहिए और उनका हल निकाला जाना चाहिए। PAC मीटिंग के बाद पार्लियामेंट के अहाते में नामानिगारों से बात करते हुए पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि हुकूमत तलबा के हालिया एहतजाज और मुतालिका मामलात पर पार्लियामेंट में तफसीली बहस के लिए तैयार है। इस बात की यकीन दहानी कराते हुए कि वजीर दाखिला अमित शाह हर मामले पर जवाब देने के लिए तैयार हैं, जनाब रिजिजू ने कहा कि शहरियों को हकायक जानने का हक हासिल है। उन्होंने अपोजिशन पर ऐवान में नज्म व जब्त बरकरार रखने

0: और कार्रवाई में मजीद रुकावट न डालने पर जोर दिया। जनाब रिजिजू ने अपोजिशन से ऐवान की कार्रवाई चलने देने की अपील की ताकि वजीर दाखिला अमित शाह तलबा के एहतजाज के सिलसिले में बयान दे सकें और अपोजिशन अरकान की जानिब से उठाए गए सवालात का जवाब दे सकें।
1: छात्र आंदोलन पर पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूरी तरह से सुनेंगे।
0: वजीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि हुकूमत पार्लियामानी बहस से कभी पीछे नहीं हटी है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि बीएसई मीटिंग के दौरान हुकूमत ने इस मामले पर जामे बहस के सिलसिले में वाजे तौर पर अपनी आमादगी जाहिर की थी। लोकसभा ने ट्रिब्यूनल्स इस्लाही बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। इस बिल का मकसद मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स में चेयरपर्सन और अराकीन की अहलियत, आजादी और तकरूरात और खिदमात को यकीनी बनाते हुए शफाफियत में इजाफा करना है। साथ ही इस बिल का मकसद ट्रिब्यूनल्स की इंतजामिया और कामकाज को बेहतर बनाना है। यह कानून नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन के कयाम की भी तजवीज पेश करता है। लोकसभा में नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के खिलाफ मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलों पर अपोजिशन अराकीन की जानिब से हंगामा आराई के दौरान इस बिल को बगैर किसी बहसो मुबाहिसे के मंजूर कर लिया गया। हंगामा जारी रहने पर सदर नशी ने लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर मुमलिकत सुरेश गोपी ने मुत्तला किया है कि हुकूमत ने पेट्रोल में 20% से ज्यादा एथेनॉल की आमेजिश से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया है। वजीर मौसूफ ने राज्यसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में ये बात कही। जनाब गोपी ने कहा कि मुस्तकबिल में एथेनॉल की आमेजिश बढ़ाने के सिलसिले में कोई भी फैसला सिर्फ तफसीली साइंसी और तकनीकी मुताले और सभी मुतालिका फरीकों के साथ सलाह मशवरे के बाद ही किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दौलत मुश्तरका खेल 2026 में तमगे हासिल करने वाले खिलाड़ियों से कल नई दिल्ली में अपनी रिहायशगाह पर मुलाकात की। बातचीत के दौरान तमगे हासिल करने वाले खिलाड़ियों ने वजीर आजम के साथ खेलों के अपने तजुर्बात के बारे में बातचीत की। जनाब मोदी ने खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल में उनकी कामयाबियों के लिए एतमाद का इजहार किया।
2: स्पोर्ट्स व्यवस्था एक बात है लेकिन देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर बनता है। दोस्तों आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, आपको मैं बहुत बधाई देता हूं और आप विश्वास कीजिए आगे भी आप विजयी होंगे और फिर से एक बार यहीं पर हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है। झारखंड में भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेजाब्तगियों के खिलाफ तलबा की जानिब से एहतजाज के तौर पर विधानसभा का घेराव करने की कोशिश के सबब आज भी रांची में सूरत हाल कशीदा रही। पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने के लिए पानी की बौछार, आंसू गैस का इस्तेमाल और लाठी चार्ज किया। इस दौरान जेपीएससी के साबिक चेयरमैन एल क्यांगेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पेश है रिपोर्ट।
3: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की क्यादत में हजारों तलबा ने विधानसभा की जानिब मार्च किया और कई बैरिकेड्स पार करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने पानी की बौछार की और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस के मुताबिक कुछ मुजाहिरीन ने बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश की और पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने भी ताकत का इस्तेमाल किया। रांची सिटी के एसपी पारस राणा और एसपी रूरल गौरव गोस्वामी ने तलबा से अमन बरकरार रखने की अपील की और कहा कि पुलिस ने तहम्मुल से काम लिया है। मुजाहिरीन जेएसएससी सीजीएल इम्तिहानात के ताल्लुक से सीबीआई के जरिए गैर जानिबदाराना छानबीन कराए जाने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान झारखंड के सीआईडी ने भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेजाब्तगियों के सिलसिले में जेपीएससी के साबिक चेयरमैन एल क्यांगटे को गिरफ्तार किया है। दिफाई उमूर के मरकजी वजीर मुमलकत जनाब संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की नुक्ताचीनी की है, नीज सीबीआई और ईडी के जरिए छानबीन कराए जाने की मांग को दोहराया है। इस दौरान हजारीबाग से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट मनीष जायसवाल ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से बात की और इस मामले की सीबीआई के जरिए जांच कराने की तलबा की मांग को दोहराया। पुलिस कार्रवाई और जेपीएससी चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद मामला मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: इस साल 80वें यौम आजादी की तकरीबात में युवा शक्ति और विकसित भारत की तामीर में नौजवान भारत के ताउन

0: साथ साथ कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने को उजागर किया जाएगा। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए दिफा के सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने कहा कि तारीखी लाल किले से वजीर आजम नरेंद्र मोदी तकरीबात की क्यादत करेंगे, वजीर आजम कौमी परचम फहराएंगे और मुल्क से खिताब करेंगे। पहली मरतबा यौम आजादी की तकरीबात में लाल किले की फसील से कौमी गीत गाया जाएगा। मुल्क भर में जारी हर घर तिरंगा मुहिम में नुमाया तौर पर तेजी आ रही है और ये जिंदगी के सभी शोबों से ताल्लुक रखने वाले शहरियों को मुल्क के कौमी फख्र और इत्तेहाद के जज्बे का मिलकर जश्न मनाने की तरकीब दे रही है। हर घर तिरंगा मुहिम इस माह की 17 तारीख तक जारी रहेगी और ये इस साल वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह से मुताबिकत रखती है, जिसे सभी शहरियों के लिए ये एक पुरजोश मौका बन गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सभी से इस मुहिम में जोशो खरोश के साथ शामिल होने और विकसित भारत की तामीर के सिलसिले में अपने ताउन के मजमूई अजम का इरादा करने पर जोर दिया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सभी शहरियों से इसमें शामिल होने और तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली और बड़े पैमाने पर वंदे मातरम गाकर और तिरंगा फहराकर और हरघरतिरंगा.com पर सेल्फी अपलोड करके जश्न मनाने की अपील की है। उधर जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा मुहिम के एक हिस्से के तौर पर सभी अजला में तिरंगा यात्रा और हुब्बुल वतनी के प्रोग्रामों का एहतमाम किया जा रहा है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि आबनाए हुरमुस तब तक नहीं खुलेगी जब तक वॉशिंगटन तेहरान के खिलाफ अपनी बहरी नाकाबंदी जारी रखेगा। तेहरान में आज हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग से खिताब करते हुए बकाई ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइली फौज की जारहियत की वजह से तवानाई की सप्लाई की अहम बहरी गुजरगाह आबनाए हुरमुस को बंद किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आबनाए हुरमुस का दोबारा खोला जाना अमरीका और इसराइली हुक्काम की जानिब से ईरान पर आयद की गई शराइत पर मुनहसिर है। भारतीय महकमा मौसमियात ने कल हिमाचल प्रदेश और मशरक राजस्थान में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे के मुताबिक कल अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, छत्तीसगढ़, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, वस्ती, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड, मगरबी मध्य प्रदेश और मगरबी राजस्थान में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। FIH मर्दों और खवातीन के हॉकी आलमी कप 2026 के मुकाबलों में ढांचा जाति तब्दीली की गई है। रिवायती क्वार्टर फाइनल मरहला खत्म कर दिया गया है और दो क्रॉस ओवर पूल्स के जरिए टीमें सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। बेल्जियम और नीदरलैंड मुश्तरका तौर पर इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे। यह टूर्नामेंट इस माह की 15 तारीख से शुरू होकर 30 तारीख तक जारी रहेगा। नए फॉर्मेट के तहत टीमों के लिए इब्तिदा से गलती की गुंजाइश बहुत कम होगी क्योंकि इब्तदाई मरहले के नतीजे अगले मरहले पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। भारतीय मर्दों की टीम को इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ पूल डी में रखा गया है, जबकि भारतीय खवातीन खिलाड़ी पूल डी में चीन, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमों से मुकाबला करेंगे। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। पार्लियामेंट ने मुल्क के मैन्युफैक्चरिंग इको निजाम को मुस्तहकम करने, सरमायाकारी रागिब करने और रोजगार के मौके पैदा करने की खातिर टैक्सेशन बिल को मंजूर कर लिया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने यकीन दहानी कराई है कि UPI लेन देन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को शवाहिद की हैसियत से कानूनी तौर पर तस्लीम किए जाने से मुतालिक कानून को भी पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी है। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पर जोर दिया है कि वो तलबा के एहतजाज से मुतालिक मामलात पर वजीर दाखिला अमित शाह के बयान के लिए लोकसभा की कार्रवाई चलने दे। झारखंड में भर्ती इम्तिहानात में बेजाब्तगियों पर तलबा के एहतजाज में तेजी आ गई है। तलबा ने पुलिस कार्रवाई के दरमियान रांची में असेंबली की जानिब मार्च किया। और 80वें यौम आजादी की तकरीबात में युवा शक्ति और विकसित भारत 2047 के लिए नौजवान भारत के ताउन को उजागर किया जाएगा। पहली मरतबा वंदे मातरम लाल किले की फसील से गाया जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, जिंदगी एक खूबसूरत सफर है और हर इंसान की चाहत रहती है कि हंसी खुशी ये सफर यूं ही चलता रहे, लेकिन प्रकृति का ये विधान है कि एक ना एक दिन ये सफर भी पूरा होगा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जब ये सफर खत्म होगा तब क्या हमारे पीछे

0: ऐसा कुछ रह सकता है जो किसी और हम सफर के जीवन के बुझते हुए चराग को रोशन कर दे। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अंग दान की। एक ऐसा दान जो इंसान को उसकी मृत्यु के बाद भी अमर बना सकता है। भारत में हर साल लाखों लोग दोस्तों सिर्फ इसलिए समय से पहले दम तोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें कोई अंग जैसे किडनी, लिवर या हृदय नहीं मिल पाया। अस्पतालों के गलियारों में अपनों की जिंदगी की याचना करते परिवारों की आंखें किसी चमत्कार की उम्मीद में पथरा जाती हैं। जरा सोचिए, एक तरफ एक जिंदगी खत्म हो रही होती है और दूसरी तरफ उस पर निर्भर कई और जिंदगियां भी किसी एक अंग के न मिल पाने की वजह से कठिनाई झेलती हैं। अंगदान इसी समस्या के निवारण का एक रास्ता है, लेकिन इसे लेकर मौजूद हैं बहुत सी भ्रांतियां भी, जिनकी वजह से बहुत से इच्छुक लोग भी परोपकार के इस महान कार्य को या तो कर नहीं पाते या हिचकिचाते हैं। और ऐसी ही तमाम भ्रांतियों को दूर करने के लिए आज पब्लिक स्पीक में हमने विषय तय किया है, अंगदान, भ्रांतियों का निवारण और जीवन रक्षा। और इसके लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अपने खास मेहमानों को। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली से पधारे नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिन्हा। स्टूडियो में आप दोनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।
1: नमस्कार।
0: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आम तौर पर जैसा कि लोगों के जहन में रहता है कि अंगदान जो है वो है तो एक बहुत ही अच्छा, एक नेक कार्य है, लेकिन यदि हमारे माता पिता में से या संबंधी में से कोई एक ऐसी प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर गए हैं तो जहन में ये आता है कि अब यदि हम वो अंगदान के लिए तैयार हो भी जाते हैं तो ये नहीं पता होता कि शायद कितने समय में हम संपर्क करें और क्या हमें उनका जो शरीर है, जो पार्थिव शरीर है, वो इस अवस्था में हमें मिल पाएगा कि उसे देखकर दिल को किसी तरह की ठोस ठेस ना पहुंचे और क्षत विक्षत वो स्थिति में न हो, जैसे कि आम तौर पर लोग सोचते हैं और इस वजह से फिर वो हिचकिचा जाते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि कितना समय जो है वो आदर्श माना गया है अंगदान के लिए मृत्यु के बाद।
1: मृत्यु के बाद अंगदान के लिए आमतौर पर एक आईसीयू में जब मरीज दाखिल होता है और उसको आइडेंटिफाई किया जाता है ये जांच द्वारा कि उसके मस्तिष्क की मृत्यु हो चुकी है तो ब्रेन डेड हो उसको घोषित किया जाता है। और इसमें एक बार नहीं, दो बार परीक्षण किए जाते हैं और चार डॉक्टरों की टीम इसको सर्टिफाई करती है। तो उसके बाद ये ब्रेन स्टेम डेड डिक्लेयर करने के बाद में तो उसका उसको हम मेंटेन करके रखते हैं, सपोर्ट सिस्टम को हटाते नहीं हैं। अगर परिवार अंगदान की हामी भरता है तो उसके सारे ऑर्गेन्स जो डोनेट हो सकते हैं और वो दूसरों की जिंदगियां बचा सकते हैं, उसके साथ साथ उसके टिश्यूज भी डोनेट हो सकते हैं। तो टिश्यूज जो होते हैं वो इवन नेचुरल डेथ जो होती है, प्राकृतिक मृत्यु होती है या घर में मृत्यु हो जाती है या आईसीयू में नहीं होती, किसी वार्ड में मृत्यु हो जाती है, तो उनमें टिश्यू जैसे कॉर्निया, स्किन है, बोन्स हैं, वो भी डोनेट हो सकते हैं। और लेकिन अंगदान आम तौर पर जब आईसीयू में मरीज की मृत्यु होती है तो उसमें 8 लोगों तक की जिंदगी बच सकती है, जिसमें 2 किडनीज है, लिवर है, हार्ट है, 2 लंग्स हैं, फेफड़े जो बोलते हैं, और इंटेस्टाइन और पेनक्रियाज भी दान हो सकते हैं। तो इसमें सभी को आगे आना चाहिए, ये एक नेक मुहिम है और सभी को इससे जुड़ना चाहिए।
0: शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एक श्रोता हिसार हरियाणा से, राजेंद्र।
2: नमस्कार जी मनीष जी और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी।
0: नमस्कार राजेंद्र जी, क्या सवाल है आपका?
2: मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाथ या पैर कोई डैमेज हो जाए तो दोबारा से लगवाना चाहे तो वो क्या लग सकता है, और दूसरा है ये आंख दान की हुई किन लोगों को नहीं लग सकती, ये जानना था। नमस्कार जी।
0: जी, तो आपने 2 तरह के प्रश्न किए, एक तो खास तौर पर नेत्र से संबंधित है तो उसका जवाब आपको देंगे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के जो विशेषज्ञ है, नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिन्हा, और दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल कुमार। तो मैं पहले

0: आपसे ये निवेदन करता हूं डॉक्टर अनिल कि इनकी जो ये शंका है उसका निवारण आप करें।
1: बिल्कुल, हाथ का भी दान होता है और हाथ भी प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट किए जाते हैं और हमारा देश पूरे दुनिया में हार्ट हैंड ट्रांसप्लांट के मामले में जो हाथ का ट्रांसप्लांट है, जैसे किसी के हाथ कट गए हैं किसी दुर्घटना में, कहीं मशीन में कट गए या, तो उस तरह के सिचुएशन में भी हाथ का दान करके भी हम उनका हैंड ट्रांसप्लांट करके और वो भी 6 घंटे के अंदर ही हमें मृत्यु के उनका हाथ का दान कर देना होता है, तो वो आराम से उनको लगा करके, और 80 से ज्यादा हार्ट ट्रांसप्लांट हमारे देश में हैंड ट्रांसप्लांट हो चुके हैं और ये दुनिया में आंकड़ा नंबर 1 पर है भारत का जो हैंड ट्रांसप्लांट का आंकड़ा है।
2: जहां तक नेत्र का सवाल है, आपका सवाल ये था कि किन लोगों को नेत्र दान करने के बाद भी ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि नेत्रदान का मतलब यह होता है कि जो कॉर्निया से रिलेटेड, जो आगे जो पुतली होती है, जो ट्रांसपेरेंट जो पारदर्शक पुतली होती है, उसका ट्रांसप्लांट किया जाता है। उसमें जब सफेदी आ जाए तो फिर लोगों को उसके कारण अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो वो जो सफेद पुतली है उसे हटाकर जो ट्रांसपेरेंट डोनर कॉर्निया है उसे लगाया जाता है। जो मरीज जिनकी नस सूख गई हो या पर्दा खराब हो गया हो या फिर एक होते हैं दिमागी रूप से उनको दिखाई कम देता है जैसे कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं, वैसे मरीजों को हम पुतली लगा के भी उनकी नज़र को हम वापस नहीं ला सकते।
0: तो उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और एक और हमारे श्रोता हैं हिमाचल प्रदेश शिमला से, और हमारे श्रोता हैं राकेश। राकेश जी क्या प्रश्न है आपका, कहिए।
3: जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश, और मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे दिव्यांग व्यक्ति हैं या दृष्टि बाधित लोग हैं, क्या वो अंगदान के पात्र हो सकते हैं या उनको दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ये मेरा प्रश्न है।
0: अंगदान के पात्र हो सकते हैं क्या दिव्यांग व्यक्ति, ये इनका प्रश्न है।
1: मृत्यु उपरांत तो दिव्यांग व्यक्ति हो या दृष्टिहीन व्यक्ति हो, अगर उनके जो भी अंग जो अंग बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं और हेल्दी पाए जाते हैं तो उनको दान किया जा सकता है। जब जीवित व्यक्ति जैसे कि कुछ अंग दान कर सकते हैं, किडनी या लिवर का हिस्सा, तो उसमें उनका मेडिकली फिट होना ज़रूरी होता है, तो और वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं जो जहाँ पे ट्रांसप्लांट होता है कि अगर वो मेडिकली उनको फिट समझते हैं तो ही उनका दान किया जाता है। आमतौर पे दिव्यांग व्यक्तियों के अंग, क्योंकि उनके अपने आप ही एक दिक्कत है तो उनको शायद फिटनेस नहीं मिलेगी अंग दान करने के लिए, लेकिन एज सच मृत्यु उपरांत अंग दान में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं है।
0: जी, तो राकेश जी का जो सवाल था दिव्यांग व्यक्तियों के विषय में, आशा है हमारे अन्य श्रोताओं को भी ये जानकारी मिल ही गई है कि वे भी कर सकते हैं, किंतु ये एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि वो स्वयं एक कठिनाई से गुजर चुके हैं। तो इस प्रकार जो स्पष्टीकरण दिया है डॉक्टर अनिल ने वो आप तक पहुंचा है। और डॉक्टर साहब, एक और बड़ा ही हास्य की स्थिति होती है कि अंग दान जो है, जहाँ तक बड़े शहरों की बात है, देश की राजधानियाँ हैं या जो महानगर हैं, वहाँ पर शायद ये बहुत सरलता से हो सकता है, लेकिन जो ऐसे व्यक्ति हैं हमारे जो दूर दराज के गांवों में कस्बों में रहते हैं, और यदि उनकी ऐसी इच्छा हो तो वो कहाँ भला फिर वो इसके लिए संपर्क करें, इस विषय में आप हमें बताइए।
1: इसमें अंग दान के लिए एक तो हम कहते हैं कि आप रजिस्टर करवा लें, तो वो प्रक्रिया डिजिटली अवेलेबल है। नोटो की वेबसाइट पे जाके आप अंग दान 1 मिनट में अपने आधार से अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करके एक छोटा सा फॉर्म भरना होता है कि पेरेंट्स के डिटेल हैं, कौन से अंग और उत्तक आप दान करना चाहेंगे मृत्यु उपरांत, तो वो फॉर्म भरने की प्रक्रिया मात्र 1 मिनट की है। उसको आप वेबसाइट से जाके noto.mohfw.gov.in पर आप वो फॉर्म भर सकते हैं और आधार से सत्यापित ये फॉर्म होता है।

0: दूसरा, आप हमारा 24/7 हेल्पलाइन नंबर है, वो नंबर मैं बता देता हूं, 1-800-114770, 1-800-114770। तो ये 24 घंटे चलने वाला नंबर है, कहीं से भी आप कोई अंग दान के लिए रजिस्टर करना चाहे या अंग दान करवाना चाहे तो ये राष्ट्रीय हेल्पलाइन है, उसके द्वारा हमारी टीम जो इसको मैनेज करती है वो वहीं के नज़दीक के ही अस्पताल से टीम भेज कर की मृत्यु उपरांत भी अगर आप जानकारी देते हैं तो कॉर्निया डोनेशन है होता है तो वो नज़दीक के आई बैंक से टीम जा करके कॉर्निया का दान करवा पाएगी। लेकिन आपको जानकारी सही समय पर देनी है, समय से देनी है, 6 घंटे तो मैक्सिमम टाइम हम लोग रिकमेंड करते हैं, तो आपको टाइम से फोन कर देना है तो आपका ये सब हो जाएगा, चाहे आप कहीं भी दूर दराज भी एरिया में भी हो तो।
1: धन्यवाद डॉक्टर अनिल। और हमारे एक और श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं पूर्वोत्तर भारत में त्रिपुरा से, और आप हैं अविनाश। अविनाश, क्या है आपका प्रश्न, कहिए।
2: जी नमस्कार, और डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: जी मेरा सवाल यह है कि देखिए, मतलब कि जो लोग अंग दान करना चाहते हैं और उनके परिवार भी पहले राजी हो जाते हैं और अपना फॉर्म पे मतलब कि सारा कुछ फिलअप कर लेते हैं, लेकिन बाद में वो उस पेशेंट की मृत्यु के बाद अगर उनके परिवार फिर से नकार जाएगा, नहीं इनका अंग दान नहीं करवाएंगे, तो फिर उस वक्त हम क्या कुछ कर सकते हैं?
3: देखिए ऐसा है कि कोई भी अंग दान अगर होना है तो जिस इंसान की मृत्यु हो गई है तो उनके जो परिवारजन हैं, जैसे उनके बच्चे या उनके लड़के लड़कियां या उनके पोते पोतियां भी, वो उनका कंसेंट जरूरी होता है। अगर वो कंसेंट नहीं देते हैं तो उनका अंग दान नहीं हो सकता है।
1: जी तो अविनाश, उम्मीद है आपको अपने इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जो है वो मिल गया है। और नेत्रदान के ही विषय में डॉक्टर राजेश, एक और सवाल अक्सर ये आता है कि कौन लोग नेत्रदान कर सकते हैं, लाइक किसी बीमारी, उम्र या अन्य कारण जिससे ग्रसित व्यक्ति, क्या ऐसा कुछ है कि वो नेत्रदान नहीं कर सकते? लेकिन आपसे हम इस प्रश्न का उत्तर लेंगे अपने श्रोता के इस प्रश्न के बाद। हमारे श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं कोल्हापुर से, महाराष्ट्र से, और आप हैं विजय कुमार सहनी। जी विजय जी कहिए। जी प्रश्न पूछिए। हाँ, विजय जी।
4: हाँ मनीष जी।
1: जी
4: मनीष जी नमस्कार।
1: नमस्कार
4: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
3: नमस्कार, नमस्कार।
4: मैं विजय कुमार स्वामी बोल रहा हूँ, गांव बस्तवा तहसील से, जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से। मेरा सवाल यह है कि मैं अंग दान करना चाहता हूँ, इसका प्रोसीजर जरा बताइए हमें।
1: अंग दान आप करना चाहते हैं और उसका प्रोसेस यानी उसकी प्रक्रिया क्या है ये जानना चाहते हैं।
0: हाँ, तो जैसे अभी हमने बताया पहले भी कि आप ये डिजिटल माध्यम से अंग दान के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं एडवांस में ही, क्योंकि आप अभी पूरे होशोवास में हैं, आप अपने लिए सोच सकते हैं। तो नोटो की वेबसाइट, मैं वेबसाइट फिर बता देता हूं, noto.mohfw.gov.in, या नोटो भी लिखेंगे तो ये वेबसाइट आ जाएगी। तो आप इस वेबसाइट पे जाकर के अपना रजिस्टर फॉर प्लेज को क्लिक करेंगे तो आपका वो अपना आधार नंबर डालेंगे तो आधार नंबर के बाद एक OTP आएगा आपके मोबाइल में, तो आपका मोबाइल आपके पास होना चाहिए जो आधार से लिंक्ड है और आधार नंबर आपको पता होना चाहिए। तो आपका घर का कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा बहुत भी इसको जानकारी रखता है वो कर पाएगा। एक मिनट का आपके, उसके बाद आपको अपने एक फॉर्म भरना है, उसमें अपने माता पिता का नाम और कौन से अंग वगैरह आप दान करेंगे और इमरजेंसी के कॉन्टेक्ट डिटेल्स देने होते हैं। आप फॉर्म को सबमिट करेंगे, आपका ई डोनर कार्ड तुरंत आपके मोबाइल पर ही डाउनलोड कर सकते हैं, और 24 घंटे की आपको कोई हेल्प चाहिए वो हेल्पलाइन नंबर मैं पहले भी बता चुका हूँ, उस हेल्पलाइन पे आप कॉल करके अंग, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा जो कॉलर पे वहां पे बैठा है वो आपका अंगदान तुरंत आपका

0: रजिस्टर करवा देगा। तो इसमें लेकिन आप ये आप मान के चलिए कि अंग रजिस्टर करने के बाद भी अंगदान के लिए परिवार को बताना बहुत जरूरी है, परिवार में डिस्कस करना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही उनकी सहमति के बिना आपका अंगदान, जैसे डॉक्टर साहब ने भी अभी बताया, आपका अंगदान मृत्यु उपरांत नहीं हो पाएगा। तो परिवार को बताना, उनसे डिस्कस करना कि ये मेरी इच्छा है और ये इसमें सहयोग करें आपकी मृत्यु के उपरांत, तो वो फिर जब भी कॉल करेंगे, हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे चलता है, आप उस पर कॉल करके आप ये प्रक्रिया को पूरा आपका परिवार करवा सकता है।
1: धन्यवाद डॉक्टर अनिल। और जो श्रोता हमसे अभी अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता दें, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक और आज हम बात कर रहे हैं अंगदान, भ्रांतियों का निवारण और जीवन रक्षा विषय पर चर्चा। और दोस्तों, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिन्हा। दोस्तों, ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। और हमारे एक श्रोता जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से, श्रीकांत चाकरे। जी श्रीकांत जी, क्या है आपका प्रश्न, कहिए।
2: हेलो
1: जी जी,
2: नमस्कार।
1: नमस्कार
2: श्रीकांत, बोल रहा हूँ मैं पूरे महाराष्ट्र से। तो मेरा सवाल ये है कि मेरा नेत्र का ऑपरेशन हुआ है, मेरा रेटिना का, तो उसमें मेरी जो ज्योति चली गई है आंखों की, तो इसी केस में कोई यदि डोनर मिलता है तो उससे कोई फायदा हो सकता है क्या, आई डोनेट करने वाला जो है।
1: जी, आपके प्रश्न का उत्तर देंगे डॉक्टर राजेश। जी जी
3: जी, ऐसा है श्रीकांत जी कि आपका आपकी जो नजर गई है वो पर्दे की खराबी के कारण गई है, और वो नज़र पुतली के खराबी के कारण नहीं गई है। और जो नेत्रदान होता है उस पर हम पुतली बदलते हैं, और यदि पुतली तभी बदलते हैं जब पीछे का पर्दा अगर हेल्दी है या फिर नस सूखी ना हो। तो क्योंकि आपका पर्दा पर्दे में खराबी है और आपकी नज़र पर्दे की खराबी के कारण गई है, तो नेत्रदान करने से उसका फ़ायदा नहीं होगा, जब बल्कि आपको किसी पर्दे के स्पेशलिस्ट के पास दिखाना चाहिए और वो एक बार फिर से पर्दे का ऑपरेशन करके, उसका इलाज करके आपकी नजर को वापस ला सकते हैं।
1: श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की फोन लाइंस बराबर खुली हुई हैं, हमारे नंबर हैं 0112331081 और 2371717 तथा 2371710। लेकिन इन नंबरों से पहले भूलिए नहीं 011 अवश्य लगाइए। और व्हाट्सएप नंबर भी हम आपको बता देते हैं अपना 9289094044। और हमारे एक और श्रोता जुड़ रहे हैं हमसे मथुरा उत्तर प्रदेश से, चौधरी महेंद्र सिंह। जी चौधरी साहब, बताइए क्या है आपका सवाल।
4: स्टूडियो में आमंत्रित आदरणीय विशेषज्ञ महोदय, नमस्कार।
3: नमस्कार
4: सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति अपनी खुशी से नेत्रदान करना चाहे और परिवार भी सहमत हो, तो ये इन्फॉर्मेशन दानकर्ता को कहाँ देनी होगी, वो टीम घर आएगी या फिर कोई न कोई उनको खबर देनी होगी। दूसरी बात ये है सर कि मृत्यु के बाद कई घंटे तक वो रोशनी बरकरार बनी रहती है।
3: जी हाँ, एक्चुअली मृत्यु के बाद जल्दी से जल्दी नेत्रदान कर देना चाहिए। जहाँ तक समय का सवाल है, पहले 6 घंटे बड़े कीमती होते हैं, उन 6 घंटों में यदि नेत्रदान कर दिया जाए तो उसका उपयोग बहुत सही तरीके से हो सकता है। और उसके बाद भी अगर मौसम अगर ठंडा हो, अगर सर्दियों का मौसम हो, तो उसमें हम 8-10 घंटे तक भी, या फिर बॉडी को अगर बर्फ पर लिटाया हुआ हो, ठंडे वातावरण में रखा गया हो, तो हम आगे भी 8-10 घंटे और 12 घंटे तक भी हम नेत्र को निकाल कर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। और जहाँ तक इनका पहला सवाल था,

0: खबर कर।
1: हाँ, पहला सवाल ये था कि आप खबर किस कैसे करेंगे कि यदि मृत्यु हो गई हो तो नियरेस्ट जो भी कलेक्शन सेंटर हो, आप जिस शहर में हैं उस शहर का जो कलेक्शन सेंटर है, जो भी कोई आई बैंक है वहाँ पर, तो आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर डॉक्टर साहब ने जैसा नोटो का नंबर बताया था वहाँ कर सकते हैं, और एक नेशनल आई बैंक का नंबर है 9999168374। तो दिल्ली NCR में यदि किसी की मृत्यु हुई हो तो ये नेशनल आई बैंक के इस नंबर पे भी फ़ोन कर सकते हैं, जो कि 24 घंटे खुला रहता है, और उससे आप जानकारी दे सकते हैं और नेत्रदान कर सकते हैं।
2: श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आज का विषय है अंगदान, भ्रांतियों का निवारण और जीवन रक्षा। और हमारे साथ एक और श्रोता ठाणे महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, गुरुनाथ। गुरुनाथ जी, कहिए क्या है आपका सवाल।
3: जी सर, नमस्कार।
2: नमस्कार
3: सर, मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे ये अंगदान का जो प्रोसीजर के बारे में पूछना था। जैसे कोई एक आदमी कोई मतलब मरने से पहले जो मतलब अंगदान का जो संकल्प पत्र कुछ लिख के देता है कि मेरे मरणोपरांत मुझे ये अंगदान करना है, तो इसके बाद जो रिलेटिव का जो रोल होता है, अगर वो इसने क्या मतलब नियम है कि रिलेटिव अगर उस टाइम भी न अगर चाहेंगे कि नहीं देना है, बॉडी नहीं देनी है अंगदान के लिए, तो ये पूछना था कि रिलेटिव का इसमें क्या रोल होता है। थैंक यू।
1: देखिए, रिलेटिव का रोल हमने पहले भी बताया, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप संकल्प पत्र भरने के बाद भी जो डिजिटल प्लेज आप ले लेते हैं, आप उसमें भी दो नंबर हम लोग पूछते हैं रिश्तेदारों के, उनके नंबर भी भरवाते हैं कि आपके क्लोज रिलेटिव, तो आप उनको बताएं जरूर कि आपने संकल्प पत्र लिया है और आप चाहते हैं कि आप मृत्यु के बाद आपके अंगदान हो। तो वो रिलेटिव को अगर आप सबको बता के रखेंगे, डिस्कस करेंगे, और उनके कोई अगर डाउट है तो उसको पहले से ही उनको दूर करेंगे, तो ऐसा आमतौर पे नहीं होता कि रिलेटिव ऑब्जेक्शन करें। कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन ज्यादातर में अगर आपने इच्छा जाहिर की है तो हम लोग सभी एक फर्ज समझते हैं कि हमारी एक फर्ज है कि हम आपकी उस इच्छा को पूर्ण करवाएं। ये भी परिवार के लोगों का भी यही भावना रहती है। तो आप बताएं जरूर, ऐसा ना हो कि किसी को पता ही ना हो कि आपने प्लेज ली थी। और आपका जैसे मैंने पहले भी राष्ट्रीय हेल्पलाइन का नंबर बताया, मैं फिर बता देता हूं, 1800-11-4770, 24 घंटे नंबर खुला है। आप उस पर कॉल करके कोई भी जानकारी मृत्यु की भी दे सकते हैं और वो टीम आपको फैसिलिटेट करेंगी। जी
2: जी, हमारे एक और श्रोता दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मोहम्मद कासिम, या जिस तरह से शायद ही लिखा है, मोहम्मद काजिम जी, कहिए क्या प्रश्न है आपका।
4: जी नमस्कार।
2: जी जी नमस्कार।
4: मेरा सवाल दो सवाल है। पहला सवाल यह है कि एक बार हमें अगर दान की मदद से अंग लगे हों तो क्या हम वो अंग डोनेट कर सकते हैं? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि जो अबाउटिस क्रिप्टोफॉल्मस की बीमारी है, क्या इसमें आई डोनेशन की जा सकती है?
2: जी,
1: जहां तक आपने कहा क्रिप्टोफॉल्मस की बीमारी है, तो उसमें ये कहना बहुत मुश्किल है कि आंख के अंदर की स्ट्रक्चर इंटैक्ट है या नहीं है और सही है या नहीं है। तो यदि किसी को ऐसा है तो उसके नेत्रदान करने से शायद बहुत ज़्यादा फायदा ना हो सके, क्योंकि कई बार क्रिप्टोफॉल्मस में पुतली भी खराब रहती है और उस पुतली का डोनेट करने का फायदा नहीं होता है।
2: जी शुक्रिया डॉक्टर राजेश। और हमारे एक और श्रोता मध्य प्रदेश के छतरपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रशीद अहमद खान जी।
5: नमस्ते सर।
2: नमस्कार। नमस्कार।
5: सभी देशवासियों को आगामी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं सर।
1: आपको भी।
2: आपको भी।
5: जी मतलब दो छोटे छोटे सवाल, एक तो बॉडी में सर सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है, एक बात। दूसरी बात ये कि क्या लिवर, तो शायद अपन लोग जीते जी कुछ पार्ट उसका डोनेट कर देते हैं, तो कितना परसेंट डोनेट कर सकते हैं, प्लीज बता दीजिए।
2: जी हमारा जो देखिए आज का विषय है उससे ताल्लुक तो आपका दूसरा सवाल रखता है,

0: लेकिन फिर भी दोनों ही सवाल आपके महत्वपूर्ण हैं और डॉक्टर साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आपकी शंका का समाधान करें। डॉक्टर अनिल
1: जी, जी वैसे देखा जाए तो जो सॉलिड ऑर्गन है उसमें लिवर को ही सबसे बड़ा ऑर्गन माना जाता है। वैसे जो स्किन है, टिश्यू जो पूरे बॉडी को कवर करता है, वो भी एक बहुत बड़ा मतलब टिश्यू के रूप में आता है। और लिवर का कितना हिस्सा दान किया जाता है, ये डिपेंड करता है कि जो लेने वाला, जिसको लगना है, अगर वो कोई बड़ी शरीर वाला व्यक्ति है जिसको हाई बड़े वॉल्यूम की ज़रूरत है, तो लिवर का आमतौर पे एक पार्ट दिया जाता है। एक दो लोब होते हैं लिवर में, राइट लोब और लेफ्ट लोब। तो एक लोब आमतौर पे दिया जाता है, या तो राइट साइड का या लेफ्ट साइड का। तो लेफ्ट राइट का बड़ा होता है और लेफ्ट का छोटा होता है। तो लेफ्ट होता है आमतौर पे 30-40% और राइट होता है 50-70% तक। तो अगर जिसको बड़े वॉल्यूम की ज़रूरत है मरीज को, तो उसको राइट लोब लगा दिया जाता है, और जिसको छोटे वॉल्यूम से भी काम चल जाएगा, लीन एंड थिन कम वेट का रेसिपिएंट है, पेशेंट लेने वाला है, तो उसको लेफ्ट लोब लगा दिया जाता है। तो आमतौर पे एक लोब लगता है, या तो राइट या लेफ्ट लोब।
0: जी, और हमारे जो श्रोता हमसे अभी जुड़े हैं उनको हम बता दें कि हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 9289094044, और आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। और डॉक्टर राजेश, जैसे कि आपसे मैं एक सवाल कर रहा था जो हमारे श्रोता जब हमसे बात करने लगे तो वो शायद बीच में छूट गया, कि कई बार ये शंका जाहिर करते हैं कि लोग अगर इच्छुक होने पर भी क्या वो नेत्रदान कर सकते हैं अगर उन्होंने कैटरेक्ट की सर्जरी जो है वो करा ली है या ज्यादा नंबर का चश्मा पहनते हैं, तो उनकी इच्छा है तो क्या वो इस पुण्य कार्य में सहभागी हो सकते हैं?
2: जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। यदि कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है उसके बाद पुतली बिल्कुल ठीक है तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। और चाहे चश्मा लगाते हों, कितना भी बड़ा नंबर हो, उससे मतलब नहीं है। पुतली स्वस्थ होनी चाहिए, कॉर्निया हेल्दी होनी चाहिए, और ये सारे लोग जिन्होंने जो भी ये इस तरह का ऑपरेशन कराया हुआ है, यदि उनकी पुतली ठीक है तो वो कॉर्निया डोनेट कर सकते हैं।
0: जी, तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो श्रोता हैं आज हमसे जुड़े और उनकी जो शंकाएं हैं उनका समाधान वो हुआ, लेकिन फिर भी एक बहुत अहम सवाल दिल में ये आता है कि इतना जो पुण्य कार्य करते हैं लोग जो अंगदान का, क्या उनके प्रोत्साहन के लिए भी डॉक्टर अनिल किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है?
1: भारत सरकार के जो कार्यक्रम, एक राष्ट्रीय अंग कार्यक्रम, अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हम लोग उनके एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए भारत सरकार की तरफ से एक राशि दी जाती है। और आजकल और उनको एक ये प्रावधान है कि उनकी बॉडी को बहुत रेस्पेक्टफुली हम लोग हैंडओवर करें, और उसमें उनके हैंडओवर करने के लिए हम लोग उसको एक शॉल या एक बुके ऑफ फ्लावर या एक सर्टिफिकेट भी दे जाता है उनको अंगदान की इस नेक मुहिम के लिए आगे आने।
0: धन्यवाद डॉक्टर अनिल। और दोस्तों, वक्त हो रहा है कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का। हम अपने श्रोताओं के आभारी हैं जिन्होंने फोन लाइंस और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हमारे साथ थे राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिन्हा। स्टूडियो में आने के लिए, श्रोताओं के प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज्ञा दीजिए मुझे
1: धन्यवाद
0: शर्मा को। नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: आकाशवाणी है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे।
4: माननीय सभासदो, माननीय सभापति जी,
5: क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन नंबर 226 दाखिल, लक्ष्मण गौरव।
3: प्रश्न संख्या 226। क्या विद्युत मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क विद्युत संशोधन नियम 2026 तथा
6: राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 के प्रारूप के अंतर्गत प्रस्तावित प्रमुख उद्देश्य तथा प्रमुख सुधार क्या हैं? ख, इन सुधारों से विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता में सुधार, परिचालन दक्षता में वृद्धि तथा उपभोक्ताओं को विश्वसनीय एवं 2400 घंटे बिजली आपूर्ति किस प्रकार सुनिश्चित होने की संभावना है, और ग, इन सुधारों को अंतिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों से परामर्श करने तथा देश भर में इनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?
5: फर्स्ट सप्लीमेंट्री डॉक्टर के लक्ष्मण गारू
7: सर, अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ अवर बिलोड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इंडिया पावर सेक्टर हैज अंडरगॉन ए हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन विद ए स्ट्रांग फोकस ऑन एंश्योरिंग अफोर्डेबल रिलायबल एंड सस्टेन इलेक्ट्रिसिटी फॉर एवरी ईयर एंड ड्यू टू मोदी जी गवर्नमेंट पॉलिसीज स्टेट्स लाइक तेलंगाना हैज विटनेस रैपिड ग्रोथ इन इंडस्ट्रीज data centers, urban infrastructure leading to increasing electricity demands, which has significant potential for solar energy, including decentralized and agricultural solarization. So through you, I request the Honorable Minister to explain how the proposed reforms will encourage greater adoption of distributed renewable energy, battery energy storage, and smart distribution system in states like Telangana, while ensuring the financial sustainability of DISCOM. Thank you, sir.
6: Shri Manohar Lal, Vidyut Mantri.
8: Samapati Mahoda, National Electricity Policy 2026. Isko tayar karne mein distributed renewable energy, battery energy storage aur smart distribution system ko badhawa dene ke liye distribution utility ki financial sustainability mazboot karne ke liye kai pradhan shamil kiye gaye hain. और जो प्रावधान बनाए गए हैं वो सारे देश भर के लिए लागू होंगे और तेलंगाना में भी उसी प्रकार से उनको लागू किया जाएगा. डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी तीव्रता से लाने के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी स्टोरेज के साथ सबसे पहले रूफ टॉप सोलर, उसके बाद पीयर टू पीयर एनर्जी ट्रेडिंग, इस प्रकार के प्रावधान, रिन्यूएबल एनर्जी को ओपन एक्सेस, इसमें भी सेल्फ सेल करने का प्रावधान रखा गया है. लोकेटेड स्टोरेज अर्थात जहां जनरेशन होगी उसके निकट ही स्टोरेज के प्रावधान, चाहे बैटरी स्टोरेज के हो अथवा पंप स्टोरेज के हो, उनको रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा गया है. और इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज एग्रीगेटर को बेहतर रिन्यूएबल एनर्जी का फोरकास्टिंग और शेड्यूलिंग को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी हमेशा एनवायरमेंट के ऊपर निर्भर करता है और एनवायरमेंट की फोरकास्टिंग और शेड्यूलिंग एक बहुत इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान है. इसलिए ये पॉलिसी अपने सभी आयामों को ध्यान में रखकर के बनाई गई है और इस पॉलिसी में नए प्रकार की टेक्नोलॉजी जैसे फ्लोटिंग सोलर, एग्री फोटोवोल्टिक सॉल्यूशन और रिन्यूएबल एनर्जी के ट्रांसमिशन ऑप्टिमाइज डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करता है. अर्थात सोलर एनर्जी को अधिक से अधिक उपयोग हम कैसे कर सके, इसका भी इसमें प्रावधान रखा गया है. वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी को मैनेज करने, ग्रिड स्टेबिलिटी, क्योंकि ग्रिड स्टेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट इसमें आता है, क्योंकि ये डे टाइम में ही, यानी सोलर एनर्जी डे टाइम में ही मिलेगा और ग्रिड की स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए हमको उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है. उसको सुधारने के लिए, पीक डेफिसिट को कम करने के लिए बैटरी स्टोरेज सिस्टम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बैटरी स्टोरेज सिस्टम, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, इनको लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज टेक्नोलॉजी, बैटरी कंपोनेंट को भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अब से पहले बैटरी के कंपोनेंट ये सभी इंपोर्ट करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब क्योंकि हमें अपने मेक इन इंडिया के आधार पर और सभी प्रोडक्ट को हम जो डोमेस्टिक मार्केट बेस प्रोत्साहन को इसको बढ़ावा दे रहे हैं. धन्यवाद. स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए ये ड्राफ्ट जो पॉलिसी बनाई गई है जिसको सर्कुलेट किया गया था और सभी जो भी इसमें स्टेक होल्डर थे सबका कंसल्टेशन कर लिया गया है, ये फाइनलाइज करने के राह पर है. और इसके अंदर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की डिप्लॉयमेंट, इसके बारे में पूछा गया. डिस्ट्रीब्यूटर एनर्जी रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑपरेटर एंड डीएसओ फ्रेमवर्क ये भी बनाया गया है. डिमांड साइड मैनेज

0: ज्यादा है, उस समय उसका यूज ज्यादा बढ़े। जब हमारे पास पावर की कमी है उस समय डिमांड इसकी शिफ्ट की जाए, तो टाइम ऑफ यूज टैरिफ को भी इसका प्रोत्साहन देने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग इसमें भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ताकि नई टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जा सके। माननीय डिस्कॉम की फाइनेंशियल वायबिलिटी, क्योंकि आज पावर डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा अगर कोई कठिन बात है वो डिस्कॉम की फाइनेंशियल वायबिलिटी, ये कंफर्म है। सभी डिस्कॉम ये लगभग घाटे में जा रहे हैं और टोटल देश भर के डिस्कॉम का जो घाटा है इस समय लगभग 6,85,000 करोड़ रुपया हो गया है। इसको कैसे कम किया जाए, क्योंकि लंबे समय तक डिस्कॉम घाटे में चलेंगे तो फिर वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। इसलिए मल्टी ईयर टैरिफ फ्रेमवर्क ये जो होता है उसके तहत टाइमली कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ ये कैसे बनाया जाए, इसमें इसका यानी हमें उपयोग करना है। पावर परचेज कॉस्ट और ऑटोमेटिक पास थ्रू, जितनी कॉस्ट आएगी इसको पास थ्रू कैसे करेंगे, ये अभी तक ऑटोमेटिक नहीं था, इसको समझौते के तहत किया जाता था, लेकिन ऑटोमेटिक टैरिफ के अंदर इसका जो है कैसे पास थ्रू हो। हमारे एपीएमसी लॉसेज एक समय था 2014 में जब 30% से भी ऊपर था, अभी देश भर का जो एपीएमसी लॉसेज है वो लगभग 15% है, काफी कम आया है, लेकिन इसको और भी हमको इसको कम करना है, वो भी इस पॉलिसी के अंदर दर्शाया गया है। कैसे लॉस रिडक्शन हो, कैसे हमारा परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कोई प्लांट परफॉर्मेंस अच्छा करता है उसको कैसे इंसेंटिव दिया जाए, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार गवर्नेंस और ऑपरेशनल कॉस्ट ये कैसे कम हो, क्योंकि कॉस्ट को कम करने के लिए कई तरीके होंगे, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट ये कैसे कम हो। ये पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट और सब्सिडी बर्डन इसका कम करने के लिए स्टोरेज के साथ साथ एग्रीकल्चर फीडर के संरक्षण को भी प्रभावित करती है। तो हमने 3 प्रकार के और प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा बीमा योजना ने पीएम कुसुम की 3 योजनाएं बनाई गई है। पहली योजना उसके अंदर जिसको कंपोनेंट ए कहेंगे वो 2 मेगावाट तक ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी पावर सिस्टम इसके ऊपर डाला जाएगा, और चाहे वो कोई भी जमीन हो, कल्टीवेटर हो अथवा बैरन हो, इसमें पावर को बना सकते हैं, पावर को ग्रिड से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी को दे नहीं सकते हैं। एक योजना उसमें कंपोनेंट बी है जिसके अंदर हम ऑफ ग्रिड इस प्रकार के कनेक्शन देते हैं, न पावर ली जा सकती ना दी जा सकती है, केवल किसान अपने उपयोग के लिए उस सोलर पावर का उपयोग कर सकता है। और कंपोनेंट सी, इसमें एक्स्ट्रा पावर यदि बनती है तो ग्रिड में डाल करके किसान जो अपनी इनकम भी कर सकता है, अगर किसान को अपनी फसल के इनकम के साथ साथ ऊर्जा दाता बन करके और ऊर्जा की इनकम अपने साथ जोड़नी है तो किसान को एक बहुत बड़ा लाभ इसमें होने वाला है। धन्यवाद। ऐसे ही जो हमारे डाटा सेंटर्स हैं वो लगातार इसमें बढ़ रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी के नाते से स्मार्ट मीटर का प्रावधान इसमें किया गया है, और स्मार्ट मीटर में भी ऑप्शनली ये भी कहा कि पोस्ट पेड किस प्रकार से लागू किया जाए, तो पोस्ट पेड के हिसाब से भी हमने सबसे पहले गवर्नमेंट मीटर और उनको अलाउ किया है तो पोस्ट पेड पर आए, बाकी सबको ऐच्छिक रखा गया है, कोई आएगा तो अच्छा है। पेड के लिए इंसेंटिव की स्कीम बना रहे हैं। इसी प्रकार से तेलंगाना का जहां तक पूछा है, तेलंगाना पीएम कुसुम के टोटल 1797 मेगावाट में से 84 मेगावाट अभी उन्होंने कंपोनेंट ए में उपयोग किया है। तो ये तेलंगाना के नाते से इस प्रश्न का जैसे मैंने उत्तर दिया, इसको स्टेक होल्डर इनपुट पर ध्यान करके ड्यू कंसल्टेशन के बाद फाइनल पॉलिसी नोटिफाई की जाएगी।
1: नाउ द सेकंड सप्लीमेंट्री सत्रम सिंह सांडू जी,
2: बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पंजाब में एफिशिएंट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए 9,600 करोड़ रुपए का आपने सैंक्शन किया। पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इलेक्ट्रिसिटी हमारे किसान की खेती के लिए बैकबोन है चेयरपर्सन साहब, और हाईली डिपेंडेंसी हमारी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है। 14 लाख ट्यूबवेल से किसान खेती के लिए पानी निकालता है, और मैं किसान का बेटा हूं, मैंने देखा कि खेतों में जो खंभे लगे हैं बिजली के वो हमारे लिए बाधा बन रहे हैं। मैं मंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा, सवाल भी पूछना चाहूंगा कि खेतों में से खंभे हटाकर अंडरग्राउंड केबल डालने के लिए अभियान चल रहा है, वो कब तक पूरा हो जाएगा और पंजाब

0: सरकार को कितनी सहायता दी जा रही है केंद्र की ओर से, मेरा ये सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद
1: सभापति महोदय। ये विशेष रूप से पंजाब के आंकड़ों से जुड़ा हुआ है। वैसे तो सारी योजनाएं जो भी बनाती हैं प्रदेश सरकारें बनाती हैं और अपने दायरे को रखकर के ध्यान में रखकर के बनाती हैं। पंजाब के लिए फाइनेंशियल वायबिलिटी डिस्कॉम की, जैसा मैंने पहले कहा, ये बहुत ही अच्छी नहीं है। तो पंजाब के डिस्कॉम की फाइनेंशियल वायबिलिटी को देख करके ही उनको ऋण मिलता है। ये ठीक है कि पंजाब के मुख्यमंत्री स्वयं मुझे मिलने आए थे, उनको ऋण की आवश्यकता आरईसी से पीएफसी से थी, लेकिन आरईसी पीएफसी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, उनको उसकी वायबिलिटी अपने आप देखनी है कि कौन सा लोन हमको देना कौन सा नहीं देना है। हाँ, जहां तक पावर किंग की डिमांड है, इस डिमांड को भी समय समय पर पूरा करते हैं। जब भी ये मांगते हैं तो करते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं हमारे कहने के अनुसार भी पंजाब के डिस्कॉम या पंजाब की सरकार आगे नहीं बढ़ती है। आगे न बढ़ने के कारण से, स्टेलमेंट के कारण से चीजें सहानुभूतिपूर्वक सोची नहीं जा सकती। उसका कारण है कि बाजार में बिजली मिलती है, अगर खरीदनी है तो बाजार से खरीदी जा सकती है, लेकिन बाजार से खरीदने के लिए पंजाब के पास पैसा नहीं है। और पंजाब ने विशेष तौर पिछले साल का जो एक हमारा क्लोज करने का ऑर्डर होता है उसमें एक एम्बिग्विटी पाई गई, उस एम्बिग्विटी के कारण से उनका केस एप्पल में चला गया। एप्पल ने अभी निर्णय देना है, जैसे ही ये एप्पल का 18 अगस्त को डेट लगी है, उस प्रकार से जैसा निर्णय आएगा इनकी फाइनेंशियल ठीक होंगे तो इनको पूरी सहायता की जाए।
2: श्रीमान विजय खंडकालिया जी, श्रीमान विजय खंडकालिया जी,
3: धन्यवाद चेयरमैन जी। सर, पूरी माता ग्रीन हाइड्रोजन हब इन अनकापल्ली डिस्ट्रिक्ट, दिस इज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब इनॉग्रेटेड बाय अवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। First in my bloodline, I'm witnessing this green hydrogen plant in our own district. So the project envisages an investment of approximately 1.85 lakh crore, including 20 gigawatt of renewable energy capacity, and is planned to produce 1500 TDP of green hydrogen and 7500 TDP of green hydrogen derivatives. So my question here is, I want to ask the Honorable Minister, if the government is considering measures to ensure time-bound coordination between NTPC, the Central Transmission Utility, and other concerned central agencies for the required transmission and grid connectivity, so that adequate power infrastructure is in place ahead of commissioning and does not constrain the hub's planned capacity or future expansion.
1: Honorable Minister, Sabhapati Mahoday, वैसे तो जो उन्होंने प्रारंभ किया कौन से प्रोजेक्ट के लिए पूछ रहा है ऐसा मुझे ध्यान में नहीं आया है, लेकिन फिर भी इन जनरल जो ने विषय उठाया कि ट्रांसमिशन की जो कठिनाई है, जो दिक्कत है, मैं मानता हूं बहुत से एरियाज में अलग अलग कारणों से ट्रांसमिशन लाइन की दिक्कतें आती हैं। ट्रांसमिशन लाइन चूंकि बहुत से मल्टी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, जनता का विरोध भी होता है, किसानों का विरोध भी होता है, एनवायरमेंटल इश्यूज भी होते हैं, उन सबको सुधार करने के बाद हम आरओडब्ल्यू का जो सेक्टर विशेष तौर पर रहता है उसके लिए नई गाइडलाइंस तय की है। और नई गाइडलाइंस, मुझे खुशी है इस बात की कि कुल मिलाकर 17-18 स्टेट्स ने नई गाइडलाइंस को जारी कर दिया है, और नई गाइडलाइंस जारी करने के बाद किसानों का कंपनसेशन पर्याप्त मात्रा में मिलने लग गया उनको, और वहां की लाइनें चालू हो गई है। लेकिन जहां कहीं ट्रांसमिशन लाइन भी नहीं बनेगी वहां इवैक्यूएशन करने में जनरेशन होने के बाद भी कठिनाई आएगी, इसलिए जहां कहीं भी विषय कर रहे हैं वो प्रश्नों के अलग से स्थान के बारे में कोई बताया गया तो जैसा अलग प्रश्न रखेंगे उसका उत्तर दे
2: देंगे। फोर्थ सप्लीमेंट्री, श्रीमान प्रोफेसर मनोज कुमार झा। तो श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी,
4: मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं पहली बार इस सदन में मुझे बोलने का मौका मिला है, आपके माध्यम से मैं विद्युत मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ जहाँ नया उद्योग धंधे खुल रहे हैं और लगातार विद्युत की आवश्यकता बढ़ रही है, तो क्या इस संबंध में दृष्टिगत रखते हुए जो बलौदा बाजार जिला है छत्तीसगढ़ का, वह सीमेंट उद्योगों का हब है और वहाँ लगातार ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, तो क्या नवीन प्लांट ऊर्जा से संबंधित वहाँ लगाने की

0: योजना है या अन्य जिलों में छत्तीसगढ़ में कोई नई ऊर्जा से संबंधित हमारे ऊर्जा प्लांट लगाने की कोई योजना है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सदन को, जो मुझे यहाँ आप सबके बीच में पहली बार आज बात रखने का मौका मिला है। सादर प्रणाम।
1: आदरणीय मिनिस्टर, आदरणीय सभापति जी, वैसे देश भर में इस समय पावर की कहीं भी शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि हमने इस बार हाईएस्ट पीक डिमांड पावर की 270.8 गीगावाट एवर हाईएस्ट इसको हमने आपूर्ति की है, और आज भी हमारी तैयारी है कि 284 गीगावाट की हमारे पास कैपेसिटी है। अगर और भी आवश्यकता पड़ेगी उसको हम पूरा करेंगे। अगले वर्ष भी 300 से ऊपर गीगावाट की हमने योजना बना ली है, इसलिए पावर देश भर में अब सरप्लस कहना कहें लेकिन पावर सफिशियंट हम अपने देश के अंदर है। इसी प्रकार से अब हर प्रदेश में अपनी योजनाओं स्वयं बनाते हैं, किसी प्रदेश में कोई कमी नहीं रहती है। हाँ, यदि उनको पावर कहीं अपने रीजन के अंदर पावर नहीं मिलती है तो ट्रांसमिशन के कारण से पावर अगर नहीं पहुंचती तो अलग बात है, अन्यथा पावर काज ओपन मार्केट में भी उपलब्ध है, और ओपन मार्केट में जितनी उपलब्ध होती है उतनी खरीद भी आती नहीं है। इसलिए छत्तीसगढ़ का जहां तक विषय है, कहीं पावर की कोई भी हमारे पास हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में अगर कोई डिले हो रहा है तो ये स्थानीय विषय कोई हो सकता है, अगर अलग से उसका प्रश्न आएगा तो कम जवाब देंगे।
2: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
3: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। समय रात्रि के 10:18 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। स्वागत है सभी श्रोताओं का आज के फिल्म संगीत में।

कार्यक्रम में ये गीत आपने सुना अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में। फिल्म थी फिर तेरी कहानी याद आई। गीत लिखा था कातिल शिपाई ने और संगीत था अनु मलिक का। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू की आवाज़ में। फिल्म का नाम है नाराज़। शब्द रचना एक बार फिर से कातिल शिपाई की और संगीत है अनु मलिक का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर। समय रात्रि के 10:30 हो रहे हैं और आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं फिल्म संगीत का एक और कार्यक्रम, भूले बिसरे गीत। स्वागत है एक बार फिर से सभी श्रोताओं का आज के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में। और कार्यक्रम का ये पहला गीत आप सभी के लिए फिल्म माया से, जिसमें आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, शब्द रचना है मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत है सलील चौधरी का।

अभी आपने सुना फिल्म माया में मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी के लिए किशोर कुमार की आवाज़ में और फिल्म का नाम है चलती का नाम गाड़ी। शब्द रचना है मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत बद किया है इस गीत को एसडी बर्मन ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत भूले बिसरे गीत आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और कार्यक्रम में अगला गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में फिल्म है फागुन। गीत लिखा है उमार जलालाबादी ने और संगीतबद्ध किया है ओपी नैयर ने।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय श्रोता सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत। और कार्यक्रम में अगला गीत श्रोताओं आप सभी के लिए लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म है बरसात। गीत लिखा है रमेश शास्त्री ने और संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

और आई श्रोता हूँ, अब सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में एक गीत। फिल्म है अजनबी, शब्द रचना है आनंद बख्शी की, जिसे संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

और आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म अनामिका में। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीतबद्ध किया है।

और आइए श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और लता मंगेशकर की आवाज़ों में एक गीत। फिल्म है उत्सव, गीत लिखा है वसंत देव ने और संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत भूले बिसरे गीत। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर। रात्रि के 11 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त

0: मंत्री सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा। इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
1: इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर।
0: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है।
2: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृहमंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। चीन में तूफान डॉल्फिन के कारण तेज बारिश के बाद बाढ़ आने की खबर है। लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि तट से टकराने के बाद तूफान के कमजोर पड़ने के बावजूद खतरा बना हुआ है। आज सुबह तक फुजियान प्रांत में जमीन और समुद्र दोनों तरफ के संवेदनशील क्षेत्रों से 168,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय RS रघु। The Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 today, with Rajya Sabha returning it to Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha has already passed the bill. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman had moved the bill. The bill seeks to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007, the Income Tax Act 2025 and the Finance Act 2026. The legislation will replace the Income Tax Amendment Ordinance 2026, which was promulgated on 5th June this year. Replying to the discussion, the Union Finance Minister said that the objective of the bill is to strengthen India's manufacturing ecosystem, attract further investment, generate employment and promote manufacturing activities. She said, the second major reform relates to providing tax exemptions to foreign companies procuring data services from specified data centers in India and enhancing ease of doing business. The minister clarified that the bill does not impose any tax or transaction charge on UPI users.
4: It does not impose.

से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हो रहे हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा के प्रसारण अब संपन्न होते हैं। प्रातःकालीन सभा में कल सवेरे 5:55 पर आप